सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की तिथि 19, तदनुसार 9 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:48 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनिए सत्संगति। वाचन स्वर है विजय कुमार सिन्हा का।

सत्संग अर्थात सज्जनों का संग मनुष्य के लिए सभी प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। समाज में आदि युग से दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक सज्जन प्रकृति के और दूसरे दुर्जन प्रकृति के। इन्हें ही संत और असंत कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका विशिष्ट लक्षण ये बताया है कि संत सह ही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। सज्जन पुरुष दूसरों के दुख दर्द क्लेश आदि को

0: दूर करने के लिए स्वयं सहज भाव से कष्ट भी झेल लेते हैं। दूसरी ओर दुर्जन प्रकृति के लोग निर्दोष, दुर्बल और असहाय लोगों को अनेक प्रकार की यंत्रणाएं और उत्पीड़न देते रहते हैं। सज्जनों में सहज दया भाव रहता है, दुर्जनों में स्वभावतः क्रूरता और निर्दयता होती है। संगत का प्रभाव हम जीवन में प्रत्यक्ष देखते हैं। शराबी और जुआड़ी के संग रहने वाले व्यक्ति शराबी जुआड़ी हो जाता है, वेश्यागामी का साथी वेश्यागामी और चोर डाकू लुटेरों का साथी चोर डाकू और लुटेरा हो जाता है। इसी प्रकार साधु के साथ रहने वाला साधु, पुजारी के साथ रहने वाला पुजारी, विद्वानों के साथ रहने वाला विद्वान, कलाकार और साहित्यकार के साथ रहने वाला कलाकार और साहित्यकार सहज ही बन जाता है। प्रकृति का ये नियम है कि जो जिसके साथ रहता है वो उसका गुण ग्रहण कर लेता है। पानी में चीनी मिल जाए तो उसमें मिठास, और नमक मिल जाए तो उसमें खारापन आप से आप उत्पन्न हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच जल संगा। बुरी संगति से हानि और अच्छी संगति से लाभ हस्तामलक की भांति प्रत्यक्ष है। धूलि के कुछ कण हवा के संपर्क में आकर आकाश की ऊंचाई छू लेते हैं, और वे ही जब जल के संपर्क में आते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं। स्पष्ट है कि उच्चादर्श के मार्ग पर चलने वालों के साथ रहकर मनुष्य बड़ा से बड़ा आदमी बन सकता है, और वही दुष्प्रवृत्ति और नीच प्रकृति के लोगों के साथ रहकर बुरा से बुरा और समाज का सबसे निकृष्ट आदमी बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को कदापि बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी बातें सुननी चाहिए। बगुले जैसा अभक्ष्य भक्षण करने वाला भी पयह पान करने वाला हंस प्रवृत्ति का हो जाता है। काक होए पिक बक हुमराला। दूसरी ओर दुर्जनों की संगति उसी प्रकार हानिकारक होती है जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के दूह भाति विपरीत। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देही विधाता। अतः दुर्जनों की संगति छोड़कर हमें सज्जनों की संगत करनी चाहिए, इसी से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। सत्संगति सदा लाभकारी होती है।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे सत्संगति, वाचन स्वर था विजय कुमार सिन्हा का। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आप सुनिए वार्ता मुर्गियों के रोग। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। यदि आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में सबसे जो ज्यादा जो नुकसान होता है वो मुर्गियों की बीमारियों से होता है। यदि आपकी मुर्गी बीमार ग्रस्त हो जाती है तो नुकसान होता है, और खासियत ये होती है मुर्गियों की बीमारियों में कि यदि एक मुर्गी में बीमारी पकड़ती है तो पूरा आपका मुर्गी बाड़ा जो है वो संक्रमित हो जाता है। जितनी भी मुर्गियां उसमें हैं वो सारी मर जाती हैं रोग ग्रसित होकर के। तो इसके लिए आवश्यक है कि मुर्गियों के रोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और मुर्गियों के रोगों की रोकथाम जो है समय रहते आप कर दें तो अच्छा होगा। तो आज हम आपसे मुर्गियों के कुछ रोगों के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बीमारी है रानीखेत। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, रानीखेत बीमारी जो है रानीखेत नामक जगह से ही शुरू हुई है। यह मुर्गियों का विषाणु जनित संक्रामक और अतिघातक रोग है।

प्रभावित मुर्गियों की उम्र के अनुसार रोग के लक्षणों में अंतर पाया जाता है। इस रोग से प्रभावित जो मुर्गियां होती हैं उनकी आयु जो है 3 से 4 सप्ताह से कम की होती है। चूजों में सांस लेने की परेशानी होती है, चूजे सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में यह रोग लगने पर सांस लेने में तकलीफ होती है और गलगल की आवाज़ भी आती है।

0: प्रभावित मुर्गियों की उम्र के अनुसार रोग के लक्षणों में अंतर पाया जाता है। इस रोग से प्रभावित जो मुर्गियां होती हैं उनकी आयु जो है 3 से 4 सप्ताह से कम की होती है। चूजों में सांस लेने की परेशानी होती है, चूजे सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में यह रोग लगने पर सांस लेने में तकलीफ होती है और गलगल की आवाज़ भी आती है, दस्त भी आने लग जाते हैं, कुछ की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग प्रभावित मुर्गियों और दूषित वायु, दाना, पानी, फार्म में काम करने वालों से फैलता है, यानी कि संक्रमण फैलने के ये तरीके होते हैं। रानीखेत रोग की पूर्ण रोकथाम ठीक समय पर टीका लगवाकर ही की जा सकती है। पहला टीका 1 दिन के चूजों में, दूसरा 4 से 5 सप्ताह और इसके पश्चात 6 से 8 सप्ताह की आयु में तीसरा टीका लगवाना चाहिए। इसके अलावा एक और रोग होता है जिसका नाम है संक्रामक बरसा रोग। यह बीमारी एक अति सूक्ष्म विषाणु से होती है। यह विषाणु मुख्यतः मुर्गी के शरीर के एक अंग बरसा में शोथ उत्पन्न करता है। विदित हो कि बरसा से ही मुर्गी के शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। इस रोग से प्रभावित मुर्गियों को कई अन्य बीमारियां हो जाती हैं और टीका का असर भी नहीं होता है। यह बीमारी मुख्यतः 3 से 6 सप्ताह के चूजों में उग्र रूप से होती है। इससे अधिक उम्र के चूजों में बरसा रोग लक्षण रहित तो होता है। इस रोग से प्रभावित मुर्गी के शरीर में कंपन एवं मरोड़ के साथ सफ़ेद दस्त होते हैं। शरीर का तापमान असामान्य हो जाता है। यह रोग दूषित दाना, पानी और बिछावन से फैलता है। इस रोग से बचाव के लिए पहला टीका 2 से 3 सप्ताह की आयु में पानी द्वारा दिया जाता है और दूसरा टीका 16 से 18 सप्ताह की आयु में दिया जा सकता है। मैरेक्स रोग भी मुर्गियों में काफ़ी होता है। यह एक घातक रोग है। वास्तव में यह मुर्गियों का कैंसर रोग है। यह बीमारी मुख्यतः दो रूपों में होती है। प्रथम प्रकार में 16 से 14 सप्ताह तक की आयु की मुर्गियों में यह रोग उग्र रूप से होता है, जिससे मृत्यु दर अधिक होती है। कभी-कभी 60% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अधिकतर मुर्गियां बीमारी के कोई लक्षण प्रकट होने से पहले ही मर जाती हैं। इन मुर्गियों के शरीर के आंतरिक अंगों जैसे जिगर, गुर्दे, फेफड़े, हृदय, अंडाशय आदि में कैंसर की गांठें बन जाती हैं। द्वितीय प्रकार में 16 सप्ताह या इससे अधिक आयु की मुर्गियों में यह रोग होता है। गर्दन एवं पैरों पर पक्षाघात हो जाता है। मृत्यु दर 20% से अधिक होती है। इस रोग से प्रभावित रोगी मुर्गियों को तुरंत अलग कर देना चाहिए ताकि शेष मुर्गियां इस रोग से ग्रसित नहीं हों। इस रोग के भी बचाव के टीके जो हैं चूजों को देना चाहिए। मुर्गियों का चेचक भी काफी पॉपुलर।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आपने सुना वार्ता मुर्गियों के रोग। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में

0: सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समवेत स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से ही लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है। परमपिता परमेश्वर जिनके अनेक रूप और अनेक नाम है, कोई उन्हें खुदा कहता है तो कोई गॉड, वही सबके निर्माता और वही सब कुछ। तो आइए सच्चे और अच्छे मन से उस प्रभु की वंदना करें।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर है कविता कृष्णमूर्ति का।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं।

माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। इसके अंतर्गत आप सुनिए भेंटवार्ता, प्रोस्टेट की बीमारी से बचाव। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर शशि प्रकाश और भेंट करता है चंद्रमणि भारती।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शशि प्रकाश, जो कि वरीय आवासीय चिकित्सक के पद पर तैनात हैं किडनी एवं मूत्र रोग विभाग IGIMS पटना में। आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों से बचाव। डॉक्टर साहब, तीन प्रकार के प्रोस्टेट की बीमारियां आपने बताई, उन तीनों से बचने के क्या क्या उपाय हैं और बदलती जीवन शैली को किस तरीके से अनुकूल में रखा जाए ताकि इन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके।
2: जी धन्यवाद। आज हम लोग अपने ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्रोस्टेट कैंसर पे। सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर एक एज के बाद 60 साल के बाद होने वाली बीमारी है। ये एक वंशागुनत बीमारी है जो पिताजी और हमारे वंशागुनत इसमें आता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहला है जानकारी, और जानकारी में ये

0: कहा गया है कि 55 साल के से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उसका जांच कराना चाहिए। इसका जांच क्लिनिकल एग्जामिनेशन से मल द्वार में उंगली करके किया जा सकता है, ब्लड जांच से किया जा सकता है, पेशाब जांच से किया जा सकता है, और अगर सस्पिशन हो, अगर संदेह हो तो और सारे जांच करके किया जा सकता है। जहां तक बदलते जीवन शैली का संबंध है, मोटापा का बढ़ना, शारीरिक क्षमता का कम होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, चीनी का बढ़ना, ये सब चीजें इन बीमारियों में बढ़ावा देती हैं। तो ये प्रोस्टेट कैंसर से ये बचाव की बातें हैं। जहां तक इसके इलाज की बात है, जैसे ही बीमारी पता चलती है, जांच के बाद हम लोग शुरू करते हैं और इसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडियोथेरेपी विभिन्न चीजें हैं जो समय के साथ जिस तरह की बीमारी का जो स्टेज है होता है उसमें वैसा हम लोग करते हैं। दूसरी बीमारी है प्रोस्टेट ग्रंथि का केवल बढ़ना। मैं ये दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक समय के साथ सबका बढ़ता है, ये उसी तरह से है जैसे कि लोगों का बाल बढ़ता है, नाखून बढ़ता है, लेकिन ये जब समस्या उत्पन्न कर देती है तब हम लोग को इसके बचाव में जाना चाहिए। समस्या क्या हो सकती है मैं पहले भी बता चुका हूं, और बचाव के लिए हमको संतुलित मात्रा में पानी पीना है, सिगरेट और जो भी तंबाकू संबंधी चीजें जो हैं वो उनका उनसे परहेज करना है, अगर किसी को चीनी है तो उसको कंट्रोल करना है, कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए, और पेशाब करने के अगर किसी को पेशाब करने के बाद भी लगता है कि उसको दोबारा पेशाब लगेगा तो उसको रुक करके इंतजार करना चाहिए और दोबारा करना चाहिए, जिसको हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इन सब चीजों को कर करके फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस बात का, और इससे हम लोग प्रोस्टेट के ग्रंथि के बढ़ने में हम लोग बचाव कर सकते हैं। जहां तक प्रोस्टेटाइटिस है, तीसरी बीमारी जो कि इन्फेक्शन के चलती होती है, इसके ये जो है कम उम्र के लोगों में होती है, सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होती है, तो इसके बचाव के लिए हम लोग को जहां भी सार्वजनिक शौचालय है वहां पे कोशिश करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, साफ सुथरे जगह पे ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए, शारीरिक संबंध भी जब बनाए तो आप वहां भी लापरवाही न बरते और जो भी सुरक्षा के उपकरण आपके पास हैं उनका उपयोग करें, और जैसे ही इसके लक्षण आते हैं आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से और यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।
1: जी, जैसा कि हमें मालूम चला कि पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है ये प्रोस्टेट कैंसर, तो इसकी गंभीरता को किस तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि वो शुरुआती चरण में ही जागरूक होकर चिकित्सक के पास जाएं और सलाह ले सकें?
0: देखिए, जहां तक प्रोस्टेट कैंसर के बचाव की बात है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक पे ये बात है कि 55 साल के उम्र से ज्यादा व्यक्ति के हर एक व्यक्ति को अपनी जांच करानी चाहिए, इसका फायदा है। लेकिन अगर जो नहीं भी करा पा रहे हैं तो जितने लक्षणों को मैंने बताया, पेशाब का बार बार लगना, पेशाब के धार की कम होना, पेशाब में जलन आना, पेशाब में खून आना, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि पेशाब नहीं खाली हो, ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं इसको किया जा सके। प्रोस्टेट कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, इसका इलाज संभव है, हम लोग के पास सर्जरी की व्यवस्था है, हम लोग के पास दवाइयों की व्यवस्था है, हम लोग के पास कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, हम लोग के पास रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, लेकिन ये तभी संभव है जब इनिशियल स्टेज में इन बीमारियों को हम लोग समझ पाए और उसका सही समय से हम लोग इलाज शुरू कर पाए। जहां तक दवाइयों की बात है तो अल्फा ब्लॉकर्स का रोल है पेशाब में जो भी परेशानियां हो रही हैं, अगर पेशाब का तीव्र न होना, पेशाब का रुक रुक के होना, इसमें अल्फा ब्लॉकर अच्छा काम करता है, लेकिन इन दवाइयों को शुरू करने से पहले हम लोग को प्रोस्टेट कैंसर को जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए कि वो हमारी बीमारी नहीं है और बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेना चाहिए। अगर ये दवाइयां फेल होती हैं तो इसके बाद दूरबीन की सहायता से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं और प्रोस्टेट के ग्रंथि को हम लोग वहां से दूरबीन की रास्ता से हटा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में भी अभी लैप्रोस्कोपिक प्रोस्टेट ग्रंथि को निकालना और रोबोट के द्वारा भी ऐसी तकनीक आ गई है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि को बहुत ही कम चीरे से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सही समय पर इसकी पहचान हो पाई, सही स्टेज में ये हम लोग को बीमारी पकड़ में आ गई, तभी यह संभव है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाने के बाद इसका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर हार्मोनल थेरेपी में हम लोग को जाना पड़ेगा, परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में इसका रिजल्ट काफी अच्छा है।
1: डॉक्टर शशि प्रकाश, आप हमारे स्टूडियो आए और प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों से बचाव और इलाज के तरीकों के बारे में इतने अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचना के अंतर्गत

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, प्रोस्टेट की बीमारी से बचाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर शशि प्रकाश और इनसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे चंद्रमणि भारती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हालचाल।

7:15 पर आप सुन सकेंगे बज्जी का लोकगीत। कलाकार होंगे अरुण कुमार अकेला। शास्त्रीय संगीत में तलंजय ठाकुर का तबला वादन आप सुनेंगे 7:25 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुन सकेंगे 10:00।

दोपहर 12 बजे सुनिए बिहार का लोक संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी जगत। कार्यक्रम अक्षय वट आप सुनेंगे 1:05 पर और 1:20 पर देशगान होगा। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 1:30 पर। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे 4:30 पर और मकी कार्यक्रम मागधी का प्रसारण होगा 5:30 पर। भोजपुरी बुलेटिन आप सुनेंगे 6:05 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा 6:30 पर। खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा 7:00। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने के पर विशेष कार्यक्रम। और रात्रि 8:35 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। गुंजे बिहार आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सहस्र रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000 तमवर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं संपर्कं राष्ट्रीय सुरक्षां विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमवङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 तमवर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 तमवर्षस्य फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 तमवर्षस्य ICC महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि

0: अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हो की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन, और फिर जानकारी कुछ सेहत से जुड़ी। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या खास है आज के दिन में। जी हां, 9 जून किस बात के लिए खास है? 9 जून को मुख्य रूप से आज हम लोग मनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग यानी ILAC द्वारा हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। और आज बिरसा मुंडा शहादत दिवस है। जी हां, 9 जून को महान आदिवासी जननायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में याद किया जाता है। जी हां, पुण्यतिथि के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। और आज का दिन इसलिए भी खास है कि 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2011 में भारत के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार MF हुसैन का आज के ही दिन लंदन में निधन हुआ था।

दुनिया के इतिहास की बात करें श्रोता, तो आज के ही दिन ब्रिटेन ने चीन के साथ हांगकांग क्षेत्र के लिए 99 वर्ष का लीज किया था। और 1934 में आज के ही दिन वॉल्ट डिज्नी के मशहूर कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक ने अपनी पहली फिल्म द वाइज लिटिल हैन में पर्दे पर पदार्पण किया था। जानकारी अभी ढेर सारी है श्रोताओं, बातें भी अभी ढेर सारी हैं, सुनते हैं इस गाने के बाद।

तो श्रोताओ, हम बात कर रहे थे क्या खास है आज के दिन में और आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि हर साल 9 जून को मनाई जाती है। उन्होंने महज 25 वर्ष की उम्र में 9 जून 1900 को रांची की जेल में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उन्हें जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनके संघर्ष हेतु याद किया जाता है। जहां 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची जेल में रखा गया था और वहीं उनका निधन हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासकों, जमींदारों और बाहरी लोगों को के शोषण के खिलाफ उल गुलान यानी विद्रोह का सफल नेतृत्व किया था। तो श्रोताओं, और अब हम बात करते हैं सेहत से जुड़ी। जी हाँ, गर्मी के दिनों में सेहतमंद रहने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना, हल्का और पौष्टिक भोजन करना और धूप और गर्म हवा यानी लू से बचाव बहुत ज़रूरी है। तेज धूप और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। जैसे पानी की कमी होने ना दे, हाइड्रेट रखें अपने बॉडी को। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, इन सब चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। ये सब प्राकृतिक पेय है, ज़रूर सेवन करें। चाय कॉफ़ी से बचें और जहाँ तक हो सके ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें, हल्का भोजन करें और योग अपने स्वास्थ्य में, अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। योग संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत सहायक और अचूक जीवन शैली है। यह न केवल बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है बल्कि अपने आपके शरीर को लचीलेपन और हृदय गति और जैसे बीपी को नियंत्रित करने में, मानसिक तनाव को कम करने में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है। ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो योग को अपनी दिनचर्या में श्रोताओं ज़रूर शामिल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं अरुण कुमार अकेला।

अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोकगीत। कलाकार थे अरुण कुमार अकेला। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में तलंजय ठाकुर का तबला वादन। ताल है पंचम सवारी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। तबला वादन कलाकार थे तलंजय ठाकुर। राग था पंचम सवारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी।

सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आर एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मैं अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह मंत्रालय ने कहा, ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित

0: हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
4: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और

0: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है।

0: भारत टाइम्स की सुर्खी है टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस: Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
2: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments, tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Dauki in Meghalaya and Srimantpura land port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashvani News.

0: matches will be played in Dambulla, with the final match scheduled on 21st of this month. And now for a look at today's newspapers. It's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Sarabjit. Garib Kalyan at heart of governance, says PM Modi, as NDA marks 12 years, is a front page headline in The Statesman. Crisis deepens for Mamata as her Lok Sabha team breaks. Rebel TMC MPs reach out to BJP, writes the Indian Express. Israel-Iran trade strikes may revive full-scale war in region. Government tells all Indians to leave Iran immediately, writes the Asian Age. India sees surprise current account surplus in January to March. Strong services receipts, higher remittances offset war disruptions, leads the Financial Express. Giving impetus to the digital modernization push in Indian Railways, waitlist gets a crystal ball. Railways to unveil AI tool to predict ticket confirmations, says the Pioneer. As Delhi battles extreme heat and rising fire incidents, surge in fire incidents linked to overloaded electrical systems, writes the Delhi Tribune. The Statesman on its editorial page writes, for years, India's electric vehicle debate was driven largely by environmental concerns, yet the strongest argument for electrification may be India's enduring vulnerability to imported oils. And finally, consensual premarital relationships, no stain on character, SC orders man's appointment as cop, informs the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. Five-day BRICS agriculture ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की पांच रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारत खाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को

0: हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैन अलाक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वुज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़रई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज़ होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबेन खसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ज़रई इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहिरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुजश्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
3: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इकतसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
4: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा। क्या होता है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या होता है, मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
3: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मेयारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाक़े के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाक़े की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमेरिका की विफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। विफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बॉस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलावामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरिए और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मुकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया,

0: और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है, जिसमें वजीर आजम ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुसबत तब्दीलियाँ देखी हैं, जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वजीर आजम ने DBT, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का खास तौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलावामी सुर्खियाँ इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मेरी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आपसे थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
4: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
3: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या TV देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी।
1: ग्रामीण विकास विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा यह स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर लागू होगी। अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में रबी फसल 2026-27 सत्र के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: इधर कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मापी के शुल्क को 2 गुना कर दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित रैयती भूमि की मापी के लिए प्रति खेसरा न्यूनतम 2,000 रूपए और अधिकतम 8,000 रूपए लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा न्यूनतम 1,000 रूपए और अधिकतम 4,000 रूपए लगेंगे। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया की रूपरेखा विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। गौरतलब है कि प्रदेश के 211 डिग्री महाविद्यालयों में इस वर्ष 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में भी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा में दलों के संख्या बल के अनुसार सभी प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 11 जून को नाम वापसी के दिन सभी प्रत्याशियों की जीत की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वर्तमान विधान परिषद चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए 25-25 मत की आवश्यकता है। एनडीए के पास 201 मत है जिससे उनके 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, जबकि महागठबंधन के पास 36 मत उपलब्ध हैं जिससे 1 सीट पर उसकी जीत निश्चित है। एक अन्य सीट पर उपचुनाव होना है जिसमें एनडीए की जीत तय है। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश

और नवाचार की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। राज्य में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश सीएल के साथ साथ महिलाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश एसएल के आवेदन पर अधिकारी एक दिन में निर्णय लेंगे। अन्य अवकाशों के आवेदन पर 7 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कटिहार सदर अस्पताल में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सदर अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में डीएनबी की 2 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 2 मेडिकल स्नातक के छात्र यहां दाखिला लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक बनने की दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। श्री सिंह ने बताया कि दिसंबर माह से इस पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मन खनुजा ने बताया कि वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि संशोधित सीमा लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्री भागवत ने बौद्धिक सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीवान और गोपालगंज जिले के 118 प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें सेवा से हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है। इन शिक्षकों में सीवान के 83 और गोपालगंज के 35 शिक्षक शामिल हैं। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों के नियोजन को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़

0: करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 300

0: मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। अधिकतर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.7, कैमूर के भभुआ का 42.4, गया जी का 41.4 और पटना का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
3: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
2: सीतामढ़ी जिले के रेवासी पंचायत के धनुषी टोला में कल देर रात एक पीपल का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में कटरिया पिकेट के पास पुलिस ने छापेमारी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग तथा कालाबाजारी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के मामले में 14 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि 26 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली स्थित HPCL बायोफ्यूएल लिमिटेड इकाई के आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषद की ओर से गन्ना ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पटना जिले की एक अदालत ने डकैती के मामले में 6 दोषियों को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाने पर राजद नेता शिवचंद्र ने पार्टी पद से दिया इस्तीफा। दैनिक जागरण नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, इस बार वायुसेना और डाक विभाग पहुंचाएंगे प्रश्न पत्र। दैनिक भास्कर की खास खबर है, CBSE आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में 4 छात्र कॉपी जचवा रहे। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, तीसरे दिन ही अफगानिस्तान का सरेंडर, पारी और 300 रन से गंवाया मैच। आज अखबार की सुर्खी है, सासा मूसा शुगर मिल फिर से चालू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण अब से थोड़ी ही देर में।

0: सामी, आपको बताएं कि नायाब किताबों की तलाश के लिए बाकायदा तनख्वाह पर खुदा बख्श ने एक अरबी शख्स को मुकर्रर किया था, जिनके जिम्मे मिस्र, शाम, अरब और ईरान के कोने कोने से नायाब किताबें ढूंढ कर पटना लाना था। खुदा बख्श की दोस्ती किताबों से ऐसी थी कि उनके पास जब कभी भी पैसे आते, वह उनसे नायाब किताबें और मसूदात ड्राफ्ट खरीदते। सामिन, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज की खास पेशकश का वक्त हुआ जाता है, आइए समाप्त करते हैं मुजाकरा। आदाब सामिन, आज के मुजाकरे के साथ शगुफ्ता हाजिर है और आज हमारी गुफ्तगू में शामिल होने वाले मेहमान खसूसी का आप सबसे तारुफ कराती चलूँ। आज हमारे साथ मशहूर यूनिवर्सिटी मौलाना मजहरुल हक के प्रो वाइस चांसलर रह चुके प्रोफेसर तौकीर आलम और मशहूर सहाफ़ी जावेद अख्तर साहब हमारे इस मुजाकरे में शिरकत कर रहे हैं। हम आपसे मुखातिब हों उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा हुए हैं वह हमारी और हमारे मुल्क के वजूद के लिए बेहद अहम है। वह है हमारे मुल्क का आईन, जिसका पहला लफ्ज़ ही हम से शुरू होता है। हम आज के मुजाकरे का आगाज़, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका इस्तकबाल है हमारे इस आज के मुजाकरे में। सबसे पहले तो प्रोफेसर तौकीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा ये जो आईन है वो क्या है?
1: देखिए, आईन हम उसे कहते हैं जिससे कोई भी मुल्क या कोई भी अदारा या किसी तरह की कोई भी संस्था जिससे चलता है उसको चलाने के लिए एक हम आईन लॉ कह लें वो बनाते हैं, उसी के तहत वो अदारा चलता है। तो हमारा भी जो आईन है ये हिंदुस्तान का आईन है। तो हिंदुस्तान का जो भी नज्म व नस्क है या यहाँ जो भी कुछ होना उसी आईन के दायरे में रह करके करना है। तो आईन के दायरे में जो रह के हम जो काम करते हैं उसे हम आईन करते हैं।
0: जावेद साहब, यही सवाल आपसे भी है और इसे थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये आईन किसे कहते हैं?
2: दरअसल हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसे एक ऐसे रहनुमाए उसूल की ज़रूरत थी जिसके पेश नज़र एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस पर सब अमल दरामद हों, हिंदुस्तान का हर शहरी उस पर अमल करे। और यही हमारे सामने एक ऐसा आईना था जो इसको बनाया गया, जिसकी तश्कील की गई और जिसे नाफिज किया गया 26 जनवरी 1950 को। कि बनाने के लिए जो अमल था वो पहले 2 साल पहले से शुरू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। और इन लोगों की कोशिशों से जो आईन हमारा वजूद में आया ये एक तहरीरी दस्तावेज़ है, एक ऐसा दस्तावेज़ जिसमें हिंदुस्तान के जो मुतनव्वो जो समाज है जिसमें हर मज़हब ज़ात और हर फ़िरक़े के लोग अपने आप को बराबर समझें, उनको बराबर का हक़ दिया जाए, ये हमें जमहूरियत का हक़ देता है। और ये हमारे लिए एक रहनुमाए उसूल जो हमारे सामने पेश करता है जिसके खाके की बुनियाद पर हर शहरी अपना जो काम अंजाम देता है।
0: अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी को एक बैलेंस में जीने के लिए जो एक तरीका है वो कहीं ना कहीं हमारे आईन के ज़रिए हमें यहाँ हासिल होता है।
2: जी बिल्कुल।
0: इसी से एक बात निकल करके आती है कि जो हम जब बात करते हैं, हम से जब शुरुआत होती है हमारे इस आईन की, सबसे पहले तो आप ये बताइए तौकीर साहब कि ये लफ्ज़ हम, नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम ही बोलते हैं, खास करके अगर बात की जाए हम बिहारियों की, लेकिन हमारे आईन में जब ये बात आई बिल्कुल हम से ही शुरुआत होती है, तो ये लफ्ज़ जो पहला हम है इसकी शुरुआत हम से ही क्यों की गई?
1: देखिए, दो लफ्ज़ है,
0: जी
1: एक मैं और एक हम।
0: जी
1: तो जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ उससे तौकीर आलम मुराद होगा, और जब हम बोलते हैं तो मेरे साथ और भी लोग मुराद होते हैं। मैं और हम में यह बुनियादी फर्क तो ये है। और आईन का पहला लफ्ज़ है हम, यानी प्रियम्बुल जिसको हम तमहीद कहते हैं, तो हम से ही शुरू होता। तो उसका मकसद ये है कि हम मीन्स पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उससे मुराद लिया जाता है। और इसीलिए प्रियम्बुल में पहला लफ्ज़ हम डाला गया, मैं नहीं डाला गया। मैं डाला जाता तो वो शायद फिर वो कानून नहीं बन पाता, वो मैं का एक स्टेटमेंट हो सकता
0: हाँ, फिर
1: था।
0: ये होता कि मैं, मतलब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर
1: ये बस
0: मैं
1: ये हो
0: इस
1: जाता।
0: तरह से बात
1: और
0: करती।
1: इसीलिए प्रियम्बुल में तमहीद में कहा गया हम भारत के अवाम, हम बिल्कुल, मैं प्रियम्बुल को आपको सुनाता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल
1: हम भारत के अवाम, देखिए
0: जी
1: अब यहाँ हम भारत के अवाम हो गया, ये बिल्कुल प्रियम्बुल है, मैं
0: जी
1: प्रियम्बुल ही पढ़ता था। हम भारत के अवाम मतानत संजीदगी से अज़्म करते हैं, नहीं पूरा वादा कि भारत को एक मुक्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे।

0: और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे। इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी, ख्याल, इजहार, अकीदत, दीन और इबादत, यानी तमाम चीज़ों की वजाहत है इसमें। दीन की, इबादत की, मजहब की, आज़ादी की, समाजवाद की, सारी चीज़ों की सहूलत इसमें
1: कोई एक चीज को
0: रखी
1: भी
0: गई
1: देखा जाए तो
0: है।
1: नहीं छोड़ा गया।
0: ये हमारा
1: सही
0: आईन
1: बात है
0: है, इसीलिए हम इसको हम कहते हैं। अब जैसे मसावात, बराबरी का हक,
1: जी।
0: मसावात मीन्स बराबरी का हक, सब यहाँ बराबर है, हिंदुस्तान में आईन में बराबर हैं, भले सियासी तौर पे कुछ आगे पीछे होता रहता है लेकिन आईन में बराबर हैं। मसावात बैतवार हैसियत और मौका, यानी आपकी हैसियत और मौका के लिहाज से सब के सब हमारे यहाँ बराबर हैं, और इन सब से अखुवत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद, यानी फ़र्द को भी लखा, फ़र्द की अजमत भी हो और कौम का इत्तेहाद। कौम से मुराद यहाँ पूरा
1: पूरा
0: हिंदुस्तानी,
1: हिंदुस्तानी कौम।
0: हिंदुस्तानी कौम, ये कोई ज़ात और मज़हब के लिहाज से नहीं है, हिंदुस्तानी कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। तभी जब इत्तेहाद होगा, सालमियत होगी, तभी तयक्कुन होगा, और सालमियत के बाद अपनी आइन साध असेंबली ने इसे इख्तियार किया, यानी माना, वजह किया।
1: जी
0: ये हमारा प्रियम्बुल है। तो जब हमारा प्रियम्बुल इस तरह से बनाया गया, जब हमारा आइन कानून से बनाया गया जो हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, तो जाहिर है इसमें हम लफ्ज़ आना ही था जो आया। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, दो आदमी को ले लीजिए, एक तो पूरी संविधान सभा जिसमें 299 लोग थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि एग्जामिनर ने लिख दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये एग्जामिनर की रिपोर्टिंग है, राजेंद्र प्रसाद की कॉपी इवेलुएट नहीं हुई,
1: सही बात।
0: एग्जामिनर ने ये बात लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो वो आदमी इसका चेयरमैन है। और अब आइए अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी के बारे में उस वक्त कहा जाता था कि हिंदुस्तान में एक उम्दा सोच और समझ रखने वाला इनसे ज्यादा लोग कोई भी आदमी सामने नहीं है, हो सकता कोई होंगे तो सामने नहीं थे, सबसे ज्यादा अकलमंद माने जाने वाले उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया। तो ये बड़ी बात थी। तो जाहिर है जहां पर राजेंद्र प्रसाद हो और जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, तो वहां पर हम लफ्ज आना ही था।
1: आना ही
0: ये
1: था।
0: सब के सब इत्तेहाद और अमन के जो पुजारी लोग थे, तो जाहिर ऐसी जगह पर अगर हम नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा, हमसे मुराद हिंदुस्तान।
2: इसमें हम का मतलब एक और भी था, चूंकि हमारा समाज इतना मुतनव्व है, डाइवर्सिटीज इसमें इतने हैं, इसमें कई मजाहिब, कई जात पात के लोग रहते हैं, तो वो हर शहरी खुद को शामिल समझे कि आप हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी
1: हाँ
2: है, कि बिला किसी मजहब, जात और नस्ल की तफरीक के सब अपने आप को बराबर समझे। और ये बराबर मसावात का जो हक देता है कानून, ये दरअसल इंट्रोडक्शन है उस दस्तावेज का, जो कानून जो
1: कानून
2: बनाया
1: बन
2: गया,
1: गया।
2: आईन का इंट्रोडक्शन है, और ये निचोड़ है। इसमें ज्यादातर चीजें बहुत ही मुख्तसर तमहीद में शामिल कर ली गई हैं।
1: मतलब कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं तो फिर जाहिर सी बात है इसी प्रेमुल की वजह कर ही देखा जाए तो हमारे
2: जी,
1: अंदर वो जज्बा भी पैदा होता
2: वो
1: है कि हम
2: फख्र
1: कहीं पे भी
2: महसूस
1: रहते
2: होता
1: हैं
2: है
1: ना
2: कि हम
1: बिल्कुल
2: हिंदुस्तान
1: हम
2: के शहरी
1: हिंदुस्तानी
2: हैं,
1: की
2: वी द
1: हाँ
2: पीपल,
1: बिल्कुल
2: हम
1: हम
2: हिंदुस्तानी।
1: कहीं भी रहते हैं तो बड़ा फख्र
2: हाँ
1: से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा एक
2: जी
1: सवाल और बनता है, सबसे पहले जावेद साहब आप बताएं कि जो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर इतना लंबा है तो क्या ये इसकी खूबी है या फिर ये इसकी खामी है?
2: ये दस्तावेज आईन बनाया जा रहा था, तो चूंकि हमारा जो मुल्क है इतना बड़ा मुल्क और इतने तरह के लोग, कि ये इनफरादियत है, और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो तवील ये आईन है, इससे बड़ा तवील आईन दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये तहरीर में है, रिटन है। दुनिया के 5-7 मुल्क ऐसे हैं जहां पे आईन नहीं बनाया गया, कोई तहरीरी शक्ल उसको नहीं दी गई, जैसे बर्तानिया है, कनाडा है, सऊदी अरबिया है, या इस तरह न्यूजीलैंड भी है, जहां पे वो तहरीरी आईन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस तवालत की जरूरत इसलिए पड़ी कि मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ नस्ल के लोग यहाँ पे रहते हैं, और इस तो ताकि इसमें कोई मुख्तलिफ जबान है हमारे यहाँ, मजाहिब, मरकज और रियासत के ताल्लुकात, और उसके अलावा जो है वो इन चीज़ों को बहुत ही तफसील से पॉइंट टू पॉइंट बयान किया गया, ताकि इसमें कोई इबहाम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि साहब हम तो नहीं समझ पाए, उसको तफसील से समझाया गया है, उसकी बारीकी को, एक एक पॉइंट को उसको तफसील से पेश किया गया है, ताकि

0: कोई ऐसी ना समझने वाली इबहाम वाली बात ना हो, इसलिए ये उसकी खूबी है ना कि खामी।
1: आप क्या कहना चाहेंगे इस पर ताकिब साहब?
2: देखिए, जाहिर है कि हमारा आइन तो तहरीरी है।
1: जी बिल्कुल,
2: जब भी कोई चीज तहरीर किया जाएगा तो वह तवील होगा, और जब हम बोलेंगे तो वो मुख्तसर होता है।
1: मुख्तसर हो जाता
2: हम कम बोल के ज्यादा बात आपको समझा सकते हैं, लेकिन लिख करके जब कहेंगे तो पूरा डिटेल यानी तवील लिखना हो। और इसकी रवायत हमारे यहाँ इस आइन से बहुत पहले यानी हजारों वर्ष पहले से मौजूद है। जैसे इसी में मैं एक लाइन जोड़ करके बताता हूँ, दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में आया, सबसे पहले पूरी दुनिया में, और उसकी शुरुआत होती है लिच्छवियों से, यानी जो वैशाली जिनका
1: वैशाली।
2: हेडक्वार्टर था, जो ईसा मसीह कब्र, ईसा मसीह 400-500 वर्ष का वाक्या है, उससे कब्र का वाक्या, तो वहां भी वो गणतंत्र, उस वक्त हम उसे गणतंत्र बोलते थे, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत करते थे। तो इस तरह से हमारे इसके रवायत पहले से है, और कहीं भी ऐसी रवायत नहीं मिलती। आज जहां भी आज सेकुलर मुल्क है, जहां भी आज हुकूमतें अब नुमाइंदा जो चुन के आते हैं उनसे जरी होती है, तो उसके जड़ में हमारा वैशाली है, गणतंत्र है। और वही गणतंत्र से जाकर के जब ये डेमोक्रेसी हमारे आया, तो जाहिर है हमारे यहाँ तहरीर पहले से मौजूद थी। जो ये अलग बात है कि बहुत पहले की तहरीर है, बहुत पहले का अमली पॉइंट है। जब हुआ कि आइन तैयार किया जाए, तब आइन तैयार करने के लिए तहरीर का मामला आया। तो हमारा तहरीर तवील इसलिए भी है कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ हर 30-40-50 किलोमीटर पे जबान बदल जाती
1: जुबान बदल
2: है,
1: जाती है, बिल्कुल,
2: जहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग हैं,
1: उनका रहन सहन भी
2: मुख्तलिफ
1: बदल जाता है,
2: सब चीज़, रहन
1: इंसान
2: सहन
1: बदल जाता
2: स्टाइल
1: है।
2: खाना पीना पूरा का पूरा हमारे यहाँ चेंज होता। तो ऐसे मुल्क के लिए आइन बनाना, तो जाहिर है कि ये तवील होगा, और ये तवील है इसीलिए इस आइन की खूबसूरती है। इसीलिए दुनिया में मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अच्छा कहीं आइन है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान से बेहतर। मैं इस चीज़ को मानने वाला इंसान हूँ कि हमारा आइन सबसे बेहतर है और मुकम्मल है और तहरीरी तौर पे है, और हर चीज़ अपनी वजाहत के साथ है, और गुंजाइश भी रखा गया कि अगर आने वाले वक्त में कहीं पर किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ना है, बदल नहीं सकते हम, कहीं पर कोई चीज़ जोड़ना है तो जोड़ने की गुंजाइश भी है। इसीलिए हमारे यहाँ अमेंडमेंट भी हुए, इसीलिए हुआ, और लेकिन सख्ती भी बरती गई। ऐसा नहीं हो कि हर खास आम जब चाहे बदल दे। इसीलिए आईन में कोई चीज अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में 3/4 मेजोरिटी होगा जिस सरकार को बदल सकते, वही चेंज कर सकते, वही उसमें जोड़ सकते, वरना दूसरे कोई अख्तियार भी नहीं। तो इससे हमारा आईन बहुत मुकम्मल है और बेहतर।
1: आइन जब मुकम्मल किया जा रहा था तो उस टाइम उसके जो आर्टिकल्स थे, बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स थे जो जुड़े और फिर घटे इस तरीके से, और उसके कितने हिस्से थे और कितने आर्टिकल्स थे? तो सबसे पहले जावेद साहब, आप हमें इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे।
0: चूंकि उसमें वो सख्ती भी है और वो लचीलापन भी है, तो इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी था। सख्ती, जैसे आपने कहा कि बुनियादी ढांचा आपने जिक्र किया था, अगर सख्ती ना हो तो बुनियादी ढांचे को आराम से, सिंपल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, एक फुल मेजॉरिटी होता है और एक सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से सभी उसको तब्दील किया जा सकता था। लेकिन बुनियादी ढांचे को सिंपल मेजॉरिटी से बदला नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत ही खास और बहुत ही सारी एक थम्पिंग मेजॉरिटी जिसको कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए। बहरहाल ये इसका पस मंजर है। उस वक्त जब ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जो 395 आर्टिकल्स थे,
1: अच्छा,
0: उसमें जो है वो 8 शेड्यूल्ड थी, उस वक्त 22 हिस्से पार्ट्स थे उसके, जो ओरिजिनल,
1: जो
0: जब
1: इसका
0: ओरिजिनल जब
1: जो
0: आइन
1: आर्टिकल्स, जितने
0: फॉर्म
1: आर्टिकल्स
0: किया
1: थे उसको
0: गया, आइन
1: रिफॉर्म
0: की
1: जब किया
0: तश्कील
1: गया
0: की
1: था।
0: गई
1: जी
0: 1949 में, जब नाफिज हुआ 50 में, तो जो है उस वक्त, और अब तक उसमें जो तरमीम 107वां तरमीम जो है उसमें हो चुका है। तो इसलिए वो ज़रूरी था, वो वक्त के साथ हालात के साथ, आज कुछ हालात और हैं, कल को कुछ और हालात होंगे, इसलिए ये ज़रूरी था कि वो उसमें अमेंडमेंट और तरमीमात होती रहें। इसमें जो बुनियादी तौर पे जो उस वक्त जो बनाया गया, उस वक्त की बात है ये, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, वो फिर 61वें अमेंडमेंट में आर्टिकल 326 28 मार्च 1989 को किया गया, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज 21 से 18 की
1: ये
0: उम्र।
1: सवाल भी मेरे जहन में आ रहा
0: जी
1: था कि हमारे आईन में जो एक बहुत अहम चीज़ है कि वोट का हक हर आवाम को दिया गया है,
0: जी
1: तो कहते हैं कि ये सबसे पहले जब जब हमारा आईन बना था तो उस वक्त 21 साल की उम्र के लोगों को ये हक हासिल था, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन फिर इसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो प्रोफेसर तौकीर साहब, आप हमें बताएं हमारी आवाम को कि ये हमारी आवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए इसमें क्या फ़ायदा मिला?
2: देखिए, इसमें है ये कि 21 साल था और अभी 18 साल।

0: तो जिस वक्त ये बना उस वक्त एक किस्सा रखा गया। अब वो इसलिए रखा गया था कि उस वक्त हिंदुस्तान के लोग अवाम स्पेशली बहुत मैच्योर्ड नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ तालीम की कमी थी। तो जब तालीम कम है तो जाहिर है कि उस आदमी को जिसकी तालीम कम होती है उसको समझने में ज़्यादा देर लगती, तो इसी वजह से मैच्योरिटी कम थी, इसलिए एक किस्सा रखा गया। अब आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान तो है नहीं जो 1947 का हिंदुस्तान था या 1950 का हिंदुस्तान था, वो नहीं है। हमारा रेशियो बढ़ गया एजुकेशन में, हमारे सोचने और समझने की सलाहियतें और
1: वो
0: ताकतें भी
1: भी
0: बदल गई।
1: बढ़िया
0: तो बीच में एक ऐसा वक्त आया कि एक डिमांड भी था हमारे नौजवानों का कि हमें वोट देने का अख्तियार मिलना चाहिए। जब 18 साल का बच्चा और कहीं से BPSC पास करके अगर आ जाए तो वो SDO और BDO तो हो जाएगा, तो SDO हो सकता है लेकिन वोटिंग राइट नहीं रहेगा जो SDO इलेक्शन करा। तो जब वो इलेक्शन करा सकता है तो फिर वोटिंग राइट क्यों नहीं हो? सारी चीज़ें हमारे यहाँ 18 साल से शुरू होती है। नौकरी में आने के लिए 18 साल,
1: 18 साल। जी,
0: शादी करने के लिए 18 साल, के
1: ड्राइविंग लाइसेंस वो
0: लिए
1: भी
0: 18 साल,
1: 18 साल
0: हर जगह जब 18 साल
1: मैंडेटरी
0: है तो
1: है।
0: ये तमाम चीज़ों पर सोच विचार करने के बाद रखा गया कि ठीक है वोटिंग राइट भी अब 18 साल होगा। और ये बेहतर है कि ताकि नौजवानों को भी अपना अख्तियार हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, तो इसलिए वो ठीक है और मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब।
1: आप क्या कहना
0: इसमें मैं
1: चाहेंगे
0: एक चीज
1: तुजारे
0: थोड़ा
1: साहब?
0: सा
1: जी
0: और
1: जी
0: जोड़ना चाहता हूँ। चूंकि किसी भी मुल्क की जो बुनियाद होती है, जो तरक्की जो होती है, वो उस नौजवानों को पेश नज़र रखते हुए वो मुल्क काम करता है। दुनिया के सारे मुल्क जहाँ नौजवान ज़्यादा होते हैं वो मुल्क अपने आप को
1: ज्यादा
0: तरक्की के
1: ताकतवर,
0: रेस
1: तरक्की की
0: में
1: रेस पे ज्यादा ये
0: बहुत
1: होता
0: तेज़ तरक्की करता है वो।
1: है ना कि हमारी जो
0: तो
1: जो फ्यूचर है
0: उस
1: वो हमारे बच्चों के ऊपर ही है, देखा
0: और
1: जाए तो
0: दूसरी
1: जो
0: चीज़ ये
1: नौजवानों के
0: है
1: कंधों पर
0: कि
1: ही है।
0: उसमें जब कहा गया कि भाई 21 साल में जब मैच्योर हो जाता है तो बच्चे जो है आजकल 18 साल में, ऐसा नहीं है कि जो मैच्योरिटी उसकी कम होती है, उसके लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो होता है, तो ऐसा नहीं है कि 18 साल में बहुत कम हो 21 साल में बहुत पड़ जाए। तो इसलिए वो हुकूमत बनाने में क्यों उसको 21 साल रखा जाए, 18 साल में क्यों नहीं उसको शामिल किया जाए, ताकि वो भी तो देख रहा है, वो भी सारी चीज़ें जैसे 21 साल वाला देख रहा है वैसे 18 साल, बहुत फ़र्क
1: बहुत
0: नहीं
1: ज्यादा
0: है।
1: फर्क तो होता है।
0: लिहाजा और दुनिया के कई ऐसे मुल्कों में जो 18 साल पहले से ये राज था, इसलिए उसको ये सब सारे हालात को पेश नजर रखते हुए ये जो है 18 साल किया गया। नहीं तो हाँ, तो अमेंडमेंट तो अलग तरमीम नहीं, चीज है, अमेंडमेंट बोलिए,
1: अमेंडमेंट किया
0: अमेंडमेंट
1: अमेंडमेंट
0: तरमीम जो है वो एक सौ
1: अमेंडमेंट
0: सातवां 106 अभी हुआ अमेंडमेंट कर
1: था
0: सकते
1: थोड़े दिनों पहले, वो औरतों को खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया था 107 एक सौ सात
0: अमेंडमेंट के
1: वाले
0: तहत,
1: उसमें। जी
0: और उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ है 107।
1: अच्छा, अभी जैसे अभी आपने कहा दूसरे किसी मुल्क में भी था कि वो 18 साल की उम्र में अपनी आवाम को वोटिंग का हक दे रहे थे, तो यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि हिंदुस्तानी आइन को कहते हैं कि उधार का थैला, बैग्स ऑफ बोरो
0: हाँ
1: कहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो जावेद साहब आप बताइए।
0: जी, कोई भी चीज़ जब नई तश्कील होती है तो जाहिर है उसमें मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें ये मुंतखब किया जाता है कि इसमें बेस्ट और सबसे बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें कैसे शामिल की जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया जाता है जिसके मुताबिक हर शहरी को ज़िंदगी गुजारना और उस पर अमल करना था। लिहाजा इन चीज़ों, इन ज़रूरियात, इन हालात को देखते हुए देखा गया कि किन मुल्कों के आईन में बेहतरीन चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें जैसे बरतानिया, उसका पार्लियामानी सिस्टम लिया गया, देखा
1: अच्छा,
0: गया कि भाई वो यही
1: पार्लियामेंट्री
0: वजह है कि हिंदुस्तान में अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
1: सिस्टम है।
0: प्रेसिडेंशियल सिस्टम
1: जी
0: नहीं है।
1: जी
0: उसके बाद जुडिशियरी को देखा गया, अदालतें बड़ी अहम रोल अदा करती हैं। ये देखा गया कि अमेरिका में बहुत अच्छा जुडिशियरी है, तो अमेरिका से वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बिल्कुल आज़ाद हो, किसी के दबाव में, कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम न कर रहा हो, ये चीज़ देखा गया कि अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका से वो चीज़ जुडिशियल लिया। इसी तरह से जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रियासत के रहनुमायाना उसूल जिसको कहते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया। ये सारी खूबियां हैं जो ली गई, बरतानिया से।

0: मछुआरा हिस्सा था, वो राजतंत्र था, गणतंत्र तो था नहीं। जब बनाने की बात आई, जब हम आजाद हो गए, तो ये बिल्कुल मुत्तफ़िका तौर पर तय किया गया अभी संविधान सभा में कि हम पूरी दुनिया में जो ये कवानीन हैं, जहाँ जहाँ जो भी हैं, पहले हम उन सबों का मुताला करें। तो उन तमाम कानून का पहले मुताला किया गया, और मुताला करने के बाद हमें फिर जहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगी उसको हमने अपने तौर पे अपने हिंदुस्तानी ढांचे में ढालने की मैंने कोशिश की। मिनुअल हमने उनका नहीं लिया, हमने उनको पढ़ लिया, और पढ़ने का हमको लगा अच्छा इनका ये चीज़ अच्छा, तो हमने फिर उसको अपने हिंदुस्तान के सिस्टम में देखा कि हम इस चीज़ को अपने यहाँ जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो जब हमें लगा कि ठीक है, तो हमने उसको अपने हिसाब से अपने कानून में लागू किया। और जाहिर है कहीं से कोई चीज़, कोई भी आदमी माँ के पेट से पढ़ करके नहीं आता। हम जब हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, तो फिर हम देखेंगे कि और का एग्जिस्टेंस कैसा। तो हम सबों को देख करके, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आइन सबसे बेहतर, जो मैंने पहले कहा, इसलिए कि हमने पूरी दुनिया के आइन को, जहाँ रिटेन आइन था, जहाँ जबान ट्रेडिशन के हिसाब से चलता था, जैसे लंदन का कोई आइन नहीं है, उनका कोई रिटेन आइन नहीं, उनका ट्रेडिशन से चलता, तो हमने उनको भी देखा कि उनका ट्रेडिशन क्या। तो जो हमें बेहतर लगा सबको लेकर के मैंने अपना आइन बनाया, और मेरा आइन सबसे तवील है दुनिया में, और इसीलिए मेरा आइन सबसे बेहतर है कि यहाँ पे किसी तरह की ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जिसको हम कहें कि यहाँ पे ये धोखा हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें छूट रही। सारी चीज़ें हमारे आइन में मौजूद हैं, सिर्फ हम समझना कैसे चाहते हैं। जैसे हम समझना चाहेंगे वैसी समझ मेरी बनेगी, और उस हिसाब से हमें काम करना होगा। भागने की गुंजाइश भी नहीं है, आइन से आप भाग नहीं सकते इधर उधर। तो इसलिए मेरा आइन सबसे बेहतर है, और ये उधार का थैला तो बिल्कुल नहीं है, मेरी अपनी चीज़ है, और वो मेरी चीज़ है और मेरी ही रहेगी।
1: हमने जो देखा, जो पूरी दुनिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी, जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको फिर हम लेते हैं और अपने हिसाब से कुछ इसको उसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो ठीक वही काम किया गया हमारे यहाँ भी। दूसरे के आइन को देखा, सुना, समझा, और फिर ये सोचा कि हमारा जो एक जो इतना खूबसूरत जो गुलदस्ता है, इतने सारे रंगों से सजे हुए, इतनी जबानों से, तो उसके ऊपर ये परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ हम इसको अगर करेंगे तो हमारी आवाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे, उसके बाद उसको ऐड किया गया। यही चीज़ें हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि हमारी आइन जो है वो सबसे बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात और, अब कि जो हमारा आइन है इसमें लचक भी है, सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन कब कहाँ पर इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये जो चीज़ें होती हैं इससे हमारे समाज और हमारे मुआशरे में और हमारी आवाम है उसके ऊपर कैसे असरात होते हैं? जब कुछ नया बदलाव जब होता है तो इसको हमारी आवाम कैसे लेती है?
0: जैसे ही कोई नई चीज़ आप लाइएगा, जैसे एक जो आइन मौजूद है हमारे पास, हम उस आइन में वक्त और मौके के लिहाज से कुछ चीज़ें उसमें जोड़ते हैं, यानी अमेंड कर देते हैं। तो जब हम अमेंड करेंगे तो जाहिर है वो हिस्सा एक तरफ से हमारा नया हो जाता है, आवाम में उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन अमेंडमेंट के लिए हिंदुस्तानी आइन में तरमीम बहुत ज़्यादा सख्त है, और न भी ज़्यादा सख्त हो तो ज़्यादा लचकदार नहीं हो सकता। सख्ती है इसीलिए लचकदार भी है। जैसे अभी हमने बात की 18 साल की और 21 साल की, ये लचकदार हमारा आइन है, इसीलिए 21 को हम 18 कर सके। मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो शायद आज के दिन में कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जो बहुत कम जगहों पर, यानी बुनियादी हकूक, शहरियों को आज़ादी, मसावात, इंसाफ जैसे बुनियादी हकूक हमारे यहाँ हासिल हैं, जो बहुत कम जगहों पे हैं, सभी जगहों पे नहीं है। जहाँ रजवाड़ा है वहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ बादशाहत है वहाँ बिल्कुल नहीं है। अवाम की जब सरकार बनेगी तभी अवाम के लिए भलाई का रास्ता भी निकलेगा, वरना जहाँ पर भी बादशाहत है वहाँ अवाम के भलाई के लिए नहीं हो सकता, उस खानदान के लिए हो सकता है जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अवाम के लिए सब कुछ है। जैसे हमारे रूल ऑफ लॉ है, जो बहुत कम जगहों पे है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता है हर जगह, यानी कानून की हुक्मरानी। जब कानून की हुक्मरानी होगी तभी सब कुछ होगा, यानी अदालतें हमारी बिल्कुल आज़ाद हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदालत हमारा फैसला कर देता है, एग्जाम्पल मौजूद है पहले से। तो ये अदालतें हमारी इतनी आज़ाद हैं, और दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कहीं भी नहीं, जहाँ अदालत इतना फ्री हो। बहुत कम जगहों पे है, बहुत है और भी जगहों पे है, तभी हमने लिया। एक और चीज़ बताता चलूँ, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिटीजनशिप बिल्कुल सिंगल है, आपको हिंदुस्तान का शहरी रहना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, अपने मुल्क से एक तरह से हम अपनी वफादारी, अपना एक कमिटमेंट हम दिखाते हैं। कम जगहों पर बहुत सारा डबल सिटीजनशिप है, कहीं कहीं तीन तीन जगहों के सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, अपने मुल्क के लिए वफादार, और जो मुल्क के लिए वफादार नहीं है वो हमारे सिटीजन नहीं हो सकते। तो इस तरह से

0: ये हमारे आइन की खूबियां हैं जो दूसरे जगहों पे हमें तो बहुत कम देखने को मिलता है, और सुपरमेसी ऑफ लॉ है। एक दफे जो फैसला हो गया तो हो गया, लेकिन वहां भी गुंजाइश रखी गई कि अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला है और उससे अगर एक पार्टी नाखुश है तो उसे अख्तियार है आगे अपील करने का। अपील करते करते हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, और इस बीच में जिसको ग्रीवांस होता है उसे कहीं ना कहीं से उसके मुताबिक एक सही फैसला हो ही जाता है अमूमन, और उससे वो शख्स मुतमईन हो जाता है। यही खूबी है हमारे हिंदुस्तानी आइन की।
1: जावेद साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो जो ढांचा है हमारा, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें जितनी सारी जो लचक है, सख्ती है, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद जो आवाम है वो अपने आप को यहाँ पर हर हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतरीन भाईचारे के साथ रहते हैं, हम आहंगी है हमारे दरमियान में, हम एक दूसरे को समझते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो क्या कहीं ये हमारी आईन का भी असर है जो हमारी शख्सियतों के ऊपर दिखता है?
2: आईन बनाया ही इसलिए गया है ताकि हर शहरी अपने आप को समझे कि हमारा जितना हक है दूसरे शहरी का भी उतना ही हक, जिसको हक मसावात कहते हैं। और रही बात सख्ती और लचक की, तो ये दोनों का इम्तिजाज है, आमेजिश है। ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त है, ऐसा नहीं है कि बहुत है। जैसे अमेरिका में बहुत सख्त है, लेकिन उल्टा बरतानिया में जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकदार है, चूंकि एक तहरीर में नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि हर चीज तहरीरी शक्ल में मौजूद है, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बाकी है तब तक हर शहरी का हक महफूज है। इसलिए इसमें लचक भी होना जरूरी है और सख्ती भी जरूरी है। अगर सख्ती ना हो तो जैसा मैंने अर्ज किया कि बुनियादी ढांचे को भी जब ये हुक्मरान जमात जो है वो आसानी से तब्दील कर सकती, लेकिन चूंकि आवाम यहाँ सुप्रीम है,
1: सही, यही मैं कहने वाली थी कि यहाँ तो
2: आवाम
1: आवाम सुप्रीम
2: सुप्रीम
1: है।
2: है, बगैर आवाम को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, ये मैं नहीं कहता कि 100% आवाम कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके कानून बनाए जाते हैं और मलहूज रखा जाता है। इसलिए इसमें ये दोनों की आमेजिश जरूरी है, सख्ती और लचीला।
1: हम सबको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे आईन को मुझे लगता है कि पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। इस पर आप दोनों जाते जाते हमारी सामीन को बताएं कि आपकी क्या राय है। सबसे पहले आप बताइए प्रोफेसर
0: हम
1: ताकिर
0: बताते
1: साहब।
0: हैं, देखिए हिंदुस्तान का जो आईन है हमारा तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जहाँ पर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहाँ हमें जाहिर है आईन को सामने रखना है और उसके मुताबिक हमें चलना है, और यही यहाँ की खूबसूरती भी है, और इसी में ये हिंदुस्तान अपने ओरिजिनल ढांचे पे मौजूद भी रहेगा। जिस दिन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर हिंदुस्तान वही रजवाड़ों में, वही बादशाही इलाके में, उसी जमींदारों में, इसी तरह के लोग, फिर बंटवारा शुरू हो जाए, फिर हिंदुस्तान का जो एक ढांचा है शायद मुकम्मल न रहे। तो इसलिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ द लॉ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ तीन चार चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि जमहूरियत हमारे यहाँ है तो फॉर द पीपुल, वी द पीपुल हम कहते हैं, बाई द पीपुल है तो ये हमारा डेमोक्रेसी का है, फॉर द पीपुल, बाई द पीपुल, वी द पीपुल कहते हैं, तो ये तभी मुमकिन है ना जब सुपरमेसी हमारी बरकरार रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये चलता रहता। और हिंदुस्तानी आइन में जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र कर दिया, अमेंडमेंट की भी गुंजाइश है, तो अमेंडमेंट ज़रूरत के मुताबिक तो हम करते रहते हैं, तो इस तरह से हमारा आइन मौजूद है, अमेंडमेंट करते हैं वक्त और ज़रूरत के लिहाज से। अब आवाम के लिए जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो खुलासा है, मैं तीन चार जुमलों में आपके सामने उसको रख देता हूँ। हिंदुस्तानी आइन समाजी इंसाफ, मसावात और आज़ादी के उसूलों पर मबनी है, जो मुल्क के मुख्तलिफ मजाहिब और सकाफतों को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा करता है, और शायद इससे बेहतर खुलासा मुमकिन नहीं है।
1: आप बताएं जावेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
2: बिल्कुल, जहां तक पढ़ने की बात है तो जाहिर है वो इतना जखीम है कि वो टेक्स्ट पढ़ना सबके लिए हम
1: मुश्किल है।
2: मुश्किल है, चूंकि हमें देखना पड़ेगा फिर वो इलिटरेसी और इलिटरेसी, पढ़े लिखे हुए कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, फिर उनकी समझ फहम किस सतह की है, किस लेवल की है। तो बहरहाल इससे आगे जाके मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ सकते हैं और जो कानून थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं, जाहिर है कानून की ज़रूरत हम सबको है, चाहे वो जाहिल हो चाहे वो अनपढ़ पढ़ा लिखा हो, कानून की ज़रूरत पड़ती है, कानून से वास्ता हर लम्हा
1: पड़ता है।
2: اس کی خلاف ورزی کرے.

0: जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसलिए उस पर जो बनाया ही गया है वेलफेयर स्टेट भी एक लफ्ज आता है कि वेलफेयर स्टेट मतलब क्या है, वेलफेयर का कि भलाई, भलाई किसकी, आवाम की, शहरी की भलाई, तो उसी को मद्देनजर रख के आईन बनाया ही गया है। लिहाजा हमने भी ये अज्म किया है कि वी द पीपल तमहीद में कि हम जो कुछ है हम साथ हैं बिल्कुल,
1: साथ है
0: तो गोया
1: बिल्कुल
0: ये अज्म है कि आईन के साथ और आईन की पूरी पासदारी करेंगे। और ये आईन की जरूरत ऐसा नहीं है कि तब था और आज वो खत्म हो गई, नहीं, इसकी जरूरत तो जब तक ये मुल्क, जब तक ये दुनिया रहेगी उस वक्त तक इसकी पासदारी करना लाजमी है और ये ज़रूरी है सबके लिए। हर चीज़ उसमें शामिल है, उसमें बुनियादी हुकूक भी शामिल हैं, उसमें मसावात, बराबरी का हक भी शामिल है, मजहबी आज़ादी का हक भी शामिल है, उनकी खिलाफ वर्जी अगर हुक्मरान जमायत भी करती है, हुकूमत भी करती है, तो एक शहरी को ये अख्तियार है कि वो अदालत से रुजू, और वो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो अवॉइड होता है, उसके खिलाफ वर्जी होती है, तो हर शहरी को ये अख्तियार है कि वो बराह रास्त वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसको फैसला नहीं मिलता है, अगर उसको लगता है शहरी को कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। जुडिशियल रिव्यू का भी है हमारे यहाँ, अगर जुडिशियल रिव्यू से भी अगर ना हुआ तो एक रास्ता आखिरी और भी बचता है, वो जो सिविल सोसाइटीज हैं उसके जरिए वो इंटरनेशनल इंसानी हुकूक कमीशन में वो जा सकता है। और कहा जाता है कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो बेशक वो पैसे उसके पास तो नहीं आएंगे, लेकिन वो जो सिविल सोसाइटीज हैं वो उनकी मदद करने को तैयार रहती हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी सिविल सोसाइटीज हैं जो इस तरह के बहुत अच्छे काम अंजाम देती हैं और वो इसकी राह निकालती हैं।
2: इस बीच में एक चीज और भी है
1: जी,
2: जैसे अदलिया के बाद इंटरनेशनल लॉ है, उसके बीच में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से भी अपनी बात अपील कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर उसको फांसी की सजा हो गई तो उसके खिलाफ हम सदर जमहूरिया से अपील कर सकते हैं कि मेरी गलती ने मुझे माफ़ कर दे, और यह उन्हें अख्तियार हासिल है, वो चाहें तो उसे माफ़ कर दे सकती हैं, अगर नहीं चाहेंगी तो नहीं भी माफ़ कर सकती हैं। तो ये भी हमारे आइन की खूबसूरती है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक गुंजाइश है कि फांसी की सज़ा को भी माफ़ करने का अख्तियार सदर जमहूरिया को हमारे यहाँ है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ वफाकी निज़ाम यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट, ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बना रहे। जब तक के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जो चाहे करने लगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि चेक एंड बैलेंस, हमारे कानून में, आइन में चेक एंड बैलेंस बहुत है। एक तरफ अदलिया चेक बैलेंस करती रहती है, दूसरी तरफ पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, स्टेट का अलग है और सेंट्रल का अलग है, इसका तो बाकायदा मुजाहरा खासतौर पर इलेक्शन के ज़माने में होता रहता है, बाकायदा मुजाहरा होता है। सेंट्रल में अगर किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की सरकार है, तो दिक्कतें बनता है, तरह से सब कुछ होता रहता है। तो वफाकी निज़ाम का एक फ़ायदा ये भी है कि जल्दी हमारे यहाँ कोई आदमी डिक्टेटर नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ हमारे ही कानून में है, यानी हिंदुस्तान के आइन में है, ऐसा दूसरी जगह पर बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन हमारे यहाँ है और अमली तौर पे उसका मुजाहरा भी होता है, ये हमारे आइन की
1: सबसे बड़ी खूबसूरती।
0: प्रोफेसर साहब की बात को मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, उसी में शामिल कर देता हूँ, चूंकि ये तवील भी है हमारा, तो इसमें एक एक पॉइंट को कोशिश ये की गई है कि वजाहत की जाए इसको, ताकि उसमें इबहाम ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो ये इसलिए वो सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, एक और लिस्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, जिसमें दोनों का पावर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर शादियात, डिवोर्स, ये दोनों में इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कुछ ऐसे पावर हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते। लेकिन इसके बावजूद ये अलबत्ता ये ज़रूरी भी था कि थोड़ा झुकाव होता है और ये कहा जाए कि अपर हैंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जैसे अगर बाहर से किसी ने हमला कर दिया हमारे मुल्क पर, या कुछ ऐसे नागुजीर हालात पैदा हो गए, इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए, तो इन हालात में वो स्टेट का पावर पूरे तौर पर सीज हो जाता है और वो मरकज की तरफ वो पावर चला जाता है।
1: फिर वो सेंट्रल
0: और वो जैसे प्रेसिडेंट रूल जो कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट रूल को नाफिज करना पड़ता है, तो ऐसे भी है। तो ये सारी चीजें हालात के पेश नजर रख, अगर ऐसा ना हो तो

0: स्टेट भी डिक्टेटर हो जाएगा,
1: के लिए फेडरल सिस्टम रखा गया,
0: फेडरल सिस्टम
1: चेक एंड बैलेंस होगा, इमरजेंसी का पावर भी है। अब हंगामी हालात में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया सारी चीजें बंद हो गई, आपका फंडामेंटल राइट तक सीज हो जाता है, सारी चीजें हमारी वहीं पे रुक जाती
2: है। और बहुत सारे फसादात से अवाम जो है।
1: हाँ, और कंक्रीट लिस्ट में सबसे एक सबसे अहम जो कंक्रीट लिस्ट में वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे दोनों का अख्तियार है, स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। अगर ये दोनों के अख्तियार नहीं होते तो एजुकेशन सिस्टम हमारा चरमरा जाता। जिस स्टेट में जिसकी हुकूमत होती है अपने हिसाब से एजुकेशन शुरू कर देते, तो इसीलिए सेंटर का भी उस पर कमांड रहता है कि कंक्रीट लिस्ट का सबसे अहम पार्ट है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए मनमानी नहीं चलती, कुछ मिला जुला के चलना पड़ेगा। तो ये हमारे आइन की सब खूबसूरती
2: जी। आज की हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही सामीन हजरात, और आपने समझा होगा कि हमारा जो आइन है सही मायने में बहुत खूबसूरत है। यूं ही नहीं बना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलस्तान हमारा, तो इस गुलस्तान को संभाल करके रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। और मैं आज के हमारे खास मेहमान खसूसी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रोफेसर तौकीर आलम साहब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, और जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेजबान से गुफ्तगू को दीजिए इजाजत।
3: शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया कि आपने मौका दिया,
1: हम लोगों को बुलाया।
2: सामीन अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ने से कबल एक प्यारी सी गजल से आइए अंजुमन को मुअत्तर करते हैं।

सामिना, आपको बताएं और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक बार ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन ने खुदाबख्श की किताबों के ज़खीरे के लिए एक खतीर यानी बड़े रकम की पेशकश की, लेकिन खुदाबख्श खान ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि यह किताबें पटना की अमानत हैं और मैं इन्हें हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने दूंगा। खुदाबख्श खान ने अपनी तमाम जमा पूंजी और वालिद से विरासत में मिली किताबों को मिलाकर 29 अक्टूबर 1891 को पटना में अपने वालिद के ख्वाब को खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की शक्ल में इसका इफ्तिताह किया। उस वक्त तकरीबन 4,000 से भी ज़ायद इंतहाई नायाब अरबी और फारसी की कलमी नुस्खे उस कुतुबखाने में मौजूद थे। आपको बताएं सामीन कि 1969 में हुकूमत हिंद ने पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करके इसे कौमी अहमियत का अदारा करार दिया है। जी हाँ, किताबों का यजीम सच्चा दोस्त 3 अगस्त 1908 को इस दुनियाए फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कह गया और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें लाइब्रेरी के अहाते में ही दफन किया गया।

ताकि खुदा बख्श खां अपनी महबूब किताबों के साए में ही हमेशा की अबदी नींद सो सके। कहते हैं कि जब किताबों से दोस्ती हो जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। बेशक किताबों से ज़िंदगी जब होती है दोस्ती, तो वो बदल जाती है, ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी किताबें हमारी किस तरह की दोस्त हैं और हमारी किताबें कैसी हैं। कहते हैं कि अच्छी किताबें बिल्कुल अच्छे दोस्त की तरह होती हैं, आपकी ज़िंदगी को दोनों जहान के हिसाब से बेहतरीन और कामयाब बना देती हैं। लेकिन वहीं अगर हमने किताबों को चुनने में गलती की तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ भी लेके जाती हैं। इसलिए किताबों से दोस्ती ज़रूर कीजिए। आज के वक्त में हम मोबाइल के पास बहुत करीब हो चुके हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि असल मज़ा ज़िंदगी का तब है जब आप किताबों से दोस्ती करते हैं। इसके साथ ही सामीन हज़रात, आज की अंजुमन यह अख्ताम पजीर होती है। अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त, रखिए बहुत सारा ख्याल, चूँकि मौसम बदल रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत।
1: Thank you.

0: इस गाने को हमने लिया फिल्म तेरा फितूर से। मदन पाल के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया विक्रांत माथुर ने, और इसकी धुन बनाई विक्रांत माथुर ने। आवाजें थी विक्रांत माथुर की। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक,

0: दबंग फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया राहत फतेह अली खान ने। फैज अनवर के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया साजिद वाजिद ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। जी हाँ, सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर, सुनते हैं श्रोताओं के द्वारा व्यक्त किए विचार।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बधाई।

ba da ba ma ga ma ri ni ni ni sa ga ma ga sa ga ba da ba ni sa.

श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज़ों में इस गाने को हमने लिया फिल्म भूल भुलैया से। समीर के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया प्रीतम ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: इस गाने को हमने लिया फिल्म आर राजकुमार से, अरिजीत सिंह और पलक मुछल की आवाज़ में। इसे अपनी धुन से सजाया प्रीतम ने और इसे लिखा नीलेश मिश्र और स्वानंद किरकिरे ने। इसी गाने के साथ रसमंजरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आज आप सुनिए प्रतिस्पर्धा कानून पर विकास कथूरिया से अंशुमन झा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, कंपटीशन लॉ के विशेषज्ञ, हमारे मित्र विकास कथुरिया जी।
2: अंशुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, हम आपको बता दें कि विकास कथुरिया जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो तो पटना शहर से ही इनकी शुरुआत हुई है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इन्होंने पीएचडी और पोस्ट डॉक की जो शिक्षा है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपना पोस्ट डॉक कंप्लीट किया है। तो आज हम जानेंगे इनके सफर का अनुभव कैसा रहा, पटना से निकलकर नीदरलैंड्स और फिर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट तक, और इस सफर में कैसे उतार चढ़ाव आए और कैसे इन्होंने उसका सामना किया। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है विकास कथुरिया जी। विकास जी, हम लोग बात करें आपकी प्राथमिक शिक्षा की, तो उसके बारे में बताइए और साथ ही उस समय के पटना के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: धन्यवाद अंशुमन, आपका ये बहुत प्यारा सवाल है। आज शायद मैं अपने जीवन की परतों को पहली दफे इतना खोल रहा हूँ कि स्कूल तक जाने का अवसर मिल रहा है। मेरा जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। हमारा एक पंजाबी परिवार पटना में था जो कि विभाजन के बाद हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में हमने बिहार को चुना, क्यों चुना नहीं पता, शायद प्रारब्ध था और बहुत प्यारा प्रारब्ध था। पटना ने हमें बनाया, हमने पटना को बताया, तो आज दिल की तहों में हम बिहारी ही हैं।
1: जी
2: तो हमारी माता जी की शादी हुई वो हरियाणा से थी, हमारे पिताजी पार्टीशन के बाद यहाँ आए, तो हमने यहाँ पे पंजाबी कॉलोनी में हमारा घर था, हम यहाँ रहते थे। उस समय का स्ट्रगल था, उस समय की कोशिश थी घर को चलाने की, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आए थे, गरीबी देखी, सब कुछ देखी, लेकिन पिताजी ने बहुत प्रयास से संत जेवियर विद्यालय में हमारा एडमिशन कराया। उसके बाद बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छे दोस्त मिले, आप जैसे बहुत अच्छे शिक्षक मिले, और कहते हैं पहले बनाना प्रारब्ध पाछे मिला शरीर। तो चलते चलते स्कूल की जर्नी भी खत्म हो गई, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। 90 का पटना आज के पटना से बहुत मुख्तलिफ, बहुत जुदा था, सिंपल था, सामान्य था, लोग सीधे सच्चे थे, अपनी ज्यादा दिखावे की दुनिया नहीं थी। और ये जर्नी, ये यात्रा बड़ी प्यारी कटी 10वीं तक।
1: जी, जहाँ तक मुझे याद है विकास, उस समय हम लोग साइकिल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे और साइकिल होना भी एक लग्जरी बात थी कि आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, साइकिल से आते हैं। और पटना वाकई बहुत सिंपल हुआ करता था, ना इतनी दौड़भाग थी, ना इतना धूल, ना ही इतना पोल्यूशन, और काफ़ी आराम से। अगर आप स्टेशन से अगर आप प्रयास करते तो आप गांधी मैदान तक देख सकते थे, इतनी क्लैरिटी हुआ करती थी थोड़ी ऊंचाई पे अगर आप जाते थे तो। लेकिन आज वो सारी बातें पीछे की बात हो चुकी है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शुरुआत इनकी पटना से हुई, आइए जानते हैं कि उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए आप कहाँ गए। और शिक्षा के साथ साथ आप ये भी बताएं कि जो आपने क्षेत्र चुना विकास जी लॉ का, सामान्यतः देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस समय जब ये सब 90 का जो दशक था, उस समय साधारणतया हम तैयारी करते थे मेडिकल की या इंजीनियरिंग की। घर में एक माहौल था कि अगर आगे बढ़ना है तो या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। और लॉ का जो क्षेत्र था वो माना जाता था कि हारे हुए सिपाहियों का समूह है, जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर लॉ करो। और लॉ के बाद अगली सीढ़ी जो थी वो संभवतः यूपीएससी की परीक्षा, और जिसे हर कोई अपना धर्म मानता था, हर विद्यार्थी का एक धर्म था कि आपको एक ना एक बार संघ की जो लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षा देनी ही देनी है। तो इन सब विषयों के बारे में बताइए कि आपने पहली ही दफा कैसे लॉ का ही क्षेत्र चुना और लॉ में ही आपका मन क्यों लगा, इसके बारे में जरूर बताएं।
2: मैं आपसे ईमानदारी से सारी बातें साझा करूंगा। मैंने लॉ को नहीं चुना, मैं स्कूल में फौज में जाना चाहता था, मैं एनसीसी में था, वही हमने जिंदगी देखी थी, जबकि मेरे बाकी दोस्त इंजीनियरिंग के पीछे लगे हुए थे, उसकी बहुत

0: शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, मेरा दिल कहीं और था, मुझे एनडीए में जाना था, नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? मार्गदर्शन का अभाव था, घर में भी बाहर में भी कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उस क्षेत्र में जा पाए, तो हमारा एनडीए का एग्जाम नहीं निकल पाया। हमने एन कॉलेज से 12th किया, उसके बाद बाकी हमारे बिहारी मित्र जो जो भी थे दिल्ली जाते थे यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो जीवन हमें वहां ले गया यूपीएससी की तैयारी के लिए। जैसे कि मैंने कहा, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। हमारे सीनियरों का मार्गदर्शन मिला, हमारे सीनियर्स ने कहा कि ठीक है, यूपीएससी या तो जय है या क्षय है, इससे अच्छा लॉ कर लो, लॉ आपको एक सीढ़ी प्रदान करेगा, कुछ ना कर सके लॉ तो कर लोगे। हमने कहा बात अच्छी है, चलिए कर लेते हैं, मान लेते हैं। बचपन से एक चीज रही अंशुमन, अपनी समझ कम थी, कोई समझाने वाला नहीं था, तो कोई सीनियर मिल जाता था तो उसकी बात को हम मान लेते थे। ये
1: जिस हवा में बहे
0: बात
1: बहते चले गए।
0: बहते चले गए। और बताइए, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम था कि अच्छे लोगों का अच्छा मार्गदर्शन मिलता गया और हम चलते गए। गुरु बोलते रह गए तरीके से कि देखो बेटा लक्ष्य देखो, चिड़िया की आंख को देखते रहो। हम चलते गए, चलाते गए, कई बार मिस किया, कई बार लग गया, और हम यहां तक पहुंच गए।
1: क्या बात है। मेरे ख्याल से जहां लगा तो सही लगा, और आज आप जिस पोजीशन पर हैं तो मेरे ख्याल से तो वो आंख वाली बात तो बिल्कुल सटीक है, निशाना सही लग गया आपका।
0: धन्यवाद।
1: अच्छा, तो अब बात करते हैं आपके विश्वविद्यालय का जो दौर रहा, उस दौर में जो हमारा समय था विश्वविद्यालय का, आपका या मेरा लगभग एक साथ का, तो सबसे जो अलग बात थी वो ये थी कि हमारे पास मोबाइल में इंटरनेट नहीं था। दौर अलग था, 2G का जमाना था, और ऐसा नहीं था कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने गूगल किया और वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। बिल्कुल ही एक लेकिन सुकून भरी जिंदगी थी। लो, अगर आपको कोई बात पता करनी है तो आप किताबों की ओर जाते थे, सीनियर्स की ओर ताकते थे, और जल्दी बात चाहिए तो सीनियर्स की ओर ताक लिया और सीनियर से वो जवाब मिल गया। आज का जो दौर है विकास जी, वो AI का दौर है,
0: जी हाँ,
1: और बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। आजकल के बच्चे चाहे तो पूरा का पूरा असाइनमेंट वो AI से करवा ले और कानो कान खबर भी नहीं होती। इसके बारे में बताया कि अपने विश्वविद्यालय का दौर और ये AI का, जनरेटिव AI का दौर, कंस्ट्रक्टिव AI का दौर, और साथ ही डिस्ट्रक्टिव AI का दौर भी कह सकते हैं, इसमें क्या अंतर है और आप कैसा फील करते हैं?
0: ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका। अभी पिछले सेमेस्टर मैंने कोर्स पढ़ाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ के ऊपर। इसमें मेरे साथ पढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और मैं लॉ को लेकर के आया उसके बीच में। आज का समय बहुत बदल गया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा समय क्या था। हमारे समय में जैसा अंशुमन आपने बताया, 2G का जमाना था। कई दोस्त मेरे ऐसे थे जिनके पास तो फोन भी नहीं होता था। पड़ोसी पे फोन आता था तो वो हमें फोन पकड़ाने आ जाता था।
1: इंटरनेट वाला फोन ही लग्जरी की बात थी,
0: दुर्लभ था।
1: दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ चीज।
0: लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ कि आप पढ़ के चाव से चीजों को खुद से समझ सकते हैं, और स्वाध्ययन यही तो है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। लेकिन पढ़ना रीडिंग नहीं है, उसकी तहों तक जाना, उसकी बारीकियों को समझना। क्यों लिखा लेखक ने ऐसा, उसका प्रभाव कहाँ तक है, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं।
1: क्रिटिकल थिंकिंग,
0: जी हाँ,
1: जी
0: क्रिटिकल थिंकिंग, उसके हर एक पहलू को समझना। ये नहीं बस देखना कि लिखा क्या है, क्यों लिखा है, ये जानना ज्यादा जरूरी था। और हम उस समाज में थे जहां पे हमें प्रश्न करना सिखाया गया था कि प्रश्न पूछिए, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लिखा गया है। और इस चीज को जो मैं आज देखता हूं, अपने छात्रों को बताता हूं कि AI आपका असाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बना रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट दीजिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जेनरेटिव AI में, वो आपको उत्तर दे देगा। लेकिन उत्तर के पीछे की वजह क्या है, यही तो हम इंसान हैं अंशुमन। हम पूछते हैं अपने आप से, हम क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आज खत्म हो रही है, जिसके लिए बारे में मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि इंसान से अगर उसकी सोचने की क्षमता ले ली जाए तो वो तो पशु समान है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सोचने वाली चीज है जो जो हमें इंसान बनाती है औरों से अलग करती है, कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, सोच को हकीकत में बदल सकता है, और तभी तो हमारे बीच कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव होते हैं जो कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ नया निर्माण करते हैं, और जिसे कहते हैं नवाचार, इनोवेशन। तो क्या आपको लगता है कि जेनेरेटिव AI से ये जो नवाचार की परंपरा है, क्या इसे कुछ खतरा है? क्या ये समाप्त हो जाएगा? क्या पूरा बाजार पलट जाएगा? क्या कहते हैं आप?
0: इस विषय में मेरे विचार अभी डेवलप हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। लेकिन जो मेरे शुरुआती विचार हैं इस चीज को लेकर के, हमें इस चीज को समझना होगा कि ये एक टेक्नोलॉजी एक टूल की तरह काम कर सकती है। हाँ, इनोवेशन डेफिनेटली होगा, जरूर होगा इनोवेशन, लेकिन हम इनोवेशन किसके लिए करना चाहते हैं, इसके मध्य में आप इंसान को रखना चाहते हैं। माइंडलेस इनोवेशन डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकता है।

0: विनाश की तरफ ले जा सकता है। एक इंसान का होना, ह्यूमन एलिमेंट हमें जिसे कहते हैं एआई में ह्यूमन एजेंसी, वो खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान ही सोच सकता है कि इस चीज का प्रभाव, इस टेक्नोलॉजी का प्रभाव बच्चों पे, हम पे किस तरीके से पड़ेगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि तकनीक इंसान के हाथ में रहे, इंसान तकनीक के हाथ में ना रहे। और इसीलिए एआई रेगुलेशन की पूरे विश्व में बातें हो रही हैं। अब ये जो है बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा है कि क्या हमें रेगुलेट करना है, क्या हमें इसको कंट्रोल करना है। मेरा खुद का मानना है कि हाँ, हमें करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इंसान को इंसान रहने दिया जाए।
1: बिल्कुल, एक कट ऑफ पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड, एक उसका जो लिमिट है वो तय करना होगा। और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, तो हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, कार्यक्रम है इनसे मिलिए। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अंशुमान, और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में उपस्थित हैं बहुत ही अच्छे वार्ताकार, बहुत ही अच्छे अपने विषय के जानकार विकास कथूरिया जी, और इनसे बातचीत चल रही है। और अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, यानी कि विकास कथूरिया जी के पसंद के गाने का। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गाना अगर आप सुना सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा, रुक जाना नहीं तू कभी हार के।
1: क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया गाना चुना है आपने, और हमारे श्रोताओं को भी ये गाना जरूर ही पसंद आने वाला है, उनके दिलों तक पहुंचने वाला है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और इस गाने के बाद हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा।

गाने के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम है इनसे मिलिए। बातचीत हो रही है विकास कथुरिया जी से, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी काम कर चुके हैं, और इस जो

0: ऐसे जो नियम रहते हैं, जो कंपटीशन लॉ है हमारे देश के, उसके भी विशेषज्ञ हैं। तो आज हम इनसे मिलिए में इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में क्या कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ नई तकनीक प्रतिदिन मार्केट में आते जा रही है, बाजार में आते
1: जी
0: जा रही
1: जी
0: है। और ऐसी ऐसी तकनीक, जैसा कि हमने कुछ समय पहले बात किया, गाने से ठीक पहले, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मैंने प्रश्न में जोड़ा था कि क्या इससे बाजार पर भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके आने से नौकरियां खतरे में आ जाएंगी अगर इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो क्या वाकई AI या ऐसी और भी तकनीकें जो हैं, जब ये आती हैं, तो ये तो जरूर नहीं तय है कि जिस कंपनी के पास या जिस संस्था के पास इसके रिसोर्सेज हैं, वो
1: जी
0: इसका
1: हाँ
0: ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगी,
1: जी जी
0: और जहाँ नहीं है वो कम प्रयोग कर पाएंगे, तो कहीं वो मार्केट में पीछे ना रह जाए। क्या इसके लिए भी कुछ प्रावधान है हमारे यहाँ?
1: ये बहुत प्यारा प्रश्न है आपका। मैं दो कदम पीछे लेकर के आपको बताऊंगा कि प्रतिस्पर्धा कानून में मेरा आगमन कैसे हुआ।
0: हाँ, क्यों नहीं,
1: जी
0: श्योर,
1: हाँ,
0: ये हम जरूर जानना चाहेंगे।
1: क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, अपना साझा करना चाहूंगा दोस्तों से, कि मेरा जो दिल था, हमारा जो मन था, हमेशा से रिसर्च में रहा कि रिसर्च करना है, कुछ लिखना है, अच्छा काम करना है। पहली हमारी नौकरी सरकारी थी, हमारा उसमें दिल नहीं लगा, क्योंकि उसमें कुछ नया सृजन करने के लिए शायद जिस पोजीशन पे मुझे बैठाया गया था उसमें मुझे मिला नहीं। तो हमने त्याग पत्र दे करके एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जहाँ पे मुझे कॉम्पिटिशन लॉ पे काम करने का मौका मिला। और मैंने इसको चुना नहीं, इसने मुझे चुना, और हमारा इसमें दिल लगा, क्योंकि मैंने देखा कि ये कानून ऐसा है जो कि बाजार को एफिशिएंट बना सकता है। जो हमारी इकोनॉमी है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, 1990 के बाद खास करके जो हमारी मिश्रित इकोनॉमी थी वो बाजार बेस्ड हुई। हमारे पिताजी के दौर में एक फ़ोन लगाने के लिए इतनी शिद्दत से लोगों को पीछे पड़ना पड़ता था, बहुत मुश्किल से एक फ़ोन मिलता था। और आज आप देखिए, इतने सारे आपके पास फ़ोन कनेक्शन हैं, प्रोवाइडर्स हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा का दौर चल पड़ा, और प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर एक जिज्ञासा को, एक एक सोच को पैदा करती है कि मुझे इसे अच्छा करना है। और इस वजह से बाजार भी आगे बढ़ता है, हम प्रोडक्ट अच्छे लेकर के आते हैं, सामान के दाम कम हो जाते हैं। और इससे फायदा किसको मिलता है? आप और मेरे जैसे एक आम कस्टमर को, एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को। इसीलिए मेरा इसमें दिल लगा, कि मुझे लगा कि चलिए इस चीज़ से मैं समाज का कुछ अच्छा कर सकता हूँ।
0: क्या बात है, क्या सोच है आपकी?
1: और इसी में ये सिलसिला आगे चलता गया। मैं पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया अपने मास्टर्स के लिए, फिर PhD के लिए मुझे गुरुजन मिल गए टिलबर्ग सेंटर फॉर लॉ इकोनॉमिक्स में, और फाइनली पोस्ट डॉक भी हो गया। लेकिन PhD करते करते हमारे सुपरवाइजर को महसूस हुआ उनको कि मैं बहुत थियोरेटिकल हो गया हूँ, मेरा बहुत ज्ञान जो है किताबी हो गया है, और ये किताबी ज्ञान अच्छी चीज़ तो है नहीं अंशुमन।
0: जी
1: इसलिए उन्होंने कहा कि जाइए हिंदुस्तान वापस, और हो सके तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में काम कीजिए। मैंने उनकी बात को माना, मैंने प्रतिस्पर्धा आयोग में 1 साल काम किया, और वहां जानने का मौका मिला कि कैसे किताबी ज्ञान कमजोर होता है।
0: यहाँ आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं। आपके सुपरवाइजर ने कहा कि आप भारत वापस चले जाए और वहां प्रतिस्पर्धा आयोग में जाकर के आप काम करें, यानी कि वैश्विक स्तर पर यह माना जा रहा है कि भारत का जो बाजार है वो काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है, बहुत ज्यादा यहाँ कॉम्पिटिशन है, और बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए है और बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि जब भी मैं बाहर था, लोग जानना चाहते थे कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, भारत कैसा है, कहाँ जाना चाहता है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने श्रोताओं से भी, कि भारत को लेकर के बहुत इज्जत का माहौल है, हमें सीरियसली लिया जाता है वैश्विक पटल पे, तो इस चीज़ में हमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए।
0: जी, आपसे बात जान करके हम सभी को काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा है विकास जी। तो फिर आप भारत आ जाते हैं और आप कंपटीशन कमीशन के लिए आप काम करना शुरू करते हैं, फिर आपका अनुभव क्या रहता है?
1: ये बहुत अच्छा अनुभव था अंशुमन, और मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी श्रोता हैं किताबों को पढ़ें, और किताबों का जो ज्ञान है उसको टेस्ट जरूर करें मार्केट में जाकर, क्योंकि
0: अप्लाई करें उसको।
1: अप्लाई जरूर करें, अप्लाई जरूर करें। किताबें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन दुनिया जो है वो किताबों से नहीं चलती, वो अपना ज्ञान खुद आपको दे जाती है।
0: बिल्कुल, तो फिर यहाँ आपका मन लग गया और यहाँ आकर के आपने यहाँ के बाजार को महसूस किया, और जो आपने किताबों से अर्जित किया था वो आपने यहाँ पर खर्च किया, उसका प्रयोग किया, उसका संवर्धन किया। अच्छा, तो फिर अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि यहाँ का जो बाजार है, क्या नई तकनीक के आने से, और एक बात और है विकास जी, कि भारतीय लोग जो हैं वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं नई तकनीक को, जितना जल्दी हमारे युवा सीखते हैं उतनी जल्दी हमारे बुजुर्ग भी सीखते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ,
0: आपने ये बात महसूस की होगी। तो उससे क्या हमारा जो बाजार है उसका

0: शेप, कुछ चेंज हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें?
1: देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो तकनीक है, वो सब जगह है। अभी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इसे अछूता रहा। आपके फोन में आप यूट्यूब में गाना सुनते हैं, आपको उसी तरीके के गाने सजेशन में आने लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: ये सजेस्टिव एआई है। आप एक सामान खरीदते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उससे जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि उनके पास हमारा डेटा है। और हिंदुस्तान 1.5 बिलियन की आबादी का एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें लोग प्रतिदिन इतना डेटा जनरेट करते हैं। तो ये डेटा रिच कंट्री है। वी आर द डेटा रिचेस्ट कंट्री अंशुमन। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। लोगों के पास कुछ भी हो, हमारे पास डेटा है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कहा था, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है, उसके पास दुनिया में ताकत है।
0: ये
1: इसलिए
0: बात है।
1: हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रतिस्पर्धा पे गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हमें समझ नहीं आता हमें सामान लेना है नहीं लेना है। हो सकता है कि दो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने प्राइसेस को एक जैसा कर रही हैं, प्रतिस्पर्धा कम हो रही है। तो इस चीज के लिए हमें तकनीक को समझने की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए लॉ जो है, देखिए, मैं एक चीज को हमेशा कहता हूँ, लॉ एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। ये समाज से चीजों को अपने में एब्जॉर्ब करता है और समाज के लिए काम करता है। और आज के दौर में लॉ का काम है तकनीक को अंगीकार करना, उसको आत्मसात करना और समझना कि मोबाइल कैसे काम करता है, सजेशन कैसे दिए जाते हैं, और उस हिसाब से लॉ को अप्लाई करना।
0: तो हम जो डेटा जनरेट करते हैं विकास जी, तो इस पे एक सजेशन आपसे चाहेंगे कि जो हम प्रतिदिन अपने मोबाइल को यूज करते हैं, डम स्क्रॉलिंग करते हैं, लगातार देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, और इस क्रम में हम डेटा भी जनरेट करते हैं, तो क्या हमें कुछ करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं तो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं और इसका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है? जैसे अब मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, जब डम स्क्रॉलिंग करते हैं तो इंसान जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं भी हैं उसके बारे में भी लगातार सर्च करता है, और कुछ लोग तो केवल इसलिए सर्च करते हैं कि उन्हें इस बात का ज्ञान हो और वो जब अपने दोस्तों से बात करे तो बता सके कि अरे उस चीज़ का दाम तो अब गिरने वाला है क्योंकि मैंने उसको काफ़ी देखा है। तो इस क्रम में तो डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ और ये डेटा को बाजार के पास गया और उससे बाजार के प्रभावित होने का चांस है। तो क्या जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमें इस फैक्ट का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद हमें कुछ काम करना चाहिए, सर्च करना चाहिए? क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, डेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको देने से मेरा कोई नुकसान नहीं होता। मेरा कोई नुकसान नहीं है।
0: इस काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट।
1: जी हाँ, एक काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट। मेरा नुकसान तब होगा जब आप मेरा पर्सनल डेटा लेते हैं, उसका दुरुपयोग होता है। जब तक ये नॉन पर्सनल डेटा है जिससे मुझे आइडेंटिफाई ना किया जाए, मेरा क्या नुकसान है? और तो इससे समाज का फायदा है, क्योंकि इस डेटा का इस्तेमाल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है तो नई नई इनोवेटिव चीज़ें बन सकती हैं,
0: हाँ
1: सर्विसेज बन सकती हैं, प्रोडक्ट बन सकती हैं।
0: बिल्कुल
1: इसीलिए मेरा यह मानना है कि डेटा में फ्री फ्लो होना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए डेटा जितना हो सके। हाँ, उसके लिए गार्डरेल्स जरूरी हैं। उसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि इंसान का पर्सनल डेटा उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और इसीलिए हमारे पास कानून भी है।
0: बिल्कुल विकास जी, और जो भारत का जो कानून है उसके दायरे में हम सब आते हैं। इसके अलावा हमारा एक घर का भी कानून होता है और घर के कानून को जो हमारे जीवन साथी हैं वो निर्धारित
1: जी
0: करती
1: हाँ,
0: हैं।
1: जी हाँ,
0: तो आज हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सक्सेस है, आप अपने परिवार के बारे में बताएं और उनके योगदान के बारे में भी बताएं।
1: अंशुमन, आपने और मैंने एक ही स्कूल से शिक्षा हासिल की है। आपको एक कहानी याद रही होगी, मेरा गांव मेरा घर। अगर माँ उठी ना होती तो मैं सोता रहता। तो मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ,
0: जी
1: माँ की वजह से था और हूँ। खुद कम पढ़ा, खुद मेहनत करी, हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और ये सिखाया कि सपने देखो, सपने इंसान के पूरे होते हैं। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो और चलते रहो।
0: आप अपनी माता जी का भी नाम लीजिए, आज पिताजी का भी नाम लीजिए और अपने परिवार के में जो आपके जीवन संगनी हैं आप उनके बारे में भी बताइए।
1: हमारी माता जी का नाम श्रीमती सुमन कथूरिया, हमारे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्रीमान भगवान दास कथूरिया, और मेरी जो पत्नी है उनका नाम है श्रीमती कार्तिका शर्मा। हमारा एक 6 साल का बच्चा भी है, समरवीर उसका नाम है। तो ये हमारा परिवार है।
0: क्या
1: अब
0: बात
1: मैं
0: है
1: अपने छोटे से परिवार के साथ दिल्ली में रहता हूँ।
0: जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि अभी छुट्टियों में आप यहाँ आए हैं और आज हमारे साथ इतने गंभीर विषय पे इतने आराम से हम बातचीत कर पा रहे हैं और हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, आपसे चलते चलते अब आखिरी सवाल हम करेंगे, कार्यक्रम का अब समय जो है वो उसकी लिमिट है और वो अब समाप्त हो रहा है, तो चलते चलते हमारे जो युवा है आज जो संघर्षरत हैं,

0: जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बड़ा करने की सोच रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज में या प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज में, प्रचुरता में भी या अभाव में भी, कैसे अपने आप को संयमित रखें, कैसे अपने आप को, बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, उनसे बचाते हुए अपने लक्ष्य की ओर, मछली की आंख की ओर
1: जी
0: कैसे
1: हाँ जी हाँ
0: देखते रहे वो, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: अंशुमन, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारी वार्ता को समाप्त करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इस चीज को समझें कि आज के दौर में इन्फॉर्मेशन बहुत सुलभ है और बहुत आयत में उपलब्ध है, जो हमारे दौर में नहीं था। हमें एक नौकरी पाने के लिए रोजगार समाचार ढूंढना पड़ता था 10 रुपए का, पड़ाव पे जा करके। लेकिन अब आपके हाथ में दुनिया है, आपके मोबाइल के थ्रू आप इसको अच्छी तरीके से देखते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। माइंडलेस स्क्रोलिंग, एडिक्टिव स्क्रोलिंग, ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं। इसलिए श्रोताओं को, मेरे युवा साथियों को मेरा यही कहना है कि जॉब्स विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कष्टमय होगा। इसीलिए आपको प्रयास ये करना है कि आप एक स्किल को अपने हाथ में अच्छी तरीके से उठा सकें, उसमें महारत हासिल कर सकें। और इसलिए फोन का इस्तेमाल हमें सोच के करना है, विवेकपूर्ण तरीके से, यूट्यूब का विवेकपूर्ण तरीके से। कई सारे कोर्स हैं हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के, MIT के, जो फ्रीली अवेलेबल है। उससे हमें कार्य कौशल को आगे बढ़ाना है, ना कि इंस्टा, फेसबुक और ऐसी जगहों पे अपना टाइम को व्यर्थ करना है।
0: बिल्कुल विकास कथुरिया जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, और हमारे श्रोताओं को, खासकर युवा श्रोताओं को ये बात माननी भी चाहिए। तो इसी बातचीत के साथ अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हैं। हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, इतनी सरल भाषा में इतने गंभीर विषय को आपने समझाया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद अंशुमन आपका, और धन्यवाद मेरे श्रोताओं का।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आपने सुना प्रतिस्पर्धा कानून पर विकास कथुरिया से अंशुमन झा की बातचीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए सुनते हैं श्रोताओं के द्वारा व्यक्त विचार। लीजिए सुनिए पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी शिवेंद्र श्रीवास्तव के व्यक्त विचार।
6: काल के ललाट पर, समय के कपाट पर कभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ, जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति की वाणी, ऐसी है हम सबकी अपनी आकाशवाणी। साहित्य, संगीत और कला को गर्भ में समेटे, लोक संस्कृति और लोक कलाओं को अपने तन पर लपेटे, गुजरी शताब्दी से दशकों तक इस देश की वाणी, मेरी अपनी आकाशवाणी अब और भी उन्नत, और भी समृद्ध, और भी प्रभावी हो गई है। समय की मृदुमंद मंथर गति में तिरता मेरा ये अपना संस्थान आज भी सुना रहा है अपना यशस्वी और तुमुल गान। 9 दशकों तक फैली इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों, कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना समय, जन जन की वाणी इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है कि स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं दिल का रिश्ता फिल्म का ये गाना, जिसे अपनी आवाज से सजाया है अलका याग्निक, किशोर कुमार कुमार शानू और उदित नारायण ने। समीर के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: इस गाने को हमने लिया फिल्म खलनायक से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज थी अलका याग्निक की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना। आइए सुनते हैं अगला गाना, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जतिन ललित ने इस गाने की धुन बनाई है आनंद बख्शी के बोल पर।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है वारिस फिल्म से, लता मंगेशकर मनमोहन सिंह की आवाज़ में। इस गाने को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है उत्तम जगदीश का।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आप सुन रही थीं, सुन रहे थे अभी आप धनवान फिल्म का गाना, जिसे लिखा था साहिर ने और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का था। आइए सुनते हैं अगला गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, सागर फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। पहले सुनेंगे नीलम सहाय से कुछ भोजपुरी गीत और फिर सुनेंगे ब्रजकिशोर दुबे की आवाज़ में कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं नीलम सहाय की आवाज़ में ये झूमर।

नीलम साहा की आवाज़ में आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत, और ये सुनते हैं कृषि गीत। कलाकार हैं नीलम सहाय।

0: नीलम साहा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये झूमर। बिहार के लोक संगीत कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अब ब्रज किशोर दुबे की आवाज़ में कुछ भोजपुरी लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं इस हनुमान भजन के साथ।

0: ब्रजकिशोर दुबे की आवाज में आप सुन रहे थे ये निर्गुण, और इसी के साथ कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत यहीं समाप्त होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नारी जगत सुनने वाली सभी प्यारी सखियों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, सामाजिक भेदभाव समाज की एक ऐसी बुराई है जिसमें लोगों के साथ उनकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग और गलत व्यवहार करना, ये समाज के लिए अनुचित और हानिकारक है। बहनों, हम सभी इंसान हैं, हर व्यक्ति समान सम्मान और अधिकार का हकदार है। जब किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे दुख और अपमान महसूस होता है, इससे समाज में असमानता और आपसी दूरी बढ़ती है। बहनों, एक अच्छे समाज की पहचान ये है कि वहाँ सभी लोगों को बराबरी का अवसर और सम्मान मिले। बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और समानता का व्यवहार करेंगे तो हमारा देश और अधिक मजबूत बनेगा। हमें बचपन से ये सीखना चाहिए बहनों कि सभी लोग बराबर हैं और हर व्यक्ति सम्मान का पात्र है। बहनों, भारत का संविधान भी सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे देश के लोकतंत्र और न्याय की भावना को मजबूत करता है। मैनो, हमें अपने दैनिक जीवन में भेदभाव से दूर रहना चाहिए। स्कूल, घर, कार्यस्थल या समाज में भी सभी के साथ मित्रता और सहयोग और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए और दूसरों को भी समानता का महत्व समझाना चाहिए। बहनों, सामाजिक भेदभाव एक अनुचित और गलत सोच है। ये समाज में असमानता और नफरत को बढ़ाता है। हम सभी लोगों के साथ समानता, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। बहनों, आपसे बातें आगे भी हम करेंगे, फिलहाल एक गीत का आनंद लेते हैं।

नो, अभी पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। दाम बढ़ने से हमारा घर का बजट भी बढ़ रहा है। वैसे भी बहनों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण थोड़ी ईंधन गैस की कमी हो गई है, जिसके कारण से इसकी कीमत बढ़ भी रही है। और हम सब भी जानते हैं बहनों कि ईंधन का स्रोत भी सीमित है। ईंधन का हमारे दैनिक जीवन में पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य ईंधनों का उपयोग वाहनों और घरेलू कार्यों में किया जाता है। यदि हम इनका अधिक और अनावश्यक उपयोग करेंगे तो भविष्य में इनकी कमी हो सकती है। इसलिए ईंधन की बचत करना बहुत ही आवश्यक है। मैनो, हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल उपाय अपनाकर ईंधन की बचत कर सकते हैं। वैसे भी महिलाएं घर और परिवार के कई महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करती हैं, इसलिए ईंधन की बचत में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आप रसोई में ईंधन की बचत कर सकती हैं। खाना बनाने से पहले सभी सामग्री तैयारी कर लीजिए। खाना बर्तन का ढक्कन लगाकर पकाइए, इससे भी गैस कम खर्च होती है। प्रेशर कुकर का अधिक उपयोग कीजिए, क्योंकि इसमें खाना जल्दी पकता है। चावल दाल बनाने से पहले उसे अच्छे से धोकर बनाइए। गैस की जो लौ है उसके आवश्यकता अनुसार रखिए। बहुत तेज लौ जलाने से ईंधन की बर्बादी होती है। घर में आप बिजली की बचत कर सकती हैं। जैसे कि अनावश्यक रूप से जल रही बल्ब, पंखे या अन्य उपकरण बंद रखिए। एलईडी बल्ब और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कीजिए। प्राकृतिक रोशनी और हवा का अधिक उपयोग कीजिए। घरेलू उपकरणों जैसे कि मिक्सी है, ओवन है या फ्रिज की नियमित देखभाल कीजिए, ताकि उसमें ऊर्जा कम खर्च हो। और आप कहीं पास जा रही हैं या कहीं, तो आप पैदल चलिए या फिर साइकिल का उपयोग कर सकती हैं। सार्वजनिक बस या ट्रेन का उपयोग करने से भी ईंधन की बचत होती है। वाहन चलाते समय अनावश्यक रूप से इंजन चालू नहीं रखना चाहिए और वाहन की नियमित सर्विस करानी चाहिए। बहनों, ईंधन की बचत देश के विकास में भी योगदान देती है। भारत अपनी जरूरत का काफी ईंधन विदेशों से खरीदता है, और जब हम ईंधन बचाते हैं तो देश का धन भी बचता है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होती है। तो बहनों, महिलाएं अपनी छोटी छोटी आदतों से ईंधन की बड़ी बचत कर सकती हैं। रसोई घर और यात्रा में सावधानी बरत कर वह न केवल परिवार का खर्च कम कर सकती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इसलिए

0: हमें हमेशा ईंधन का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। और उसी तरह से बहनों, मितव्ययिता यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सोच समझकर खर्च करना। बहनों, जब हम फिजूल खर्ची कर से बचते हैं तो अपने धन, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। इसलिए हमें फिजूल खर्ची से बचकर मितव्ययी जीवन अपनाना चाहिए। आइए बहनों, इसी संदर्भ में सुनते हैं वार्ता। विषय है मितव्ययिता से अधिक लाभ और आत्मिक उन्नति। वार्ताकार हैं सुनीता अग्रवाल।
1: नमस्कार। मितव्ययिता का अर्थ है धन और संसाधनों का सोच समझकर और आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और अनावश्यक खर्चों से बचना। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम कंजूसी करें। उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से प्रबंधन करना ताकि भविष्य के लिए बचत की जा सके। धन के साथ साथ समय, ऊर्जा और सामग्री का अपव्यय न होने देना ही मितव्ययिता है। भविष्य की जरूरतों और आपात स्थितियों के लिए धन बचाना अति आवश्यक है। ये सबसे आवश्यक है कि अपनी आय और बजट को ध्यान में रखते हुए सीमित दायरे में खर्च करना। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सस्ती चीजें खरीदने की बजाय लंबे समय तक चलने वाली चीजों को खरीदें, यानी गुणवत्ता पर ध्यान दें। अपनी मूल आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करना, दिखावे और फिजूल खर्ची से बचना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमने ये भी देखा है कि जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है, तो उसे संतुलित करने के लिए सरकार भी मितव्ययिता के उपाय अपनाती है। सरकारी खर्चों में कटौती, गैर जरूरी योजनाओं को रोकना और करों में वृद्धि जैसी बातें शामिल की जाती हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अपने आप पर नियंत्रण रखकर हम एक बड़ी बचत कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्ची सभ्यता वह है जो आदमी को न्यूनतम वस्तुओं पर जीवन निर्वाह करना सिखाए। धन के प्रति अत्यधिक लगाव जहां तनाव और चिंता बढ़ाता है, वहीं मितव्ययिता उस तनाव को समाप्त कर जीवन में ऊर्जा और समय को सार्थक कार्यों में लगाने की प्रेरणा देती है। धन का उपार्जन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उपार्जित धन का सदुपयोग और मितव्ययी दृष्टिकोण अपनाना। विद्वानों का मानना है कि जीवन जीना एक कला है। गुणीजन अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना जानते हैं। मितव्ययिता द्वारा हम न्यूनतम संसाधनों से भी अधिकतम सुखदायी जीवन जी सकते हैं। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके संपूर्ण जीवन में उतार चढ़ाव ना आया हो। अंतर इतना ही है कि कुछ को अधिक संघर्ष करना पड़ता है और कुछ को कम। इसी संघर्ष में सुख और दुख के भाव निहित होते हैं। भगवान महावीर जी ने मितव्ययिता की दृष्टि से इच्छाओं के परिसीमन और व्यक्तिगत उपभोग के संयम का सूत्र दिया है। संयम ही हमें त्यागपूर्ण उपभोग करने की ओर प्रवृत्त करता है। संसाधनों का संरक्षण प्रकृति के दोहन को कम करता है। इससे हम भावी पीढ़ी के लिए अधिकतम संपदा छोड़ सकते हैं। यही बचत हमारी उन्नति का आधार बन सकती है। मितव्ययिता का अर्थ सिर्फ भौतिक और धन संपदा के अपव्यय से नहीं है, इसके मायने बहुत ही व्यापक हैं। यह हमें प्राकृतिक संसाधनों, शब्दों और आहार में भी रखनी चाहिए। शब्दों में इस सूत्र को आत्मसात करके हम कई अप्रिय स्थितियों से बच सकते हैं। इसी तरह आहार का संयम हमें पर्याप्त पोषण प्रदान करने के साथ ही कई व्याधियों से बचा सकता है। मितव्ययिता को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग इसे कंजूसी के समान समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने से संबंधित है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को आराम से पूरा करते हुए किफायती जीवन जीना ही इसका अर्थ है। मितव्ययिता शब्द लैटिन शब्द फ्रुगेलिस से आया है, जिनका अर्थ है संयम, मितव्ययिता और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। मितव्ययी जीवन जीने के लिए धन प्रबंधन के प्रति सजग रहना आवश्यक है। अपने धन पर नियंत्रण रखना और उसे अपने ऊपर हावी न होने देना एक ऐसा कौशल है जिसे

विकसित करना महत्वपूर्ण है। किफ़ायत के साथ चलना हमारी समझदारी है। किफ़ायती भोजन में दाल, रोटी, चावल, सब्जी जैसी बुनियादी चीज़ें शामिल होनी ही चाहिए, जो पौष्टिकता के साथ संतुलित आहार भी है। नई चीज़ों को बार बार न खरीदकर पुरानी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करना भी समझदारी है। खर्चीले सैर सपाटे के बजाय मुफ्त या किफ़ायती मनोरंजक गतिविधियों का विकल्प चुनना, जैसे कि लंबी पैदल यात्रा या खेल कूद का आयोजन करना चाहिए। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके मितव्ययी जीवन शैली बचत बढ़ाने और ऋण कम करने में मदद करती है, जिससे अधिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है। वित्तीय बोझ कम होने से मन को अधिक शांति मिलती है। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना कचरे को कम करता है, जिससे पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है आपात स्थिति के लिए हम तैयार भी रहते हैं और अप्रत्याशित खर्चों में अतिरिक्त धन उपलब्ध रहता है। किफ़ायती होने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ दें, बल्कि उसे कम खर्चे में पाने के तरीके खोजना है, जैसे डिस्काउंट या कूपन का इस्तेमाल करना। हम सस्ते दामों पर अच्छी चीज़ ले सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ रचनात्मक बनना होगा। पुराने कपड़ों का फिर से इस्तेमाल करना, बचे हुए भोजन से नया व्यंजन तैयार करना, सब हमारी कुशलता पर निर्भर है। जो कुछ हम खुद बना सकते हैं उसे स्वयं बनाएं, जैसे साज सज्जा के सामान, उपहार के सामान, ये सभी कम खर्च में और आकर्षक बन सकते हैं। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे ऐसी मितव्ययी आदतें अपनाएं जो हमारी जीवन शैली के अनुकूल हो। हमें ये हमेशा याद रखना है कि मितव्ययिता एक समझदारी है, अच्छी और विकसित जीवन शैली की ओर एक यात्रा है। अपनी आय और व्यय पर अपनी दृष्टि रखें और एक एक पैसे का हिसाब करें। बजट बनाकर उसके अनुकूल चलना ही बुद्धिमानी है। संसार में व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में अपना स्तर ऊंचा करने के लिए परिश्रमशील रहे हैं, वे विनयशील और मितव्ययी रहे। कितने ही पुरुषार्थियों ने अपने शारीरिक बल से अपना निर्वाह किया, यहाँ तक कि वे योग्य और विद्वान बन गए। उनके पास सिर्फ एक वस्तु थी, वह थी दृढ़ इच्छा और आत्मविश्वास। हमारा संयम और हमारी संयमित आदतें ही हमारी प्रगति का आधार है। सादा जीवन, उच्च विचार की आदत हमें हमेशा संतुष्ट करती है। मितव्ययिता को और अच्छी तरह समझा जा सकता है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। मोहन नाम का व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह महीने में 5,000 रुपये कमा लेता था। दो बेटे भी थे उसके। पड़ोस में रहने वाला जतिन भी उतना ही कमाता था, लेकिन वह अपनी पूरी आमदनी दिखावे और शौक में उड़ा देता था। हर महीने कपड़े खरीदना, बाहर घूमना, खाना, यही सब करते हुए वह भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाता। लेकिन मोहन हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा एक गुल्लक में डाल देता था। वो हमेशा कहता, बचाया गया धन ही कमाया गया धन है। बच्चों को अनावश्यक बिजली खर्च न करना, ज़रूरतों की चीज़ों को संभाल कर रखना और सादा जीवन जीने की तरकीबें समझाता। कुछ सालों बाद गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। दोनों पड़ोसी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जतिन के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसे अपनी ज़मीन, गहने सब बेचने पड़े, लेकिन मोहन ने अपनी मितव्ययिता से जो धन राशि बचाई थी उससे अपना इलाज करवाने के साथ साथ घर की रोजमर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा किया। सीमित आय में भी समझदारी से काम लेने पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मितव्ययिता से आत्मिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की बजाय जो उपलब्ध है उसमें संतुष्ट रहने की कला आध्यात्मिक प्रगति का पहला सोपान है। जब हम अनावश्यक दिखावे को छोड़ते हैं तो मन से धन का लोभ कम होता है, मन और इंद्रियों पर संयम होता है, जिससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। संत कबीर दास जी ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी ने ईश्वर से एक संतुलित और संतोषजनक जीवन की प्रार्थना की है। वे कहते हैं, ईश्वर

0: मुझे बस इतनी संपत्ति या धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सके। मुझे इतनी कृपा देना कि मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और यदि मेरे द्वार पर कोई मेहमान या जरूरतमंद आए तो वो भी खाली हाथ या भूखा ना लौटे। आज के संदर्भ में बस यही कामना सबकी होनी चाहिए, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थीं वार्ता। विषय था मितवैयता से अधिक लाभ और आत्मिक उन्नति। वार्ताकार थी सुनीता अग्रवाल। सच बहनों, मितवैयी जीवन अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। और बहनों, हम आपसे चर्चा करेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में। बहनों, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें आदिवासी समुदाय के भगवान के समान सम्मान दिया जाता है और उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को शिक्षा, स्वच्छता और एकता का महत्व समझाया। वे चाहते थे कि आदिवासी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और किसी भी प्रकार के शोषण को स्वीकार ना करें। अंग्रेजी शासन के दौरान आदिवासियों के जमीन छीनी जा रही थी और उन पर अत्याचार भी किए जा रहे थे। बिरसा मुंडा ने इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया, जिसे उल गुलान यानी महाविद्रोह कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाना और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विरोध करना था। बिरसा मुंडा के साहस और नेतृत्व से घबरा कर अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनका संघर्ष, साहस और देशभक्ति आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है। बहनों, आज 9 जून उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सशस्त्र नमन करते हैं। और बहनों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। नई नई तकनीकों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। इन्हीं तकनीकों में से एक महत्वपूर्ण तकनीक है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का अर्थ होता है बहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब है बहनों कि ऐसे मशीनें या कंप्यूटर बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और निर्णय ले सके। अगर इसे हम सरल शब्दों में समझें बहनों, तो AI वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन को इस तरह से बनाया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता रख सके। जैसे कि किसी सवाल का जवाब देना, तस्वीर पहचानना, आवाज समझना। आज कई मोबाइल ऐप, वेबसाइट और मशीनें AI की मदद में काम करती हैं। आज के समय में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बहनों, जब हम मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट का उपयोग करते हैं, इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं, ऑनलाइन अनुवाद करते हैं या किसी ऐप से सुझाव प्राप्त करते हैं, तब कहीं ना कहीं AI काम कर रहा होता है। मैंने हमारे जीवन में AI का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करता है। ये कठिन विषय को समझाने, प्रश्नों के उत्तर देने और नई चीजें सीखने में सहायता करता है। स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग, डॉक्टरों को रोगों की पहचान करने और बेहतर उपचार करने की योजना बनाने में भी AI मदद कर सकता है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में किसानों को मौसम की जानकारी, फसल की देखभाल और उत्पादन बढ़ाने में AI आधारित तकनीकों की सहायता मिल सकती है। बहनों, हमारे दैनिक जीवन में जैसे ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग जैसी सेवाओं में AI का उपयोग लोगों के काम को सरल और सुविधाजनक बना रहा है। इससे लोगों का समय भी बचता है। AI एक उपयोगी तकनीक है बहनों, लेकिन इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। आने वाले समय में AI का महत्व और भी बढ़ेगा और ये मानव जीवन के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। और चलते चलते बहनों, आइए एक सुनते ही प्यारा सा गीत।

0: बहनों, इसी गीत के साथ अब दीजिए रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक

सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

0: खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षयवट। कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुजुर्गों में भूलने की समस्या और इसके उपचार। इस विषय पर डॉक्टर संजय कुमार और राम बालक प्रसाद के बीच बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि बुढ़ापा में एक भूलने की आम बीमारी है, जिस विषय पर हम चर्चा के लिए आज डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत कर रहे हैं। सर, बुजुर्गों में आम बीमारी कौन कौन सी है जो शुरू शुरू में जो बुजुर्गों में बढ़ती है?
4: जब तक आम बीमारियों का नाम है उसमें जितनी भी बीमारियां जिसको डिजेनरेटिव डिजॉर्डर्स बोल

0: होते हैं,
1: जी
0: जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर पेट की बीमारी, हृदय रोग, ब्रेन की बीमारी। आज जहाँ तक आपका विषय है
1: जी
0: जो वो ब्रेन से संबंधित
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: जिसमें भूलने का एक कॉमन बीमारी है,
1: जी
0: जहाँ तक बीमारी का सवाल है उसको डिमेंशिया बोलते हैं।
1: डिमेंशिया
0: जी बिल्कुल। और जो भूलने की चीज़ है, तो डिमेंशिया और भूलने की आदत में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे
1: जी
0: कि एक भूलने की आदत हो सकती है कि आदमी को बचपन में भी है, थोड़ा सा उनके एडल्ट टाइप में भी है, और बुढ़ापा में भी साथ साथ चल रहा है,
1: जी
0: लेकिन उन सारे चीज़ों को डिमेंशिया नहीं कहते हैं।
1: जी
0: और डिमेंशिया होने से का मतलब है कि ऐसी भूलने की बीमारी जिससे कि आपके नॉर्मल लाइफ में और ऑक्यूपेशनल लाइफ में अब प्रॉब्लम आ रहा है,
1: जी जी
0: उसको बोलते हैं डिमेंशिया। नहीं तो भूलने की चीज़ एक आम बात भी हो सकती है कि जिसको डिमेंशिया से अलग करना ज़रूरी होता
1: जी इस बीमारी का
0: है।
1: मुख्य कारण क्या है?
0: देखा जाए, जहाँ डिमेंशिया की बात है, ये डिमेंशिया दो तरह का होता है। एक ऐसा डिमेंशिया जो शरीर में किसी तरह के विकार के वजह से होता है, जैसे कि विटामिन B12 का डिफिशियंसी और थायराइड की बीमारी, कुछ इन्फेक्शन जिसमें पुराने ज़माने में सिफिलिस हुआ करता था, अभी एड्स की बीमारी है, HIV बीमारी
1: जी
0: जिसको
1: जी
0: बोलते हैं, किडनी के रोगियों में और साथ साथ लीवर की बीमारियों में एक भूलने की बीमारी साथ साथ चलती है। लेकिन अगर इन चीज़ों को ठीक किया जाए तो भूलने की बीमारी पूरी तरह से नहीं, तो आंशिक तरह से ठीक हो सकती है। एक दूसरी जो भूलने की बीमारी होती है, जिसमें अल्जाइमस डिजीज आता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है, और आज के आधुनिक युग में बहुत सारे इलाजों के बावजूद भी हम लोग उसको धीरे कर पाते हैं, लेकिन उसको पूर्णतः ख़त्म नहीं कर पाते हैं।
1: जी जी
0: ये एक बड़ा
1: कहने
0: असर
1: का मतलब हुआ कि बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है,
0: नहीं होता।
1: मात्रा में कम की जा सकती है
0: जी
1: थोड़ी सी।
0: बिल्कुल, जी बिल्कुल।
1: खान पान में कौन सा चीज लें जिससे किस बीमारी से बचा जाए?
0: जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिमेंशिया दो तरह का है, वन रिवर्सिबल, मतलब कि जिसको हम लोग बदल सकते हैं, वो खान पान से संबंधित है।
1: जी
0: एक ऐसा डिमेंशिया जो कि हम लोग जेनेटिकली प्रिडिस्पोज हैं उस चीज़ के लिए, अब किसको होगा ये मालूम नहीं, लेकिन जिनको होगा उसको खान पान से कोई संबंध नहीं है।
1: जी
0: तो खान पान से जो जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जिसको बदल सकते हैं, उसका खान पान से डेफिनेट संबंध है। जैसे कि जो मैंने बताया विटामिन B12, ये पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ जैविक चीज़ों में मिलता है, जैसे
1: जी
0: मांस, मछली, अंडा,
1: जी
0: लेकिन जो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं उनको बाहर से एडेड इस विटामिन को तकरीबन 30-40 साल की उम्र के बाद उनको खाने सेवन कर देना शुरू कर देना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि जिसको हम रोक सकते हैं उसको तो कम से कम रोक
1: जी
0: सकते हैं,
1: जी जी जी
0: जिनको नहीं रोक सकते हैं उसका खान पान से कोई संबंध नहीं है।
1: जी
0: लेकिन जिनको रोक सकते हैं उसमें ये थायराइड की बीमारी, जिसमें आपको बंदा गोभी, गोभी, ओल, इन चीज़ों का प्रयोग कम करने से वो बीमारी भी संरक्षित होता है और उससे हम उसका रोकथाम कर सकते हैं।
1: जी सर, ये क्या बीमारी वंशानुगत है?
0: तकरीबन इस जिसके अल्जाइमस डिजीज यानी डिमेंशिया का जो सबसे कॉमन वैरायटी होता है वो अल्जाइमस डिजीज, उसमें तकरीबन 1 से 3% ही वंशानुगत होता है। नहीं तो ज़्यादातर यही है कि ये अपने आप होता है, किन लोगों में डेवलप करेगा अभी सब तरह की खोज चल रही है, लेकिन किस पार्टिकुलर आदमी को ये होगा ये अभी आप नहीं बता सकते हैं।
1: चिकित्सा के क्षेत्र में
0: जी
1: इसका उपचार
0: जी
1: कैसे किया जा सकता है?
0: जैसा कि मैंने बताया कि जो डिजेनरेटिव डिमेंशिया यानी अल्जाइमस डिजीज़ है, उसको पूर्णतः ठीक करने का उपाय अभी तक मनुष्य मात्र के पास नहीं आया है।
1: जी
0: इसके लिए लोग लगे हैं, बहुत तरह का प्रयोग चल रहा है, कुछ दवाइयाँ, नई दवाइयाँ आई हैं जिससे कि हम लोग इसके प्रोग्रेशन को या इसके बढ़ने की गति को हम लोग धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, सो दैट कि हम लोग का गोल हो जाता है कि दैनिक जिंदगी में दैनिक कार्यक्रम कर पाएँ,
1: जी
0: अपना अपना कार्यक्रम, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ। लेकिन ऐसे लोगों के साथ जब तक परिवार का सहयोग नहीं होता है, इनका केयर करना बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: जी
0: जी
1: तो उस परिवार का सहयोग उस बुजुर्ग व्यक्तियों को किस स्तर पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए
0: जैसा
1: उसका?
0: कि एक छोटा बच्चा जो 2 साल से लेके 6 साल का बच्चा है, जो अपने घर का पता भूल जाता है, आप उसको उसका उसका इमेजिनेशन करें। जो ऐसा बच्चा जिसको रुपये के बारे में मालूम नहीं कि
1: मालूम है
0: सौ
1: कि
0: ये सामान सौ
1: क्या
0: रुपये
1: क्या
0: के
1: ले रहे हैं,
0: पच्चीस
1: क्या दे
0: क्या
1: रहे
0: दे रहे हैं,
1: हैं।
0: वो समझ लीजिए। जिसको ये नहीं मालूम है कि गैस खोल
1: हाँ,
0: देने के बाद इसको बंद
1: बंद किए
0: करने
1: हैं कि
0: की
1: नहीं
0: ज़रूरत
1: किए
0: है कि
1: हैं,
0: नहीं,
1: चश्मा कहाँ
0: हाँ
1: रख
0: नहीं
1: दिए
0: कहाँ
1: हैं,
0: रख दिए हैं, तो ये आपको बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि ये 60 या 70 साल के बच्चे हैं जिनके पास अब दिमाग 2 साल का हो गया है। जी, तो आप उनके आपके आपके मैनेजमेंट में ये बात का ख्याल रहेगा, पूर्णतः मैनेजमेंट।
1: मतलब कि जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति घर परिवार में अगर है, माँ बाप हैं, उसको हमेशा केयर करते रहना पड़ेगा, वो सामान कहाँ रखें ये बताना पड़ेगा, अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है उनको, ये चश्मा उनका कहाँ, उनका कहाँ कलम है, कोई ना कोई एक व्यक्ति उनके साथ में चाहिए।
0: इसके बारे में एक बार और बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बीमारी इनिशियल स्टेज में यूजुअली नहीं पकड़ा जाता है। वजह
1: जी
0: ये है कि जो अगर याददाश्त की बात

0: करें, मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो तीन तरह का मेमोरी होता है। जैसे कि हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, ये वर्किंग मेमोरी है।
1: जी।
0: अब आप सवेरे ने नाश्ता में आपने क्या किया है उसके डिटेल्स के बारे में बताने, उसको रिसेंट मेमोरी बोलते हैं।
1: जी
0: और एक कि आपने आपकी शादी कब हुई है, आप कौन से स्कूल से पास किए हैं,
1: जी
0: वो बड़ा रिमोट मेमोरी है। इस
1: हाँ
0: अल्जाइमस डिजीज में अभी का वर्किंग मेमोरी तो ठीक होता है, रिमोट मेमोरी भी ठीक होता है, लेकिन
1: जी
0: रिसेंटली आपने क्या काम किया है वो काम गड़बड़ हो जाता है।
1: जी जी
0: जैसे आप किससे मिले, किसका
1: हाँ
0: फोन आया था, आपने
1: हाँ
0: नाश्ता किया है कि नहीं,
1: यस
0: आप अभी लैटरिन किए हैं तो उसमें पानी डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये
1: जी
0: भूल जाता है आदमी।
1: जी
0: तो उस चीज के लिए आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है।
1: हाँ इसमें भावनात्मक सहयोग को भी परिवार से बुजुर्ग व्यक्ति उम्मीद रखता है।
0: बिल्कुल, ये समाज और परिवार दोनों के लिए एक तो भावनात्मक बात है कि आपके घर के बुजुर्ग की स्थिति ये हो गई, लेकिन दूसरी बात है कि पूरे परिवार के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।
1: जी
0: जैसे रात में वो बुजुर्ग उठा, उनको मालूम ही नहीं है कि पेशाब और पैखाने गुसलखाने का दरवाजा किधर है,
1: जी
0: वो मेन गेट खोल के बाहर चले गए रोड पे और
1: जी
0: भूल गए कहाँ जाना है और
1: कहाँ
0: कहाँ
1: जाना
0: नहीं
1: है
0: जाना है,
1: जी
0: तो पूरे
1: जी
0: परिवार के लिए खतरा हो सकता
1: खतरा
0: है।
1: हो सकता है।
0: जी
1: इसलिए उनको आप मतलब कि अपने घर परिवार के बुजुर्गों का प्रॉपर ध्यान रखते हुए कब सोते हैं उनके सोए हैं कि ठीक नहीं सोए हुए हैं ये भी देख लेना चाहिए। और बाहर जाते वक्त रात में कम से कम एक गेट में ताला लगा, पता नहीं उनकी नींद खुली कब कहाँ
0: अगर
1: निकल
0: घर
1: गए,
0: में इस
1: इसे
0: तरह के रोगी
1: सुरक्षित।
0: हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ नहीं आजकल तो ये बीमारी चूंकि सर सामान्य हो चुकी है तो हर आदमी धीरे धीरे धीरे धीरे भूलता जा रहा है, चाहे उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि लग रहा है कुछ भूल रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई आदमी खुद से ये कह दे कि डॉक्टर साहब या फलाने आदमी हमको भूलने की बीमारी है, उसको ये भूलने की बीमारी कभी नहीं
1: कब
0: है,
1: कभी नहीं हो सकती
0: कभी
1: है।
0: नहीं हो सकती, क्योंकि उसने
1: हाँ
0: उसको याद है कि हम कुछ भूल रहे हैं।
1: भूल रहे
0: तो
1: हैं
0: यही सबसे बड़ा डिफरेंस है,
1: जी
0: क्योंकि जिसको सही में भूलने की बीमारी है वो
1: जी
0: कभी आपके पास कंप्लेन लेके नहीं आता है कि हमको
1: जी
0: भूलने की
1: हाँ
0: बीमारी
1: उसके परिवार के
0: है।
1: सदस्य ही उसको लेकर जाते हैं
0: आते
1: कि
0: हैं कि
1: क्या
0: फलाना फलाना, देखिए ये
1: कुछ।
0: लैटरिन कर रहे हैं
1: हाँ
0: और पानी नहीं डाल रहे हैं उसमें,
1: जी
0: देखिए उन्होंने फलाना दाढ़ी बनाना आधा बनाया आधा
1: आधा
0: छोड़ के चले आए।
1: छोड़ चला
0: जब
1: गया।
0: ऐसी घटना, या फलाने ने वो नाश्ता किया फिर नाश्ता मांग रहे हैं, अगर ये तकलीफ लेके आए तो समझ जाना चाहिए कि इनको फलाने आदमी को भूलने की बीमारी है।
1: और इसमें सर हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या संदेश दे सकते हैं कि उनसे बचा जा सके।
0: देखिए अब इसमें जितने भी चीज़ हैं उसमें कुछ चीज़ हैं कि बुजुर्गों के साथ पारिवारिक तालमेल हमेशा बनाए रखें।
1: जी
0: हर वो नया आदमी या जो जवान है उनका बुजुर्गों से हर समय सलाह मशवरा, गप, टीवी और जितना भी खेल कूद साथ में
1: जी
0: रखने से पहली बात तो ये है कि वो बड़ा अर्ली पकड़ा जाएगा अगर
1: जी
0: इस तरह की कोई भी तकलीफ
1: जी
0: है तो।
1: जी
0: और ऐसा भी पाया गया है कि जो परिवार में जितना ही संलिप्त रहते हैं उसमें इसका डेवलपमेंट का चांसेस कम होता
1: कम
0: है,
1: रहता है।
0: जो बुजुर्ग अच्छे से बोलते खाते पीते परिवार के साथ, क्योंकि डिप्रेशन एक बड़ा सा कारण है इस तरह के डिमेंशिया के डेवलपमेंट का। तो बुजुर्गों को अगर हम अपना धन समझते हैं, अपना दौलत समझते हैं, तो दोनों हालत में अगर उनको नहीं है तो मेरे परिवार के अच्छे सदस्य के रूप में काम करते हैं, अगर है तो उनका केयर करना है।
1: अर्थात बुजुर्ग और घर के परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय होना
0: जी बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: सबसे बड़ी बात है कि अगर ये डिमेंशिया की बीमारी किसी भी अपने परिवार के बुजुर्ग में है तो जो भी अवेलेबल प्रॉपर, सबसे पहले इनका उचित चिकित्सीय इलाज जल्द से जल्द शुरू की जाए।
1: जी
0: अगर वो रिवर्स होने वाली चीज़ है तो उसका उचित इलाज करके दिया जाए,
1: जी
0: नहीं तो कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की दवा नियमित रूप से लिया जाए, नंबर एक। नंबर दो कि ऐसे बुजुर्गों को जिनको कि इनमें भीजू है स्पेशल, यानी कि उनको अपने जो मैप हम जिंदगी भर का याद करते हैं कि फलाना जगह पे मेरा मोहल्ले में मेरा घर है, इस घर में ये दरवाजा इधर है वो कोना, ये हमको अपने आप याद रहता
1: याद
0: है।
1: रहता है।
0: जैसे आपको सवेरे उठ के अगर अपने गुसलखाने में जाना है तो अपने आप चले जाते हैं आप वहां
1: जी
0: पे,
1: जी
0: आपको याद नहीं करना है कि वो बाएं
1: जी
0: जाना है कि दाएं
1: हाँ
0: जाना
1: हाँ
0: है,
1: जी जी
0: वो बुजुर्ग मेरा भूल गया रहता
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: तो हमको एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि भाई सवेरे पे समय पे उनका सब चीज वो नित्य क्रियाक्रम कर ले, नंबर एक। उसके बाद उनके पॉकेट में गर्दन में एक पूरे एड्रेस टेलीफोन नंबर का टैग हमेशा 24 घंटा रहना चाहिए,
1: हाँ
0: कभी उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेले कभी बाहर ना निकले,
1: जी
0: निकले तो साथ साथ निकले, जैसे उनको टहलवाना जरूरी है तो एक
1: बिल्कुल
0: आदमी साथ में जाना चाहिए।
1: जी
0: और जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें मोहल्ले के लोगों को जानकारी देना कि फलाने आदमी को ये बीमारी है, अगर गलती से ये अकेले घूमते गए तो उनको घर में बता दिया जाए।
1: घर
0: और तीसरी बात है कि इस तरह की परिचर्चा जैसे आप कर रहे हैं, ये परिचर्चा हमेशा इस समाज में, जैसे अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, इतने प्रखर नेता थे, उनको भी ये बीमारी है, तो ये किसी को भी हो सकता है। और इसके लिए पूरे समाज में एक उचित व्यवस्था तय करनी बहुत जरूरी है,
1: जी
0: इसको स्पेशली रिकॉग्नाइज करने भी बहुत जरूरी है। जैसे कि बुजुर्गों की इज्जत बहुत जरूरी है समाज में, उसी तरह उनसे उनसे जुड़े हुए इस बीमारी के बारे में सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर केयर करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को तय करना भी बहुत जरूरी है।

0: कि बुजुर्ग अगर मैदान में जाते हैं तो हर छोटा बच्चा मोहल्ले के जानते रहे कि इनको
1: जी
0: मोहल्ले से
1: हाँ
0: बाहर नहीं होने देना
1: बिल्कुल,
0: है।
1: चाहे अगर उनको लगे कि ये बाहर कहीं दूसरे जगह अपरिचित जगह पर जा रहे हैं, वहाँ उनके साथ कोई जाए और
0: बिल्कुल
1: उनको फिर वहाँ से वापस घर
0: बिल्कुल
1: लेके
0: बिल्कुल
1: करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: एक और हम जानकारी श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे
0: जी जी
1: कि अधेड़ उम्र में
0: जी
1: मतलब बुढ़ापा और जवानी के बीच का जो समय है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, वैसे तो मैंने बताया कि ऐसा बहुत नोन रिस्क फैक्टर डेवलपमेंट डिमेंशिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे किसी भी एजुकेशनल लेवल में किसी को हो सकता है, बहुत
1: जी
0: पढ़ना बहुत लिखना, लेकिन कुछ चीज़ें जिसका डेफिनेट रिलेशनशिप उससे स्थापित किया गया है, उसमें पहला चीज़ है मन को खुश रखना,
1: जी
0: अपने आप को डिप्रेस नहीं होने देना, यानी कि अपने मन लायक कार्यों में अपने आप को आप लगाए
1: अपने
0: रखिए,
1: रुचि के कार्य को बराबर
0: बराबर
1: निरंतर
0: करते
1: करते
0: रहिए।
1: रहना
0: आप कोई
1: चाहिए।
0: भी कार्य करते
1: जी
0: रहे,
1: जी
0: लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं हम सारा संगीत में प्रेम रखते हैं, हम सिनेमा, तो जरूर अपने समय निकाल के उन चीजों पे आप ध्यान दीजिए,
1: यानी
0: जैसे
1: अकेलापन महसूस नहीं हो,
0: नहीं
1: एकाकी
0: करना,
1: जीवन से बचें।
0: बचे नंबर एक। नंबर दो, आपका जो खान पियन है, यानी कि आप पूरे समय पे 4 टाइम खाना वो जरूर जाते रहना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: आदमी को बहुत ज़्यादा शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम, जैसे कि बहुत लोग होते हैं एक बार सवेरे खाएंगे एक बार शाम खाएंगे, बोलेंगे कि भाई हम अपने आप को दुबला रखना चाहते हैं, तो इस तरह के मेडिकेशन से जो कि आपको दुबला रखने के लिए बोलता है, मोटा रखने के लिए बोलता है, आयुर्वेदिक के नाम पे, यूनानी के नाम पे, जिसका कोई यूज़ आप जानते नहीं हैं, लेकिन
1: जी
0: बिना सोचे समझे उन दवाओं का प्रयोग ना
1: करते
0: करें,
1: हैं।
0: तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: तीसरी बात, नशा। नशा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण के रूप
1: जी
0: में आज के डेवलप्ड वर्ल्ड में आ रहा है, जैसे कि अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ है ना, और बहुत सारे जो वीड्स जिसका नाम है, जैसे कि गांजा है, भांग है, उन चीज़ों का सेवन करने से ऐसा पाया जाता है कि जिनको डिमेंशिया होना है लेकिन उनको 90 साल में होना है, उनको 60 साल में हो जाता है,
1: जी
0: तो नशा से बचने चाहिए। और तीसरा, अपने आप का फिजिकल एक्टिविटी हर आदमी को चाहिए, चाहे वो कुछ भी करते हैं, बागवानी ही क्यों ना करें,
1: जी
0: दौड़े ही क्यों नहीं, एक फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा अपने आप में, यानी पसंद का काम करना, जो भी मनोरंजन का काम, अपने अपने आप को मनोरंजन के करीब रखिए। दूसरा कि आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए। तीसरा, नशे से बचिए।
1: जी
0: और इन तीनों चीज़ों का डेफिनेट रिलेशनशिप इससे पाया गया है, और इस चीज़ को तो ध्यान में रखने से चांसेस कम होता है कि उस आदमी को डिमेंशिया डेवलप करे बाद के ज़िंदगी में।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी। हम आशा करेंगे कि हमारे श्रोता बुजुर्ग को इससे लाभ होगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: अक्षयवट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुजुर्गों में भूलने की समस्या एवं उपचार विषय पर डॉक्टर संजय कुमार और राम बालक प्रसाद के बीच बातचीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, लीजिए सुनिए देश गान।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका अद्वितीय है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के

0: माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, भारत की विविध बोलियों, लोक कलाओं, सांस्कृतिक संगीत, साहित्य को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने में इसका योगदान अतुल्य है। इसने हमारी क्षेत्रीय पहचान को वैश्विक मंच दिया है। डिजिटल क्रांति के आधुनिक दौर में भी आकाशवाणी ने खुद को निरंतर प्रासंगिक बनाए रखा है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यह अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: श्रोता, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहला गाना मोनाली ठाकुर की आवाज में, दम लगा के हैशा फिल्म से। इसे लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: फिल्म संगीत का शेष भाग सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।

AIR at 90. फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना, बर्फी फिल्म से पापन और सुनिधि चौहान की आवाज में। नीलम मिश्रा के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का शेष भाग इस संदेश के बाद।
1: 8 जून 2026 को आकाशवाणी अपना गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज डिजिटल स्ट्रीमिंग के दौर में भी आकाशवाणी हर आधुनिक प्रसारण तकनीकों को अपनाकर खुद को सशक्त माध्यम के तौर पे स्थापित कर देश की आवाज और पहचान बनकर हर कोने में पहुंच रही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर सूचना शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन को देश के हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा

0: को पूरा किया है तथा वर्तमान में अलग-अलग चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच को मजबूत किया है। अत्यंत बाल्यावस्था से रेडियो ही मेरा साथी रहा और अब तक है। जब रेडियो सेट की भी आवश्यकता नहीं, 24 घंटे आप अपने मोबाइल पर ही 23 से अधिक भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में न्यूज़ ऑन AIR ऐप, सोशल मीडिया, FM रेनबो, FM गोल्ड एवं अन्य मल्टी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के जरिए विज्ञान, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इस सुअवसर पर मुझे भी अत्यंत आनंद और हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस यात्रा का अत्यंत छोटा सा ही सही पर मैं भी एक हिस्सा मानती हूँ खुद को। नंदिता चक्रवर्ती, कलाकार, आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

यह आकाशवाणी पटना है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है कृष फिल्म से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, इब्राहिम अश्क के बोल और संगीत है राजेश रोशन का।

और ये सुनते हैं परिणीता फिल्म का ये गाना सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में स्वानंद किरकिरे के बोल पर। इस गाने की धुन बनाई है शांतनु मोइत्रा ने।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। पिछले एक वर्ष में विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने के लिए कई

महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र और नागरिकों की सेवा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को

कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी की विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि सावन कुमार पटना स्थित आरके राय अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का टिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गयाजी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौंड बालू टोल स्थित चालान सेंटर पर अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने 2 कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के 3रे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शेखपुरा उपभोक्ता संरक्षण फोरम के जज रमन कुमार ने इंडियन बैंक शेखपुरा के शाखा प्रबंधक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। मेडिकल क्लेम नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर फोरम ने यह आदेश सुनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: बिहार लोक भवन से जारी हुक्म में कहा गया है कि नए रहनुमा उसूल तय होने तक ब्लॉकों में कायम होने वाले डिग्री कॉलेजों में गेस्ट टीचरों का इंतखाब या तकरीरी का अमल शुरू नहीं किया जाएगा। रियासती हुकूमत आलमी बिहारी बिरादरी को रियासत की तरक्की, सरमायाकारी और जिद्दत के अहम धारे से जोड़ने के लिए एक खसूसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। इत्तलात व टेक्नोलॉजी के वजीर नीतीश मिश्रा आज पटना वाक़े टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह करेंगे। इत्तलात व टेक्नोलॉजी महकमा के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म मुल्क व बैरून मुल्क में बसे बिहारी नजात के लोगों को रियासत के तरक्याती सफ़र, सरमायाकारी के मौके और नॉलेज शेयरिंग की पहल से जोड़ने का मजबूत ज़रिया बनेगा। मरकजी हुकूमत ने वज़ीर आज़म उज्ज्वला मनसूबा के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की सालाना हद 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी परवीन मन खनूजा ने बताया कि साल 2016 में शुरू किए गए इस मंसूबे के तहत मुस्तफिदीन को हर साल 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तरमीम शुदा हद मुस्तफिदीन की औसत सालाना गैस खपत के करीब है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी की फातह भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वजीर खेल शरेसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने बैनुल-अक़वामी स्टेज पर बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि सावन कुमार पटना वाक़े आरके अकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं। रियासत के बेशतर खित्ते शिद्दत की गर्मी की जद में हैं। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। पटना, गया जी और औरंगाबाद का दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान दर्जे हरारत में कोई ख़ास तब्दीली का इम्कान नहीं है। वहीं रियासत के शुमाली और जुनूबी हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। जमुई ज़िला के खैरा थाना इलाके के तहत भोंड बालू घाट वाक़े चालान सेंटर से जरायमकारों ने असलहे की जद पर 8 लाख रुपये लूट लिए। लूट की मुखालिफत करने पर जरायमकारों ने 2 मुलाजमीन पर हमला करके उन्हें संगीन तौर पर ज़ख्मी कर दिया। सहरसा के ज़िला एजुकेशन महकमा दफ्तर इमारत की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आतिशजदगी के वाक़े में लाखों रुपए कीमत की इमलाक खाकिस्तर हो गई। सुपौल के भपटियाही थाना इलाके के बनेनिया कोसी घाट पर एक कश्ती बेकाबू होकर पलट गई। मकामी लोगों की मदद से कश्ती पर सवार सभी लोगों को महफूज तौर पर निकाल लिया गया है। शेखपुरा सारफीन तहफ़ फोरम के जज रमन कुमार ने इंडियन बैंक शेखपुरा के ब्रांच मैनेजर और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया है। मेडिकल क्लेम नहीं देने के मामले में दायर अर्जी पर फोरम ने ये हुक्म सुनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम

कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.indianrailways.gov.in से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार सूचना समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार का प्रसारण होगा, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन

0: कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क योजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व

0: स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार।

0: मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के ठीक 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए एक संदेश।
3: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बधाई।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की

0: बात के संवाद तक।
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी पटना है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पेश है पहला गाना अमित कुमार की आवाज में, तेरी कसम फिल्म से। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में लीजिए, सुनते हैं अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जमीन आसमान फिल्म से। अनजान के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: PIR at 90.
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, प्रेम पर्वत फिल्म से। इस गाने के बोल लिखे हैं जानेसार अख्तर ने और संगीतकार हैं जयदेव।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में लीजिए सुनते हैं अगला गाना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में सागर फिल्म से। आर डी बर्मन ने इस गाने की धुन बनाई है और गाने के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, सागर फिल्म से ये गाना हमने लिया था। आवाज़ थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की, जावेद अख्तर के बोल पर इस गाने की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:28 से। जय हिंद।

0: तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत
1: बिल्कुल
0: भी होंगे।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोताएं, सखियां, जो भी सखाएं, कि आप उसमें आम के आम, जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए,
0: जी
1: क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
0: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ? मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: और आपने किसी को ऐसा
0: जी
1: दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए
0: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम?
1: गीत सुनने से।
0: जी

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: कोरा
0: अब हमें
1: कागज से नहीं,
0: संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: बिल्कुल। और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष,
0: जी,
1: यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता
0: हम
1: देते
0: बात
1: हैं।
0: करेंगे जीनिया परसी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो जीनिया परसी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: जीनिया परसी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्जी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ
1: जी,
0: है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले जीनिया इवेंट्स का इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इनवाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी। और देखो पानी का जो रहते कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे
1: बिल्कुल। और
0: लिए।
1: जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी
0: जी
1: हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।

0: जी
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज़ है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो
0: बिल्कुल
1: ये सोचिए, ये एक हमें जागरूकता का विषय भी है
0: जी
1: कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है, जिस तरह हवा बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही पानी ज़रूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं,
1: जी
0: जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहाँ पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं। हम
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील, नदी, समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
1: बहुत बहुत
0: लगता है,
1: अच्छा लगता है।
0: लेकिन वहाँ पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है
1: बिल्कुल
0: उसे हम किस तरह से यूँ बेकार की चीज़ समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल।
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं, और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं वो चीज़ को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
1: बिल्कुल
0: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो। जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है, और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज़ को वो करें तो उनको समझाइए, सिखाइए।
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें। कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें। मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी ज़रूर से रखें। पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके। और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहाँ फिर प्रेम का अंकुर पर अपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है।

0: किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? और सबसे पहले तो तुम खुद को कटघरे में खड़ा करके खुद को जवाब देना बंद करो। तुम खुद इस वक्त क्रिमिनल बने बैठे हो और खुद ही जज भी बन गए हो और खुद को सजा भी सुनाए जा रहे हो। ऐसा मत कर छोटे।
1: मुझसे उसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा है जी। दोपहर से ही उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है।
2: मुझसे भी कहां देखा जा रहा है, पर मैं क्या करूं?
1: आप जाइए ना उसके पास, कुछ बोलिए ना उससे, ढांढस तो बंधाइए।
2: क्या बोलूं उसे? यह कहूं कि कोई बात नहीं, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि उस बच्चे ने पिछले 2 सालों में कितनी जी तोड़ मेहनत की है, मैं उसकी मेहनत को कोई बात नहीं कहकर छोटा नहीं करना चाहता।
1: पर दुख तो हमें भी है ना, हम भी तो उसके साथ ही जी रहे थे ये सपना।
2: हाँ, हम जी रहे थे, लेकिन इस समय हमारा बेटा अंदर से टूट चुका है। उसे इस वक्त हमारे किसी सलाह या नसीहत की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ हमारे साथ की जरूरत है। उसे यह एहसास चाहिए कि हम उसके साथ खड़े हैं।
3: फिर से रोहित का फोन, यार ये लोग समझते क्यों नहीं है?
4: आर्यन देखो बाहर तुम्हारे दोस्त रोहित और सिया आए हैं।
3: माँ प्लीज
5: मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी का सामना नहीं करना।
3: आंटी इसे बता दीजिए कि हम दोनों ने इसकी आवाज सुन ली है।
6: और हाँ आंटी इसे ये भी बता दीजिए कि हम यहाँ से बिना मिले जाने वाले नहीं हैं।
3: वाह भाई वाह, जनाब तो ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं जैसे दुनिया का आखिरी रिजल्ट आ गया हो।
7: मजाक मत कर यार, रोहित तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मेरा मजाक बनाने?
6: रोहित चुप रहो थोड़ा।
3: देख भाई आर्यन, हमें पता है कि तू दुखी है, लेकिन तू अकेला दुखी नहीं है यार, हम भी दुखी हैं क्योंकि हमारा सबसे प्यारा दोस्त पिछले 24 घंटे से गायब है।
7: तुम लोग नहीं समझोगे भाई, तुम दोनों का कॉलेज जो चल रहा है।
6: तो समझाओ ना हमें, हम समझने ही तो आए हैं।
3: आर्यन एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? मान ले आज तेरी जगह मैं फेल हो गया होता तो क्या तू मेरे पास आकर मुझे नालायक बोलता या मुझसे दोस्ती तोड़ देता?
7: बिल्कुल नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है।
3: तो फिर मेरे भाई जो सहानुभूति तू अपने दोस्त के लिए रखता है वो खुद के लिए क्यों नहीं रख पा रहा?
6: आर्यन एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तू इस वक्त उस रिजल्ट के नंबरों से दुखी है या लोगों की बातों से?
7: शायद दोनों से। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मैंने सबको निराश कर दिया, मम्मी पापा को, दीदी को, तुम लोगों को, सबको।
6: आर्यन निराशा और असफलता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। असफलता सिर्फ एक परिणाम है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना वो तो असली हार होती है ना। तुमने एग्जाम हारा है यार, जिंदगी नहीं।
3: और सुन भाई, तुझे लग रहा है तेरे 2 साल बर्बाद हो गए, चल बता इन 2 सालों की तैयारी में तूने खुद के अंदर एक अनुशासन देखा, टाइम टेबल फॉलो करना सीखा?
7: हाँ सीखा।
3: मेहनत करना और एग्जाम का भयंकर प्रेशर झेलना सीखा?
7: हाँ सीखा।
3: तो फिर मेरे भाई जिस इंसान ने अनुशासन, मेहनत और प्रेशर झेलना सीख लिया वो बर्बाद कैसे हो गया? ये सारी चीजें जिंदगी की हर परीक्षा में काम आएंगी।
7: मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था यार।
4: चलो सब लोग आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया है।
2: आर्यन बेटा तुमसे एक बात कहनी है, कल जब रिजल्ट आया था तो मैं भी कुछ पल के लिए शांत हो गया था, लेकिन बेटा मेरी उस चुप्पी को कभी भी अपने प्रति निराशा मत समझना। हमें तुम पर गर्व सिर्फ तब नहीं होता जब तुम टॉप करते हो, हमें इस बात पर भी उतना ही गर्व है कि तुमने 2 साल तक पूरी ईमानदारी से कोशिश की, तुमने मैदान छोड़ा नहीं था।
1: और सच कहूं बेटा, जब बाहर के लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है तो हमेशा मैं गर्व से ये कहती हूँ कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, और मेरे लिए तुम्हारी ये मेहनत किसी भी रिजल्ट से छोटी नहीं है।
7: मम्मी पापा आई एम सॉरी।
0: और सुन छोटे, हम सब तेरी ही टीम में हैं, बस कभी कभी ज्यादा चिंता की वजह से लोग सही शब्द ढूंढ नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार कम हो गया।

0: आर्यन उठ गए बेटा, चाय रख दो क्या कमरे में?
1: हाँ माँ, मैं उठ गया हूँ। और आज चाय में चीनी थोड़ी कम रखना।
0: अरे वाह, लगता है हमारा पुराना आर्यन वापस आ रहा है।
1: रोहित का मैसेज, भाई आज से दोबारा पढ़ने ना, वरना अगली बार मुझे ही ट्रीट देनी पड़ेगी। सिया का मैसेज, एक नई और मजबूत शुरुआत मुबारक हो।
2: हमेशा याद रखना आर्यन, एक सिंगल रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी का अध्याय नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक छोटा सा पन्ना था जो अब पलट चुका है।
3: और बेटा, इस बार तैयारी करते समय रिजल्ट की चिंता थोड़ी कम करना, अपनी मेहनत और कमियों को सुधारने की चिंता ज्यादा करना, बाकी जो होगा हम देख लेंगे।
1: हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मन में कोई डर नहीं होगा, सिर्फ मजबूत तैयारी होगी। इस बार कोई हार और निराशा नहीं होगी, सिर्फ एक नई सीख होगी। और कुछ हो भी जाए तो रुकना तो बिल्कुल नहीं होगा।
4: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये विशेष प्रस्तुति जिसमें आर्यन के किरदार में थे अतुल कुमार, माँ के किरदार में थी भारती कुमारी, पिता के किरदार में थे आदित्य राज और बहन के किरदार में थी अंजलि। वहीं रोहित के किरदार में थे प्रीतेश यानी कि मैं, और सिया के किरदार में थे सृष्टि पलक।
2: तो दोस्तों, ये था मनोबल मंगलवार के अंतर्गत हमारा ये विशेष प्रस्तुति, रुकना नहीं है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जो कि है फिल्म 3।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों अब बारी है रोजगार सूचना की।
4: श्रोताओं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। वहीं आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त की कर सकते हैं।
3: दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के कुल 11,127 पदों पर हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों का आवेदन आमंत्रित करता है RRB, और आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। आवेदन के से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.indianrailways.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
4: वहीं कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.ssc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
3: दोस्तों, SBI अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों के पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित करता है और ये ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जून 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर, जो कि है जीने के हैं 4 दिन सोनू निगम और साथी की आवाज में।

0: दोस्तों अब बारी है जानने की स्पोर्ट्स अपडेट।
1: बिल्कुल अंजलि, चलिए हम अपने श्रोताओं को बताते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान को 300 रन से हरा दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 564 और 8 दिन यानी कि 8 दिनों में 564 रन पर घोषित की थी, जबकि अफगानिस्तान की टीम को 152 से 112 रन पर ऑल आउट हो गई पूरी तरीके से। मानव सुथार ने मैच में 7 विकेट ले लिए।

0: वहीं हम आपको बताएं कि भारत ए वर्सेस श्रीलंका ए ट्राई सीरीज के मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। इस सीरीज में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर अपना जलवा दिखा रहे हैं।
1: इसी के साथ बढ़ते हैं अब अपने अगले ट्रैक की ओर, जो कि है दलेर मेहंदी और सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: दोस्तों, अब बारी है आपके और हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट यानी रोचक तथ्य की।
1: बिल्कुल
0: तो, प्रितेश,
1: अरे
0: क्या
1: क्यों
0: है
1: नहीं?
0: खास?
1: खास तो आज बहुत कुछ है। पहले सुनिए, हीरे का ग्रह सुना है आपने?
0: नहीं।
1: बहुत सारे ग्रहों के बारे में सुना है लेकिन
0: हाँ?
1: हीरे का ग्रह नहीं सुना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 55 क्रैंकी ई नामक एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरीके से हीरे और ग्रेफाइट से बना है। पूरा सुन लीजिए, 2012 में शोधकर्ताओं ने परिकल्पना की कि 55 क्रैंकी ई एक कार्बन समृद्ध ग्रह है। ग्रह के अत्यधिक आंतरिक दबाव और गर्मी के कारण वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसके द्रव्य का एक तिहाई हिस्सा जो है हीरे में परिवर्तित हो सकता है। हालांकि बाद में अवलोकन के कार्बन की सटीक मात्रा पर संदेह पैदा किया गया, फिर भी लोकप्रिय उपनाम हीरा ग्रह ही रखा गया।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है हमारे जाने का। आप अपने फीडबैक और सजेशन हमें मेल कर सकते हैं feedback@patna@gmail.com पर। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ अंजलि, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।
1: और मैं हूँ प्रितेश। नमस्कार।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं, प्रस्तुत है मगही कार्यक्रम मागधी।

मागधीके सुनिहार श्रोता लोगिनके दिव्या भारतीके प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, भारत में आकाशवाणी के इतिहास के लगभग 90 बरिस से भी ज्यादा पुरान है। ई लमहर यात्रा में आकाशवाणी ने खाली सूचना और मनोरंजन के प्रसार के लिए बल्कि भारत के अमूल्य लोक भाषा और लोक संस्कृति के जीवित रखे और उनका संरक्षित रखे में सबसे महत्तम वाला भूमिका निभाई है। भारत में कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी के कहावत प्रसिद्ध है। आकाशवाणी देश के कोना कोना में अपन स्थानीय केंद्र के स्थापना कैलन है। मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, अवधि, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और पूर्वोत्तर के सैकड़ों जनजातीय भाषा जैसे क्षेत्रीय बोली के आकाशवाणी अपन कार्यक्रम के मुख्य माध्यम से बनाल है। कितना ऐसन भाषा और बोली है जे खाली बोलल जाए और धीरे धीरे खत्म हो रहे है, तो उनका यहीं से तरंग मिला है। व्यवसायिक सिनेमा और आधुनिक संगीत के दौर से बहुते पहले आकाशवाणी ही देश के पारंपरिक संगीत के सबसे बड़ संरक्षक रहल है। दुर्लभ लोक विधा के दस्तावेजीकरण स्थानीय कलाकार के पहचान कैल है। भारत में लोक नाट्य और कहानी के एगो समृद्ध मौखिक परंपरा रहल है। आकाशवाणी एकरा आवाज के रूप में ढाल के घर घर पहुँचेलक है। रेडियो नाटक सांस्कृतिक धरोहर में संरक्षण कैल है। आकाशवाणी के कृषि जगत चाहे चौपाल जैसन कार्यक्रम खाली खेती किसानी के जानकारी देवे के माध्यम ही नहीं बल्कि उ ग्रामीण संस्कृति के केंद्र भी रहले है। चौपाल चाहे कृषि जगत जैसन कार्यक्रम स्थानीय भाषा में संवाद कैल जाए। एकरा में खाली खेती किसानी पर बात होब है बल्कि स्थानीय मुहावरा, कहावत और लोक कथा के भरपूर उपयोग होब है। छठ, बिहू, पोंगल, बैसाखी जैसन लोक पर्व पर विशेष प्रसारण के जरिए शहरी आबादी के भी अपन जड़ और परंपरा से जोड़ है। एक रेडियो नाटक साहित्य समागम के अलग अलग महत्व है। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में भी आकाशवाणी द्वारा संजोल गेल सादगी प्रमाणित है और लोक रंग के अपन एगो अलग अहमियत है। 90 साल से ज्यादा समय से आकाशवाणी खाली एगो सूचना के माध्यम नहीं बल्कि भारत के विविधता में एकता और ओकर समृद्ध लोक संस्कृति के जीवंत आवाज बना है और अपने श्रोता लोगिन भी एकरा से जुड़ल हथिन। तो हम एकरे अभी आगे बढ़ा रही है तो अपने सब सुनथिन लोक भजन सूर्यदीप सिंह यादव से।

वाह, बहुत निमन। आगे हिनका से और भी गीत सुनम। श्रोता लोगिन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 11 जून के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनावल जा हई। एकर मुख्य उद्देश्य बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 31 के तहत हर लड़कन के खेले के मौलिक अधिकार के रक्षा करे और समाज के एकर प्रति जागरूक करे के है। खेल खाली समय बितावे के साधन नहीं है, बल्कि लड़कन के सौसे विकास के बुनियादी जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेल कूद लड़कन के माथा में नए नया न्यूरॉन्स के निर्माण कर रहा है, जेकरा से नया कुछ बनावे के और निर्णय लेवे के क्षमता बढ़ा है। मैदान में खेले से शारीरिक मजबूती आवा है, जबकि समूह में खेले से लड़कन में सहयोग, नेतृत्व और हार जीत के स्वीकार करे के जैसन महात्म वाला सामाजिक और नैतिक मूल्य सीखा है। आय के आधुनिक समय में ज्यादा अकादमिक दबाव, मोबाइल, टीवी के बढ़ल स्क्रीन टाइम और कंक्रीट के शहर में सुरक्षित खेल के मैदान के कमी लड़कन के मानसिक और शारीरिक विकास के प्रभावित हो रहे है। ई दिन हमनी के ई याद दिलावा है कि माता पिता और समाज के रूप में हमनी के यही कर्तव्य है कि हम बच्चा के जीवन में पढ़ाई लिखाई और खेल के बीच के संतुलन बनाइए। हमनी के उनकर स्क्रीन लत के कम करके उनका मैदान के ओर भेजे लेल प्रेरित करे पड़ते, काहे कि एगो खुशहाल बचपन के स्वास्थ्य और सशक्त भविष्य के नींव रखा है। और एगो और चर्चा लेकरने पर तो देखते विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के है। समाज पर एगो बड़ कलंक है, मासूम हाथ में औजार और कंधा के जिम्मेदारी के बोझ बाल मजदूरी हमनी के सभ्य समाज के माथा पर सबसे बड़ कलंक है। जब देश डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ रहे है, तब लाखों लड़कन के बचपन खेत, ढाबा और

0: कारखाना के धुआं में दम तोड़ रहे हैं। ज्यादा गरीबी, अशिक्षा और सस्ता श्रम के लालच ही सामाजिक बुराई के मुख्य कारण है। बाल श्रम ने खाली लेखन के शारीरिक और मानसिक विकास के रोका है, बल्कि उनकर शिक्षा के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर है। जे हाथ कल देश के भविष्य के सवार सकलतीन है, वो आए मजदूरी के दलदल में फंस के गरीबी के अंतहीन चक्रव्यूह में पिस रहलतीन है। ई कलंक के मिटावे के लिए खाली कड़ा कानून बहुते नहीं है, बल्कि सामूहिक इच्छा शक्ति के जरूरत है। हमनी के व्यक्तिगत स्तर पर संकल्प लेवे पड़ते कि हम न तो बाल श्रम के समर्थन करबे और न ही एकरा अनदेखा करबे। अगर कहीं भी बाल मजदूरी दिखते तो तुरंत चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचित करबे। आथिन 12 जून के प्रण लेवे कि हर लेकन के ओकर अधिकार और ओकरा बचपन के शिक्षा के जरूर दिलेवे। तो ई प्रण आइए कहने लिए, और जब बाले बच्चा पर भी बात हो रहा है तो अपने सब लगी हम ले के लिए भेंट वार्ता, बचपन के जानलेवा बीमारी और ओकरा से बचाव के टीका। भेंट वार्ता कर रहे थीं डॉक्टर संजीव कुमार, और हिनका से बातचीत कर रहे लिए हम दिव्या भारती। आज हमनी के स्टूडियो में हथिन डॉक्टर संजीव कुमार, जे शिशु रोग विशेषज्ञ हथिन, और अपने अभी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हथिन। तो आज डॉक्टर संजीव कुमार से बच्चा सबके जान होबे वाला जानलेवा बीमारी और ओकरा से बचे के उपाय के बारे में बात करम। तो सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार के स्वागत है, और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब अपने के, कि अपने इतना कीमती समय हमनी सब के दिलथिन।
1: धन्यवाद दिव्या।
0: आज डॉक्टर साहब से बहुत जानकारी के बात करम, और जानम कि बच्चा सब में होवे वाला जे जानलेवा बीमारी है ओकरा पर अपने कुछ टिप्पणी डालथिन।
1: देखियो, बचपन के जे जानलेवा बीमारी हन ओकरा में कुछ गंभीर बीमारियां जो है ज्यादा हम लोग हाईलाइट कर रही है।
0: हाँ।
1: पहला है डिप्थीरिया,
0: अच्छा,
1: जेकरा हिंदी में मांस संतिका भी कहा है। दूसरा है पर्टुसिस, जेकरा लोग कहे कुकुर खांसी सुनलहू।
0: अच्छा। हो। हाँ, जरूर।
1: तीसरा है टीटनस, जेकरा हिंदी में धनु स्तंभ भी कहा है।
0: अच्छा।
1: चौथा ट्यूबरक्लोसिस है, बच्चे में आजकल भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा पावल जा रहे हैं। छठा है पोलियो, सातवा है हेपेटाइटिस बी, और मीजल्स भी अब बहुत खतरनाक रूप ले ललके हैं। सरकार के नज़र में है और हमारी सब के नज़र में है कि अगर कैसे हम लोग इरेडिकेट कर सके है।
0: हाँ।
1: यहाँ से उखाड़ फेंकबे, है ना। तो डिप्थीरिया पर्टुसिस से सुन लो, एक सब के सब जानलेवा बीमारी है, और बहुत पहले से एक रुकावट के लिए रोकने के लिए टीकाकरण के प्रोग्राम चल रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक कारण की होबा है।
1: हाँ, डिप्थीरिया ये पूछ लो, बड़ा अच्छा चीज। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होवा है, कीड़ा होवा है। हाँ, एकरा में की होवा है कि गला में झिल्ली नुमा कुछ सांस के आसपास, जहाँ से सांस लेवे है, जहाँ से झिल्ली जो पतला सा है वहाँ आसपास एक आवरण बना दे है।
0: अच्छा।
1: जेकरा से सांस लेवे में काफी तकलीफ होए लगे बच्चन से, ओकरा चलते हमारे के तुरंत सांस उखड़ल बच्चा के रिपोर्ट कैलियन। तो हम डॉक्टर साहब के काम है कि तुरंत पता करके रिकॉग्नाइज करके।
0: हाँ।
1: और जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन के अलावा इंट्यूबेट करे पड़े, ट्यूब लगा करके गला में, और वेंटिलेटर पर भी चढ़ावे पड़े, या नहीं हुए तो कभी कभी गला के छोटा सा छिद्र करके हवा जाइलक, पाइप लगेलू, ओकरा से बच्चा सब सांस लेबल लगलक। इतना खतरनाक है, ऐसे ही दवाइयों से तुरंत न सुने।
0: तो गला में पाइप लगा के। हाँ, सांस लेवे के
1: अगर बहुत ज्यादा हो गए तो यूजुअली ज्यादा हो ही जाए।
0: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक लक्षण के बारे में कैसे पता चले?
1: यह लक्षण होले कि सांस लेवे में तकलीफ होलन, खांसी बहुत ज्यादा हो है, खूब तेज बुखार लग।
0: ओ अच्छा, बहुत तेज बुखार हो जाए,
1: बहुत तेज बुखार,
0: साथ में खांसी भी,
1: खांसी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सांस ले में तकलीफ होवे लगले।
0: अच्छा,
1: ये देखते पता चल जा है कि सांस अगर लेवे में तकलीफ है लगता जैसे कि गला में कुछ अटक गए हैं।
0: ओ
1: जी,
0: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक लगी तो कोई कोई टीका भी होता है।
1: हाँ, टीका है, बहुत दिनों से टीकाकरण चल रहे हैं।
0: हाँ?
1: लेकिन

0: टीकाकरण प्रभावी रूप से चले इसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रहे। डीपीटी नामक टीका एकरा आवे है
1: अच्छा
0: जे बच्चा
1: डीपीटी
0: के, हाँ
1: है
0: बच्चा
1: ना।
0: के 6 सप्ताह से एकरा शुरू कैल जाए के चाहिए,
1: अच्छा 6 सप्ताह से शुरू कर
0: शुरू
1: देवे
0: कर
1: ला।
0: देना चाहिए। 1.5 महीना के जैसे बच्चा होलन
1: हाँ
0: टीकाकरण केंद्र में जाकर के टीका ले सको।
1: ओ अच्छा, तो टीकाकरण केंद्र में मतलब कि कोई पैसा उसका
0: सरकार
1: भी नहीं
0: ने
1: लगते
0: कोई
1: सरकार के
0: निशुल्क है,
1: तरफ से,
0: सरकार के
1: है कि
0: द्वारा
1: नहीं?
0: एकदम निशुल्क है, एकरा कोई खर्चा ना है,
1: तब तो
0: सिर्फ
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: है। आई
1: हाँ
0: बहन अब आंगनवाड़ी दीदी सब भी बताबे है टीका के बारे में, वहां
1: हाँ
0: भी नाम दर्ज करा करके सेंटर पर जा सके टीका ले सको।
1: ओ, तो कोई परेशानी नहीं है,
0: कोई
1: सरकारी
0: परेशानी नहीं है,
1: है,
0: एकदम
1: मुफ्त
0: सरकारी
1: में
0: है, निशुल्क है।
1: अच्छा इलाज है कि
0: अच्छा
1: नहीं? सरकार के तरफ से इतना अच्छा
0: अच्छा
1: अच्छा
0: रोक है,
1: नीमन
0: हाँ।
1: नीमन योजना
0: और
1: बनावल गया है कि नहीं?
0: जी।
1: एकरा जरूर फायदा उठावे के चाहिए। और डॉक्टर साहब, एकरा में उपचार भी कुछ होते है? मान लेते हैं कि
0: उपचार बतैरिए ना, उपचार एकरा रोकने वाला जो टीका है सबसे बढ़िया चीज है, और
1: हाँ,
0: उपचार थोड़ा कठिन है। अगर हो गए
1: मान
0: कितना भी
1: लेते कि
0: कोशिश,
1: जैसे टीका
0: हाँ
1: नहीं
0: हो गए
1: लगे रही
0: निक नहीं
1: है।
0: लगे हो गए तो
1: हाँ
0: तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के डॉक्टर के बताबे के चाहिए कि देखा हमारा बच्चा बुखार लग रहे हैं, खांस रहे हैं, या अगर उनका देखे में लगे कि नहीं सांस लेवे में तकलीफ है और ओकर सुविधा वहाँ नहीं हो सका है केंद्र पर, तो ओकरा आगे भी मेडिकल कॉलेज जैसे जगहों में भेज सका हखिन, जहाँ पर सारा इलाज फ्री निःशुल्क उपलब्ध है
1: अच्छा, सब जगह निशुल्क
0: सब जगह
1: है ना
0: सरकार। जी,
1: कि
0: सरकार के
1: बच्चा
0: मेडिकल
1: सब?
0: कॉलेज जगह टर्सरी सेंटर कहल जा है, वहाँ निःशुल्क सब सुविधा उपलब्ध है।
1: अच्छा, पहले तो कितना परेशानी हो
0: पहले
1: रहे,
0: परेशानी
1: अब
0: बहुत होबा
1: पैसा
0: दे,
1: लगे भी सोचे
0: हाँ
1: पड़ा
0: एकरा
1: ले।
0: में एक्चुअली 2 तरह के डॉक्टर के जरूरत हमेशा पड़ा है, एक तो जो बच्चा होले तो बच्चा के डॉक्टर के जरूरत पड़ा है, और
1: हाँ
0: दूसरा जो है गला रोग विशेषज्ञ हो ENT वाले डॉक्टर कहलाए उनका
1: अच्छा
0: भी जरूरत पड़ा है,
1: अच्छा नाक कान गला रोग
0: नाक कान गला
1: विशेषज्ञ
0: रोग
1: है ना?
0: विशेषज्ञ, एकदम सही समझ लो दिव्या।
1: हाँ अच्छा। तो डॉक्टर साहब, एगो सरकार द्वारा इंद्रधनुष काहे चलावल जाए थे?
0: जी
1: सुन लिए
0: जी
1: कि
0: जी
1: इंद्रधनुष
0: जी
1: एगो
0: जी
1: सरकारी
0: जी जी
1: योजना है?
0: इंद्रधनुष नाम बड़ा रखल गए हैं सोच करके, इंद्रधनुष जैसा सब जाना हखिन, एकरा
1: हाँ
0: हिंदी में सतरंगी भी कहल जा है
1: हाँ
0: कि
1: सात रंग का
0: सात
1: है
0: रंग
1: इंद्रधनुष।
0: से 7 बीमारियों के बचाव के लिए इनाम रखलखिन है
1: ओ
0: सरकार,
1: अच्छा, ये लगी
0: जकरा
1: इंद्रधनुष
0: में
1: नाम
0: टेटनस
1: के।
0: पहला है जरा बतैलियन,
1: हाँ
0: पर्टूसिस है, टिटनस है, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है,
1: हाँ
0: हिपेटाइटिस बी है, खसरा है, ये 7ों बीमारी जानलेवा है और टीका से रोकल जा सका है, इसलिए सरकार एकरा पर स्पेशल ध्यान दे हखिन। इसी संबंध में 25 दिसंबर 2014 की प्रोग्राम जो है कार्यक्रम चलावल गए हैं भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा,
1: हाँ
0: एकरा से पूरे 100% कैसे जो है बच्चा कवर कर जा सके, होवे कि बिहार में और बहुत जगह हिंदी जहाँ मगही हिंदी और कुछ बोलल जा है जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में राजस्थान में ये
1: हाँ
0: सब जगहों में टीकाकरण बढ़िया से न हो पावा है, 100 बच्चा में 65 बच्चा टीका बढ़िया से ले पावा है और बाकी सब बच्चा छूट जा है,
1: ओ
0: तो
1: अच्छा।
0: कैसे हम करिए कि 90% तक ये हम टीका दिला सके बच्चा के,
1: हाँ हाँ
0: तो सरकार एगो गोल रखलखिन है कि 2020 तक एकरा हमरा कंप्लीट करके 90% बच्चा के हमरा टीकाकरण दे देना है, जिससे कि इस बीमारी से मृत्यु जो हो रहे हैं ओकरा रोकल जा सके।
1: अच्छा, देखते सरकार कितना बढ़िया बढ़िया
0: सरकार
1: नीमन
0: एकदम
1: नीमन
0: तत्पर रखें,
1: है ना
0: बस
1: योजना
0: खाली
1: बना
0: जाए
1: रखी
0: के
1: है।
0: है सेंटर पर दीदी से मदद लेवे के है और उनका बतावे के है सब टीका निःशुल्क उपलब्ध है, ये सब जानलेवा गंभीर बीमारी के,
1: थोड़े जरूरत है हमने के जागरूक होवे के,
0: जागरूक होवे के,
1: जानकारी रहे के,
0: एकदम
1: है ना? ये तो अपने को
0: एकदम
1: बोले
0: सही
1: रही है।
0: कहलखिन है, जागरूक होना
1: हाँ
0: बहुत जरूरी है क्योंकि एकर इलाज बहुत मुश्किल है और कभी कभी हमारा बच्चा खोवे भी पड़ा है।
1: अच्छा,
0: जी
1: और बच्चा के एकरा से जान भी जा
0: जान
1: सकल है,
0: जान
1: है ना?
0: जानलेवा बीमारी है, कभी कभी जान चल जाए क्योंकि अगर ज्यादा मेम्ब्रेन बन गए कुछो के लिए तो हो सके हमारा से ट्यूब नहीं हो जाए, ENT वाला बोले लिया तुरंत नहीं मिललखिन, मिललखिन मुश्किल से तो ट्यूब लग नहीं पैलन, और
1: हाँ
0: लग भी गए तो वेंटिलेटर जैसे सुनो सांस संबंधी मशीन होबा है
1: हाँ
0: एकरा पर जब रखल जाए तो ये खुद भी एक जानलेवा होबा है, कभी
1: अच्छा,
0: कभी कराए वेंटिलेटर जनित रोग होवे लगा है,
1: ओ
0: तो
1: मशीन भी
0: जा
1: जानलेवा हो
0: मशीन
1: जाए,
0: में
1: है ना?
0: सर्किट अगर बढ़िया स्टरलाइज होने के बावजूद भी ओकरा से बैक्टीरिया की बीमारी अलग तौर से डिप्थीरिया के अलावा दूसरा बीमारी लग सका है,
1: हाँ
0: तो दिव्या एकदम ये न है कि हम वेंटिलेटर पर रख देवे तो बुतरुआ बचिए जेते,
1: अच्छा
0: बचना मुश्किल यहाँ तक, इसलिए टीका दिलाना बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: हाँ
1: ऐसे भी तो सोचे चाहिए कि बीमारी से पहले है
0: रोक करना
1: ना
0: चाहिए,
1: रोक
0: रुकावट
1: करे के
0: करना
1: चाहिए
0: चाहिए, एकदम
1: कि
0: सही
1: बाद में
0: कहलो।
1: कुछ
0: ये तो
1: परेशानी
0: होले
1: नहीं आवे।
0: डिप्थीरिया के, पर्टूसिस में देख लो कि महीनों बच्चा खांसते रहे,
1: हाँ
0: आंख से जैसे लगाए खून फेंक दिलक, कभी कभी इतना खांसा है जोर से बच्चा कि ब्रेन में हेमरेज भी हो जाए,
1: हाँ
0: हर्नीएट भी कर जाए बच्चा के,
1: हाँ
0: इसके रुकावट के लिए भी टीका है, कुकुर खांसी टीका से रुक जाए। डीपीटी में तीनों कंबाइन है। आ टिटनेस जो है जैसे सब जानलखिन पहले।

0: ऐसे लोग अवेयर भी होले हैं, इनका
1: हम्म,
0: टीकाकरण करावे है और करावे की जरूरत है। आ नहीं तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है टीटनेस, जैसा सब हम सब जाने ही है कि टीटनेस बड़ी ही खतरनाक बीमारी है और जानलेवा
1: हाँ
0: है, और टीका से रोकल जा सका है तो एकदम टीका लेना जरूरी है। और DPT एक टीका में तीनों बीमारी का हमारा बचाव हो जाते दिव्या,
1: अच्छा, एक टीका में
0: एक
1: तीनों
0: टीका
1: बीमारी।
0: तीनों कॉम्बिनेशन से आवा है, सरकार के यहाँ निःशुल्क मौजूद है। एकरा दिला से हमारा डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस तीनों एक साथ रुक सका है। या मदर अगर गर्भवती है तो 2 गो टेटनस टॉक्साइड के टीका लगेला से, केंद्र पर जाके लगेला से नवजात बच्चों के टेटनस न होते कहियो।
1: अच्छा,
0: जी
1: कितना
0: आप
1: बढ़िया
0: पोलियो के
1: सर।
0: बारे में तो जानबे कर रहे थे कि सरकार बहुत तत्पर है टीकाकरण के लिए और उनका इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। अगर हम लोग सब मिलकर सहयोग करवे तो ये भी बहुत जल्दी स्मॉल पॉक्स नियर भाग जीते,
1: अच्छा,
0: एकरा हमारा भगा देना है,
1: हाँ, सब मिलके कोशिश
0: सब
1: करते
0: मिलकर
1: तब
0: कोशिश
1: जरूरे
0: करके भगा
1: भागते
0: देना। जी जी
1: है
0: जी
1: कि नहीं।
0: जी जैसे ही पोलियो भागते तो हम लोग जरा कहे छोटी माता, जगह से बहुत बच्चा मृत्यु हो जाए है,
1: हाँ
0: उसका नेक्स्ट जो है हम लोगों का उस पर जो है ध्यान रहते कि कैसे जल्दी मीजल्स के टीका दे के भी ओकरा खत्म करिए।
1: ओ अच्छा,
0: ये
1: पोलियो के बाद देकर
0: पोलियो के बाद
1: मेजल्स
0: मीजल्स
1: के
0: पर,
1: टीका
0: मीजल्स
1: है
0: के लिए
1: ना।
0: एकदम।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए
0: जी
1: कि जे समाज में अंधविश्वास और भ्रांति के चलते जे बीमारी फैल रहा
0: जी जी
1: है ना, ओकरा बारे में भी कुछ अपना रोशनी डालते ना।
0: अंधविश्वास देखो टिटनेस में बहुत सारा अंधविश्वास के बहुत जगहों में की करे, पुराना कोई औजार से, हंसुआ से, कोई छोटा पुराना घर के रखल छोटी सी कटार से जे
1: हाँ
0: नाभ काट दे हखिन तो ओकरा में
1: अच्छा,
0: टिटनेस होवे के संभावना आओ बढ़ जाए है। कहीं कहीं पर तो यहो सुनलिए हैं कुछ गोबर गांव के गाय गाय के या कुछ के गोबर
1: हाँ
0: भी लगा देवे है, लोग सोचा है कि एकरा से जल्दी नाल गिर जेते, जो गलत है,
1: ओ
0: गिरते नहीं, हो सका है कि बच्चा के टेटनस हो जाए और जल्दी से मौत हो जाए, ई सब से एकदम बचना चाहिए।
1: अच्छा
0: टीका एक ऐसा चीज है जो बहुत मुश्किलों से बहुत वैज्ञानिक ने बड़ी कोशिश से बनेलखिन है आ
1: हाँ
0: एकरा हम सब के इस्तेमाल करे के चाहिए, मान लेना चाहिए कि यह सत्य है। बहुत सारा भ्रांति होवे कि टीका देला से ओकर बुतरुआ ई हो गेले, ओकर बुतरुआ बीमार
1: हाँ
0: पड़ गेले,
1: हाँ
0: ई सब गलत बात है। टीका से जल्दी बीमार न पड़े है, ज्यादातर बचाव होवे है, तो ज्यादातर के हम लोग बात करिए, तो एकाध को कोई बीमार पड़ जाए ओकरा बारे में दौड़ के घबरा नहीं जाइए इनकी बीमारी के लिए हम छोड़ दिलिए।
1: हाँ, तब इतना बढ़िया बढ़िया मतलब बात बताती नहीं है
0: जी
1: कि
0: जी
1: ना।
0: जी जी सब हाँ
1: ऐसे
0: हाँ
1: भी
0: जी
1: सरकार द्वारा इतना जब चलावल गेल है योजना, तो हमनी के कोशिश करे के चाहिए कि जे आंगनबाड़ी के दीदी जी
0: जी
1: हथिन,
0: जी जी
1: चाहे जे भी हथिन,
0: जी
1: उनका से मिल गए, या सरकार के इतना केंद्र
0: जी
1: है कि
0: आजकल तो
1: नहीं।
0: कुछ महंगी वैक्सीन जो पहले प्राइवेट में बड़ी महंगा मिल रहा है, जरा
1: हाँ
0: का नाम सुन लो, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी वैक्सीन, ये
1: हाँ
0: मेनिनजाइटिस निमोनिया के बच्चा के रोग है, कभी कभी तो मेनिनजाइटिस ऐसा हो जा ले कि
1: हाँ
0: बच्चा मानसिक तौर से विकलांग हो जा ले,
1: ओ
0: और अगर बचा हले भी तो, नहीं तो मेनिनजाइटिस से ही मर जा हले, तो उस सब केसेस में जो है हीव नामक वैक्सीन जो है ओकरा
1: अच्छा
0: फ्री सरकार निःशुल्क उपलब्ध करेलखिन
1: अच्छा अब
0: है
1: निःशुल्क हो
0: उनका।
1: गए ना,
0: हाँ अब निःशुल्क है, अब
1: देती
0: ओकरा
1: हमें और
0: पैसा नहीं लगते।
1: लगेलिया तो
0: हाँ
1: कितना
0: हाँ
1: है कि
0: पहले
1: नहीं
0: 500 रुपया
1: पहले,
0: दे पड़े
1: वो
0: प्राइवेट
1: भी
0: में
1: एक
0: जाके
1: बार में।
0: एक बार में,
1: हाँ 4 बार में
0: आए आप तो
1: तो
0: सोच लो कि 2,000 लग जीते, वो
1: हाँ
0: टोटल जो है हमेशा पैसा बचते और बच्चों बचते।
1: हाँ अच्छा, ये जैसे लड़की सब के भी तो एगो सर्वाइकल के टीका नया चल रहे हैं
0: हाँ सर्वाइकल कैंसर की
1: तो।
0: बात हो रही, क्योंकि हम लोग में बहुत सारा जो है औरतन के सुनलखिन होत कि बचदानी कैंसर, सर्विक्स के कैंसर होवा है,
1: अच्छा
0: ओकर बचाव खातिर टीका आल है और सबके उम्र 13 से लेकर के 45 तक सब
1: हाँ
0: ले सका हखिन,
1: अच्छा
0: और ये बचदानी और बचदानी के मुंह से संबंधित कैंसर से बचाव पा सक पा हम लोग रोक सके
1: अच्छा तो
0: हिए।
1: एकला लगी भी सरकार कुछ योजना बनाई थी ना कि नहीं।
0: योजना अभी चल रहे हैं, चूंकि अभी बहुत जगहों में एक ट्रायल हो रहे हैं और
1: हाँ
0: प्राइवेट में तो सब जगह उपलब्ध है,
1: हाँ
0: सरकार भी तत्पर है, जैसे ही जानलेवा बीमारी सबसे बचाव होते तब ओकरा पर भी जाल जीते।
1: अच्छा, तब अब तो डॉक्टर साहब, लेकिन समय भी तो हो रहा
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी जी
1: आपने स्टूडियो में इलथिन इतना नीमन नीमन फरिया फरिया के बात बदलथिन,
0: जी जी
1: तब
0: जी
1: आशा करिए कि श्रोता लोग जरूर एक फायदा उठेथिन।
0: एकदम दिव्या, हम लोग सब यही
1: हाँ
0: कामना कर रही है कि सब बात सुनथिन, आ हम लोग स्पेशल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान पिछड़ रहले हैं,
1: हाँ
0: एकरा में हमारा गिनती न आवे, सब उतरू के कैसे हम टीकाकरण करिए एकरा पर हमारा ध्यान देना है। इस
1: हाँ
0: मिशन के यह बात है कि सब लोग समझथिन आगे और
1: हाँ
0: जल्दी से जाके जल्दी से जल्दी जाके दीदी से मिलके या केंद्र पर जाके टीका बच्चन के लेथिन। और
1: देखिए सुविधा तो है ना,
0: सुविधा
1: बस
0: बहुत
1: जरूरत है थोड़े जागरूक होवे के।
0: जागरूक है।
1: अगर जो हमरा नहीं जरूरत है तो अगल बगल के जानकारी दिए
0: हाँ,
1: जिनका
0: हाँ,
1: जरूरत है
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ दिव्या ये बहुत अच्छा।

0: कहलखिन है कि जगह जानकारी है वो अपने तक बात न रखे, लोगों को ही बतावे कि जो जल्दी टीका लेगन एकरा से बुतरू कम से कम ई सब सात बीमारी जे बतेलियन उनका से बचाव कैल जा सके। हाँ
1: बहुत डॉक्टर साहब बढ़िया बात बतेलखिन, तब अपने के धन्यवाद देवे थी।
0: हाँ अपने के भी धन्यवाद और दर्शकों को भी हमारा धन्यवाद, तब होते जब ये बात सुन करके
1: हाँ
0: सब लोग समझथिन और जल्दी से जल्दी टीकाकरण करथिन, अगर कर परसेंटेज बढ़ा है तो समझबे कि हम नहीं के बात सुनलखिन।
1: जी
0: धन्यवाद,
1: प्रणाम डॉक्टर साहब। सुनलथिन न श्रोता लोगिन, तबाई सुनथिन समझथिन और ओकरा पर अमल करथिन, अपना बाल बुतरू के टीकाकरण जरूर करवाथिन और कोई भी स्वास्थ्य परेशानी होला पर ओकरा डॉक्टरी सलाह लेथिन, इने की झोला छाप डॉक्टर से दिखलाथिन। अब श्रोता लोगिन, अभी हमने सब सुन रही भेंट वार्ता, बचपन के जानलेवा बीमारी और ओकरा से बचाव के टीका। भेंट वार्ता कर रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार और हिनका से बातचीत कर रही हल हम दिव्या भारती। तो डॉक्टर संजीव कुमार के बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात अगला चर्चा के, तो देखथिन बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर सत सत नमन है। ब्रिटिश हुकूमत और शोषक के जमींदार के खिलाफ ऐतिहासिक उन्मूलन के माने के महान विद्रोह के शंखनाद केलन हल। जनजातीय समाज के एकजुट करके बिरसाइल पंथ के स्थापना केलन और जल जंगन जमीन पर रक्षा के नारा देलन। महज 25 साल के उम्र में रांची जेल में रहस्यमयी परिस्थिति में देश के लगे प्राण न्योछावर केलन। उनकर जयंती 15 नवंबर के सौंसे देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनावा है। भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में तैल चित्र के रूप में सम्मानित होवे वाला एकमात्र जनजातीय नायक हथिन। खूंटी के डॉबरी बुरु पहाड़ उनकर आंदोलन के मुख्य केंद्र बनलैल, जेकरा छोटा नागपुर के जालिया वाला बाग भी कहल जाए। अब एगो और जरूरी बात, तो नशा मुक्त भारत अभियान के, नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा देश के नशा के चंगुल से बचावे के लिए शुरू कैल गेले एगो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। एकर मुख्य उद्देश्य युवा स्कूल और कॉलेज में बड़ पैमाना पर जागरूकता फैलाना है। ये अभियान ने खाली नशा के दुष्प्रभाव के प्रति सचेत कर है, बल्कि लत के शिकार लोगन के पहचान करके उनका परामर्श उपचार और पुनर्वास के सुविधा भी दे है। समाज के नशा मुक्त बनावे में जन भागीदारी और पारिवारिक संवाद के बड़ भूमिका है। सरकार द्वारा जारी टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1444 6 इस दिशा में मुफ्त परामर्श दे है। तो स्वस्थ युवा ही आत्मनिर्भर भारत के आधार है। तभी नशा पानी से दूरे रहथिन, ये सब हमने के शरीर के ये सब परेशानी और बढ़ा दे है, हमने के भाई स्वास्थ्य खराब कर दे है। एक से घर में कलह भी हो भाई, उहे पैसा के हमने के बचा के अपना बाल बुतरू के स्वास्थ्य पर पढ़ाई लिखाई पर रहन सहन पर बढ़िया काम में खर्चा करे के चाहिए। और एगो और जरूरी बात, देखथिन आय के भाग दौड़ भरल जिंदगी में तनाव एगो आम समस्या बन गए है। तो एगो योग ऐसन सहज और प्रभावी माध्यम है जे नहीं खाली अपने के शरीर के बल्कि अपने के मन और माथा के तुरंते शांत कर है। तनाव के दूर भगावे के लिए बालासन स्वासन उत्तानासन करथिन। मन के शांत करे के लिए अनुलोम विलोम ब्राह्मणी प्राणायाम करथिन। तनाव से बचे के लिए योग निद्रा सुबह शाम की सैर करथिन। शुरू में हमेशा बहुत सहजता से करथिन। योगासन करत खेवा अपन शरीर पर कोई दबाव नहीं डालथिन। योग के मुख्य उद्देश्य खुद के थकाना नहीं है, बल्कि खुद के ऊर्जावान और शांत बनाना है। एक साथ साथ हमने के समय ओरिया रहा है, तपन दिव्या के विदा देथिन। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

अब से कुछ देर बाद शाम के 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे शाम के 6:20 पर। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर, और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा।

सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम के 7:52 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे भजन चक्रपाणि मिश्रा की आवाज में।

सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 8 बजकर रात के 8 बजे। कार्यक्रम का थीम होगा आर्थिक विकास।

रात के 8:35 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजल मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज में। गूंजे बिहार लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 10 और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात के 10:30 पर।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब सुनिए भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बरिस पूरा हो गेल बा। श्री मोदी आजे के दिन साल 2024 में लगातार तीसरा बेर भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ लिहले रहले। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कहले कि सरकार पिछला 12 बरिस में देश के युवा, नारी समुदाय और किसानन के मजबूत बनौले बा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहले कि पिछला 12 बरिस में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित लगातार प्रयासन के माध्यम से आपन देश मजबूत और आत्मनिर्भर बने के राह पर आगे बढ़ रहा बा। गृहमंत्री अमित शाह कहले कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछला 12 बरिस से भारत गरीब लोगन के कल्याण आ अभूतपूर्व विकास दोनों के एक साथ सच होत देख रहा बा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहले कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व पिछला 12 बरिस में सेवा भावना के माध्यम से शासन के नया रूप दे रहल बा। प्रदेश में अब नया उद्योग सबके स्थापना खातिर जरूरी मंजूरी मात्र 30 दिन के भीतर दे दिहल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देलन। श्री चौधरी बतौले कि निवेशक लोगन के बेहतर सुविधा देवे और प्रक्रिया सबके आसान बनावे के खातिर सिंगल विंडो सिस्टम अपनावल जाए और एकरा खातिर राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय के एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत कइल गइल बा। ई व्यवस्था से अलग अलग विभागन के बीच तालमेल और मंजूरी के प्रक्रिया ज्यादा तेज, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। राज्य सरकार द्वारा दुनिया भर में रहे वाला वैश्विक बिहारी समुदाय के आपन प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार के मुख्य धारा से जुड़े खातिर एगो खास डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरुआत कइल गइल। सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना में स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से ई डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ कइले। ई अवसर पर श्री मिश्रा कहले कि ई प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसल बिहार मूल के लोगन के राज्य के विकास यात्रा, निवेश के मौका और ज्ञान साझा करे के पहलन से जोड़े के एगो मजबूत माध्यम बने। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलन है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानन के कानून के दायरा में लावल जाए। दिल्ली में पत्रकारन के बातचीत में वो बतौले कि एकरा खातिर सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर दिया। आगामी 21 जून के होए वाला नीट यूजी पुनर्परीक्षा के कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करावे के खातिर राज्य सरकार व्यापक तैयारी कैले बिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और ई पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन खातिर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई गो निर्देश जारी कैल गेल। राज्य में नया डिग्री कॉलेज सब में अतिथि शिक्षक माने गेस्ट फैकल्टियन के बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिहल गेल बा। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहल गेल बा कि नया दिशा निर्देश तय होके तक प्रखंडन में स्थापित होके वाला डिग्री कॉलेजन में अतिथि शिक्षकन के चयन चाहे नियोजन के प्रक्रिया शुरू ना कैल जाए। भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधन के मजबूत करे खातिर मंगोलिया के राजधानी उलान बटार में नालंदा विश्वविद्यालय के साथ दुगो ऐतिहासिक समझौतन पर दस्तखत कर

0: गई। पहला ऐतिहासिक समझौता उलान बटार के मशहूर गंदन मठ के साथ भइल। यही कड़ी में दूसर समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ भइल। इस समझौता के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला पारिस्थितिकी, संस्कृत आ तिब्बती भाषा नियन अलग अलग क्षेत्र में साझा रिसर्च आ छात्र शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रमन में तेजी दिल जाये। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मी के चपेट में बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास के डेहरी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल। पटना, गया जी और औरंगाबाद के तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल गई बा। मौसम के अनुमान में कहल गई बा कि अगला 48 घंटा के दौरान तापमान में कौनो खास बदलाव के संभावना नहीं है। वही जा राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा में कुछ जगह पर पानी बरसे के अनुमान बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में कयामत से कयामत तक फिल्म के इस गीत को। संगीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और गीतकार हैं आनंद मिलिंद।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, तेजाब फिल्म से, नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

नमस्कार श्रोता लोगिन, कैसन हथिन अपने सब। हाँ देखतीन भाई, हाल चाल तो पूछे पड़े। का है कि एक हरी इतना गर्मी पड़ रही है कि आदमी के भाई स्वास्थ्य के सबसे पहले ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में इधर उधर जाए के कोई ज़रूरत ना है। काहे कि भाई देखतीन कि गर्मी के ध्यान रख करके ही सब कुछ काम धाम भी करतीन, और गर्मी के मौसम है तो अपन शरीर के निर्जलीकरण ना होवे देथिन। काहे कि धूप बहुत है और पसीना बहुत हो बह जा है, तो ऐसन में तबीयत खराब होवे के डर रहे। और घर के जे लोग भी हथिन सबके आपसी सहयोग से, आपसी मेलजोल से भी एक दूसरा के स्वास्थ्य के ध्यान रखे के चाहिए। श्रोता लोगिन, हम अभी अपने सबसे बातचीत आज करवे कि परिवार में आपसी सामंजस्य कैसे रखल जाए। ये बहुत ही आज के समय में एगो महत्वपूर्ण विषय कहथिन कि जे तरीके से संयुक्त परिवार के विघटन हो रही है और सब एकल परिवार में जी रहलथिन हैं, तो ऐसे में जे भी परिवार के लोग हथिन उनका आपसी सामंजस्य जरूर बना के रखे के चाहिए। और जे परिवार बाहर भी रहथिन उन सब से मेल जोल रखे के चाहिए। कि काहे कि परिवार घर के देखथिन पिलर होब हथिन, यानी कि मजबूत स्तंभ। ये परिवार से हम लोग सुरक्षित महसूस करिए। दुख हो या सुख हो, परिवार के खड़ा रहे से आत्मबल मिले है कि ना। और देखते हैं कि जे तीज त्यौहार होवा है, शादी ब्याह होवा है, तो हम सब के कितना इंतजार रहे कि चाची आएथिन, मौसी आएथिन। अगर कोई ओकरा में से एगो भी ना आवथिन तो उदास हो जाए मन के, अरे हम बुलैली और ना आयलन, चाहे उनका जे कारण रहा है। तो बहुत ही इंतजार रहे और अच्छा लगे है जब परिवार के सब लोग शादी में, ब्याह में या तीज और त्यौहार में आवा हथिन, तो कितना मन खुश हो जाए। तो सोचथिन कि अगर परिवार ना रहे तो जीवन के जीवन कैसन हो सक होते। तो यही से परिवार के में बातचीत करे के चाहिए। मन के कोई भी बात देखें कि कोई भी तरह के अगर तनाव हो और कोई तरह के मुसीबत हो या कोई भी झिझक हो या मन में कुछ भी बात अगर लगे कि कैसे ये काम हो, तो परिवार एकरा में सहायक होवथिन। अपन जे तनाव के बात है या जे भी मन में कुछ विचार है वो जरूर परिवार से साझा करे के चाहिए, और एकरा से तनाव कम हो जाए, मन में शांति हो जाए। भले उस समस्या के समाधान हो चाहे ना हो तत्काल, लेकिन मन के तो भाई देखथिन जरूरी सुकून मिल है। और कभी कभी तो परिवार से अगर हम कोई बात कहे कि भाई देख ई काम कैसे होते।

तो जरूर उनका सहयोग मिल है और जे विचार आवे जे बातचीत होवे ओकरा से काम बन भी जाए। लेकिन देखिन कि कभी कभी तनिका सा भी मनमुटाव हो जाए, तनिको सा अगर दरार आ जाए परिवार में, तो बहुत तरह के मतलब गलतफहमी भी हो जाए और एक दूसरा से बातचीत बंद हो जाए। यहाँ तक कि आज जे संयुक्त परिवार के जे सिस्टम जे हले पहले, वो संयुक्त परिवार कथन की एक तरह से गलतफहमी के ही शिकार है हो जाए। गलतफहमी के कारण बहुत तरह के मन में लोग पाल रहे थे कि ना ऐसे ना तो ऐसे ना, ऐसे ना होते तो ऐसे ना होते, और ये चलते घर के बंटवारा हो जाए और आदमी अकेले पड़ जाथिन और दुख उनका से झेलल भी ना जाए, अकेले मन अशांत हो जाए। समझथिन कि एक तरह से परिवार में जहर ही घोल जाए। तो जे ये परिवार के जे नींव है उनका जरूर पकड़ के रखे के चाहिए और परिवार में सामंजस्य बनल रहे, ये बहुते जरूरी है। आपसी बातचीत प्रेम बनल रहे, एकरा लगी एक दूसरा के सुख दुख में शामिल होवे के चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेवे के चाहिए सुख में, और बिना कोई उम्मीद के कि हम ये काम हम ऐसे कैली तो हमरा काहे ना कोई कहलक, तो बिना स्वार्थ के परिवार के सदस्य के सहायता करना करे के चाहिए। कभी कभी सुविधा अनुसार हमने के एक दूसरा के घर भी जाए के चाहिए। हमरा याद है कि जब हम छोटा हली तो दादी के साथ और माई के साथ चाची के यहाँ या फिर कहीं कोई रिश्तेदार के यहाँ जा हली, मिले लगी मतलब सांझ के चाहे कोई भी समय में छुट्टी में मिले जा हली, और घर के जो वहाँ के चाचा चाची घर के जितना भी सदस्य हो रहल थी वो सब बैठ के हंसी ठिठोली और चाय पानी या कुछ खाना नाश्ता ऐसे चल हली, तो बहुत ही मन उस वक्त अच्छा लगल है। और आज जब हम एकाकी जीवन जी रही है और परिवार के महत्व ना समझती, तो दोनों में सचमुच अपने भी अगर समझ आते हैं कि कितना फर्क है। तो जब हम रिश्तेदार से मिले जाइए तो ये भी ना होवे के चाहे कि भाई फलनमा रिश्तेदार अमीर हथिन और हम गरीब ही, या हम वो गरीब हथिन हम अमीर ही, ये सब भी भेदभाव बिल्कुल ना रहे के चाहिए। और श्रोता लोगिन, और आजकल तो देखें कि इंटरनेट के जमाना है, तो इंटरनेट में और मोबाइल तो सबके पास आज हाथों हाथ है, तो भी में भी अपना वीडियो कॉलिंग करके या मोबाइल से बातचीत करके दो एक दूसरा के दुख सुख हाल जरूर जान लेवे के चाहिए। कहे कि येहू में आजकल लगे है कि कंजूसी होते जा रही है कि भाई महीना 2 महीना 3 महीना तक फोने ना कोई कर रहा थीन, तो ऐसा ना होवे के चाहिए। बातचीत जरूर करे के चाहिए फ़ोन से अगर जो रिश्तेदार दूर बैठा रहथिन, और अब तो अगर विदेशों में हथिन तो वहाँ भी बातचीत हो जाए है, तो फटाफट फोन उठा के विदेश में बैठा रिश्तेदार से बात कर लेथिन, भारत में कहीं कोई रिश्तेदार है तो वहाँ बात कर लेथिन और उनकर हालचाल जरूर जाने के चाहिए। अगर केकरो से छोटा से या बड़ा से केकरो से गलती भी हो जाए तो जरूर माफ़ कर देवे के चाहिए, और ये ना कि बातचीत ताना मार करके कोई बात कह ली, ऐसा ऐसा ना होवे के चाहिए। ताना मारे के बजाय बातचीत से हल निकाले के चाहिए कोई भी बात परिवार में, तो परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये जो है एक तरह से कथन कि धूप से बचे लगी जैसे छाता हो वही, वैसे ही हमर परिवार हो वहथिन, तो धूप से बचे लाही तो परिवार में आपसी सामंजस्य जरूर बना के रखथिन। और जब हम परिवार के बात कर रही, असामंजस्य के बात कर रही, और परिवार के तीज त्यौहार और ये सब चीज़ के बात करें श्रोता लोगों, तो बात हम अपने से करिए भजन कीर्तन के। क्या है कि पहले सब हम परिवार के लोग बैठ के भजन कीर्तन भी कर रहे थे जन्माष्टमी में चाहे रामनवमी में, आज तो सब गाना बज जाए क्योंकि उस तरह से परिवार लोग जुटे न हथिन। लेकिन जब परिवार में उम्मीद है कि आपसी सामंजस्य जरूर होते और भजन कीर्तन जरूर करथिन, तो काहे ना हम सब एक ठो लोकगीत के माध्यम से कीर्तन सुनही कला

वाह, इतना अच्छा कीर्तन शायद कभी कभी सुने लगे मिला है कि राम नाम की जो नदी है, और ओ में कहे कि मतलब कि राम भगवान राम के नाम हमेशा लेवे के चाहिए, और राम की नैया ही पार लगाई थी जीवन में, और जे भी दुख है जे भी है वो जरूर भगवान राम उनका काम करथिन, यही कामना है। और इनका से हम आगे और भी गीत सुनवे, और जब नदी के बात चले राम के नदी के

0: तो कहे के मतलब जे प्रकृति हमरा देलथिन हैं वो बहुत अनमोल है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, धूप हो, हवा हो, वर्षा हो, पेड़ पौधा हो, जो भी प्रकृति से मिल रही है, वो सब के हम सबके शुद्ध रखे के जिम्मेवारी भी हम सबके है, और ओकरा बचा के रखना भी हम सबके जरूरी है। आज देखथिन कि कितना गांव के नदी या नाला जलाशय सूख रहे है, और पानी लगे दो बूंद लगी के कितना जगह लोग तरस रहे। तो पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है, और हम सबके बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर अभी बरसात आवे वाला है, तो वर्षा के जो जल है वो हम सब लगी बहुत उपयोगी है, ओकरा बर्बाद ना कर देथिन और वर्षा के जल के बचा के रखथिन। तो यही पर एक ठो उपयोगी वार्ता अपने सबके सुनावही, वार्ता के विषय है वर्षा जल किस का संरक्षण, और वार्ताकार हथिन गरीब नाथ भट्ट, इनका से सुनही ई वार्ता।
1: मनुष्य जीव जंतु वनस्पति सबका जीवन इस धरती या दुनिया में तब तक ही संभव है जब तक प्रकृति ईश्वर या अल्लाह ने शुद्ध हवा एवं जल को मुफ्त भरपूर उपलब्ध कराया है। याद रखें, कोई अपना शुभचिंतक हमसे सुंदर मजबूत घर मुफ्त में बनाकर देता है और कहता है सुख सुविधा के साथ इस घर में खुशी पूर्वक रहो एवं अपने बाल बच्चों को भी इसका उपभोग करने का तरीका सिखाते रहो ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस सुंदर स्वस्थ घर का आनंद लेते हुए जीवन गुजारे। परंतु हम क्या करते हैं, आनंद पूर्वक बिना कुछ धन खर्च किए पूरे बाल बच्चों के साथ घर में सुख भोगते जीवन तो चलाते हैं, पर उस घर का देखभाल, सुरक्षा, रंगाई, पुताई नहीं करके ज़रूरत होने पर उसी घर के दो चार ईंट निकाल कर चौकी खटिया के सिरहाने को ऊंचा रखने हेतु उपयोग करने लगते हैं। कहीं घर में घुसने के रास्ते में ही या कीचड़ जमा है तो अपनी सुविधा हेतु घर से 8-10 ईंट तोड़कर कीचड़ से बचने में उपयोग करते हैं, पर धीरे धीरे उस घर को तोड़ते और बर्बाद करते जा रहे हैं जिसे किसी ने हमें जीने का साधन दिया था। इस प्रकार हम नादानी क्षणिक स्वार्थ में उस सुखपूर्वक जीवन चलाने वाले घर के साथ साथ अन्याय करते रहेंगे, तब वो घर हमसे दुखी होकर टूट कर धंस नहीं जाएगा? तब हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे? हमारे बाल बच्चों का कल क्या होगा? भाइयों, ठीक उसी प्रकार प्रकृति या भगवान ने दुनिया को शुद्ध हवा एवं शुद्ध जल पानी दिया है। इस दोनों के बिना क्या मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधा का जीवन क्या संभव है? क्या हवा नहीं मिलेगी तब हम सब कैसे सांस लेंगे? कितने मिनट बिना हवा जिंदा रहेंगे? ठीक उसी प्रकार यदि मीठा पानी जो हम पीते हैं, खेती करते हैं, मीठे फल फूल खाते हैं, जिसे पीकर गाय मीठे दूध देती है, पानी के बिना रहने पर क्या संभव है? नहीं है, कभी नहीं है। तब हम इसके संरक्षण बर्बादी से बचाने हेतु क्या करते हैं? याद रखें, हर चीज़ की सीमा होती है। आबादी बढ़ती जा रही है, तालाब, पोखर, बावड़ी, चौर, कुआं, जल जमाव वाली नीची जगह, बावली, खाली जगह भरकर हम घर, कारखाना, खेत, सड़क, रेल लाइन बनाते जा रहे हैं। पानी रुकने की सब इंच इंच जगह भरते जा रहे हैं। जल ऊपर जमा होता नहीं जो धरती सोख कर अपने भीतर जल भंडार कर सके। अपने देश को 3,000 अरब घन मीटर जल की सालाना सभी काम के लिए आवश्यक है, और वर्षा से हमारे पूरे देश भर में हमें 4,000 अरब घन मीटर पानी धरती को नसीब होता है, पर हम 130 करोड़ लोग इस वर्षा जल का मात्र 8% ही सहेज पाते हैं। सब जल नदी नाले से बहते हुए समुद्र

के खारे पानी में मिल जाता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह पाता है। फिर हम धरती के नीचे से पानी को निकालकर ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करते हैं। आप देखते हैं मात्र 60 वर्ष में प्रति मनुष्य जल की ज़रूरत है उसमें 70% की कमी हो गई है। धरती जल स्तर 3.5 फीट से 7 फीट तक नीचे चला गया है। चापाकल बोरिंग ने काम बंद कर दिया है। बढ़ती गर्मी एवं लू से सैकड़ों जाने जा रही है। बच्चों में चमकी रोग का प्रकोप भी पानी के कमी से वातावरण में बदलाव की वजह है। वर्तमान भारत सरकार ने देश में बढ़ते जल संकट से बचाव हेतु जल संसाधन एवं पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। प्रधानमंत्री ने देश के सभी ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत पत्र द्वारा आग्रह किया है कि जल संकट से प्रकृति को बचाने हेतु समाज को जागृत करें। नल द्वारा घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की योजना चल रही है। पाइप द्वारा जल आपूर्ति भी भूजल से ही संभव है। अब समाज एवं सरकार का कर्तव्य है कि भूजल को पुनर्भरण के उपाय द्वारा वर्षा जल द्वारा उस भूजल की पूर्ति की मजबूत व्यवस्था चले। पहले समाज के संपन्न लोग तालाब कुआं खोदवाना सामाजिक एवं धार्मिक दायित्व समझते थे। आज नदी चौर सूख चुके हैं। नदी की पेटी मिट्टी गाद से भर जाने की वजह से वर्षा जल को संरक्षित करने की उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। फलतः धरती के अंदर रीस कर भूजल जितना हम निकालते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। देश भर में छोटी बड़ी 4,500 नदियां सूख चुकी है। विश्व के अनेक जल विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में जल को लेकर होगा। खेती में खोज करनी है कि किस फसल में कम पानी की आवश्यकता है। खेती के उपयोग में आने वाले जल का धान एवं गन्ने की खेती में प्रायः 89% खर्च या बर्बाद हो जाता है। खेत में पानी लबालब भरकर धान की खेती करते हैं। इजराइल इत्यादि देशों में व्यवस्था है कि पौधे की जड़ में बूंद बूंद पानी डाल दिया जाता है। भाइयों निवेदन है, जल ही जीवन है। जल नहीं तो कल नहीं। वृक्षारोपण बढ़ाएं, तालाब संरक्षित करें, कुओं को जीवित करें, चौर चाचर को अनाधिकृत रूप से भरकर हड़पने को बंद किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचय हेतु प्रत्येक परिवार जल भंडारण की व्यवस्था करे। वर्षा जल की रक्षा भूजल के प्राण हैं। आप प्रकृति को सहयोग दें, प्रकृति जीव जगत वनस्पति की रक्षा करेगा। बंधुओं, आप लोग जानते हैं कि 40-50 साल पहले प्रायः प्रत्येक गांव में गोचर के नाम पर सरकार द्वारा 10-20 एकड़ जमीन खाली छोड़ दिया जाता था। उसमें हरी हरी घास हुआ करती थी। समूचे गांव इलाके के पशु उस मैदान में चराई कर पेट भरते थे। वर्षा होने पर उस घास के मैदान में पानी रुकती थी। धीरे धीरे वर्षा का पानी धरती सोखती थी और उससे धरती के नीचे जल संचयन होता था। प्रत्येक स्कूल कॉलेजों में बच्चों के खेलने का मैदान रहना अनिवार्य था। वह मैदान हरी हरी घास से आच्छादित थी रहती थी। उस माध्यम से भी वर्षा जल रुक रुक कर धीरे धीरे धरती के जल भंडार क्षमता बढ़ाता था। आज प्रायः समाप्त है। दूसरी ओर देखते हैं कि देश में या प्रांत में कहीं बाढ़ से बर्बादी है, कहीं पड़ोस में सुखाड़ से परेशानी है। अभी भारत सरकार ने देश की 60 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। याद रखें, जंगलों के कटने, पर्यावरण को दूषित करने, पहाड़ों को क्षति पहुंचाने से वर्षा जल में कमी तो अवश्य आई है या अनियमितता हुई है। फिर भी प्रकृति हमें वर्षा द्वारा
खपत से 1000 अरब घन मीटर अधिक पानी

0: देती है। अब आवश्यकता है इसको संरक्षित कर धरती के जल भंडार को बढ़ाएं। जितना भू संग्रहित जल हम खेती कारखाना या अन्य उपयोग में निकालते हैं उसे उस भाव से पूरा करें। याद रखें 2001 में प्रति व्यक्ति सालाना 1800 घन मीटर पानी उपलब्ध था, वह 2025 तक 1341 घन मीटर ही होगा एवं अनुमान है कि नहीं चेते तो 2050 तक यह मात्र 1140 घन मीटर ही प्राप्त होगा। दावा है सचेत रहना चाहिए, जल का बूंद बूंद बचाना होगा, वर्षा जल को आशीर्वाद मान संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का पुनित कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार के आय व्यय की बजट की तरह जल बजट बनाकर आमदनी खर्च को संतुलित करें। धन्यवाद।
1: वाह, बहुत ही फरिया फरिया के ये वार्ता हम सब सुन लिए। वर्षा जल का संरक्षण, सचमुच भगवान के आशीर्वाद है। बूंद बूंद जब वर्षा के जल पड़ा है तो कितना मन और खेत सब हरा भरा लगे लगा है। तो ऐसा वर्षा जल के संरक्षण करना हम सब के कर्तव्य है। और ये वार्ता लगी गरीब नाथ भट्ट के, धन्यवाद करिए। और आगे हम सब फिर अपने सबके सुनावही एगो लोकगीत, कलाकार हथिन डॉक्टर लक्ष्मी पासवान, इनका से सुनथिन ई लोकगीत।

0: वाह, बहुत ही नीमन गीत हले झूमर। डॉक्टर लक्ष्मी पासवान से हमने सब सुन लिए, इनका से आगे और भी गीत सुनवे श्रोता। लेकिन लेकिन अभी चौपाल के समय संपन्न होते ही अपने सबसे खेती गृहस्थी में फिर बातचीत करवे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

खेती गृहस्थी में अब किसान भाई से हम सब हम बात कर जाते ही कि कुछ ऐसा उद्योग है जे कि अपने सबके खेती से ही मिल जाए, माने कि कृषि आधारित उद्योग के बात करें ही, और देखते हैं कि ये जे कच्चा माल एक में इस उद्योग में जो प्रयोग हो भाई उपयोग हो भाई वो खेती से ही मिल जाए, जैसे कि कपास हो ले, जूट हो ले, चीनी, खाए वाला तेल, ये कृषि उत्पादन से ही प्राप्त हो जाए। और ये उद्योग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ल हो भाई, और बहुत ही प्रकार से ये हो सके। कुछ जैसे कृषि उद्योग है कि कपड़ा उद्योग, भारत में अगर बात करिए कृषि आधारित उद्योग के, तो ये उद्योग कपड़ा के निर्माण से संबंधित उद्योग है। ये एक तरह से आत्मनिर्भर उद्योग है जे कि ग्राहक के कच्चा माल से लेके पूरा तरीका से हर उत्पादन सब कुछ, सूती ऊनी सिल्क उद्योग भी एकरा में जे आवा है वो सब खेती से मिल जा है, और डेयरी उद्योग भी एकरा में आवा है। डेयरी उद्योग भारत में किसान भाई लगी आय के सबसे अच्छा स्रोत है। गांव के ये उद्योग जो है रोजगार भी प्रदान करे है। गाय के दूध एकरा में हो गई, माँ भैंस के दूध से मक्खन, पनीर, क्रीम, सूखल दूध, आइसक्रीम आदि उद्योग उत्पादन हो सके है। फिर चीनी उद्योग की भी बात करें, ये भी बहुत बड़ा उद्योग है कृषि आधारित उद्योग, और भारत में एक महत्वपूर्ण है उद्योग मानल जाए। गन्ना चीनी के उत्पादन के मूल स्रोत है, और भारत के गन्ना किसान सीधे तौर पर चीनी मिल पर निर्भर न हो ना होते, ज़्यादातर अपन ही उत्पादन से वो एकरा तैयार करते हैं। यही तरह से चाय, वनस्पति तेल, चमड़ा उद्योग और जूट उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, और ये उद्योग बहुत ही फायदेमंद है। और अब हम बात करिए श्रोता लोगिन की, जे खेत में कीटनाशक दवाई के छिड़काव होवे है ओकर बहुत ही ओकरा में सावधानी बहुत ही बरतना जरूरी है। काहे कि देखें कि कीटनाशक हम जे है वो हानि पहुंचा सके है, अगर थोड़ा सा भी अगर हम गलती कर ली तो सबसे पहले तो जरूरी है कि कीटनाशक के खरीदारी कीटनाशक हमेशा पंजीकृत विक्रेता से ही खरीदे के चाहिए, और जितना जरूरी हो इतना उतने ही खरीदे के चाहिए, ज़्यादा ना खरीदे के चाहिए, और कीटनाशक के हमेशा बच्चा और पशु से दूर रखे के चाहिए। साथ ही साथ बीमार व्यक्ति या चोट लगल व्यक्ति या घाव या फोड़ा

फुंसी वाला व्यक्ति या गर्भवती महिला के द्वारा एकरा छिड़काव ना करे के चाही। और छिड़काव करते समय भी हाथ मुंह नाक सब ढक करके पूरा कपड़ा पहन के छिड़काव करथिन, और हवा के दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में ना। और घरे कोई खाना पीना या जैसे खैनी लगाना या कुछ तरह से धूम्रपान ना करे के चाहिए। और छिड़काव के बाद बढ़िया से नहा धोवा के साफ सुथरा हो लेवे के चाहिए, और जे बर्तन से या जो में छिड़काव करल थी ने ओकरा भी बढ़िया से साफ करके सुखा के रख देवे के चाहिए। तो ऐसे सावधानी करना करे से आदमी खतरा से बच सके है। और अपने के हम फिर से जब हम खेती गृहस्थी की बात करें तो ओकरा में देखते कि एगो जाँता वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाव है। और जाँता पीसे घरे जे आदमी गीत, महिला लोग गीत गावत हैं, वो गीत के मिठास अनाज में चलावे है। तो काहे ना हम

देखते हैं कि एगो जाँता वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। और जाँता पीसे घरे जे आदमी गीत महिला लोग गीत गावत हैं, वो गीत के मिठास अनाज में चलावा है। तो काहे ना हम इतना ये जतसार जरा कहे, तो काहे ना सुने ही ये लोकगीत जतसार। और कलाकार हथिन डॉक्टर लक्ष्मी पासवान।

0: परजीवी है, ओकरा से का नुकसान है और कैसे ओकरा बचाव हो सके है, यही पर हम सब उपयोग वार्ता सुनिए। वार्ता के विषय है पशुओं के बाह्य परजीवी एवं उससे बचाव। वार्ताकार हथिन डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, इनका से सुनिए ये वार्ता।
1: नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। आज हम पशुओं के बाह्य परजीवी एवं उनके बचाव के विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे जीव जो किसी अन्य जीव पर भोजन तथा आवास के लिए आश्रित होते हैं उसे परजीवी जंतु कहलाते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक जो जानवर के शरीर के अंदर रहते हैं जैसे कीड़े और लीवर फ्लूक, उसे अंतः परजीवी कहते हैं, और दूसरे जो त्वचा पर बाहर रहते हैं जैसे कि टिक्स, माइट्स, चीचड़, खटमल और जू, वाय परजीवी कहलाते हैं। वाय परजीवी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, लेकिन पशुओं के शरीर के बाहर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यह टिक्स चमड़ी की ऊपरी सतह से शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे बवेशिया, टिक जनित इंसेफ्लाइटिस, एनाप्लाज्मोसिस, और अधिक समय तक रहने पर शरीर से खून चूसते हैं तथा त्वचा पर चिपके रहकर घाव बनाते हैं, जिससे अनेक जीवाणु संक्रमण भी हो सकता है। बाहरी परजीवी एक बहुत बड़ी समस्या है। परजीवी दूध और मांस उत्पादन को कम करते हैं, विकास दर को कम करते हैं, पशु दुबला हो जाता है एवं चमड़ी खुरदरा हो जाता है। बाह्य परजीवी से प्रायः सभी प्रकार तथा उम्र के पशु प्रभावित होते हैं, परंतु विशेष रूप से यह गायों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली आदि में भी पाए जाते हैं। पशुओं में बाह्य परजीवी मुख्यतः टिक्स, माइट्स, जिसे हम ग्रामीण भाषा में चमोकन भी कहते हैं, और चीचड़, खटमल और जू होते हैं। किलनी, इसे ग्रामीण भाषा में चमोकन कहते हैं, जो जानवरों के शरीर पर चिपक कर उसको काटती है और खुजली उत्पन्न करती है। यदि किलनिया की अधिकता हो जाए तो जानवर दुबला पतला हो जाता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा को काट कर घाव बनाते हैं, या पशु का खून चूसकर एनीमिक कर देते हैं, जिससे पशु के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम जाती है। यह बहुत सारे रक्त प्रोटोजोआ जैसे बबेसिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मा, जीवाणु विषाणु रोग को भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलाते हैं। चीचर, जिसे हम माइट्स इंग्लिश में कहते हैं, यह भी चमोकन की तरह होती है। चीचर एक प्रकार का बाह्य परजीवी है जो पशु के शरीर में चिपक जाते हैं और पशु की त्वचा को भेदते हैं, जिससे शरीर में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। इन घावों में चीचर पशु के शरीर से खून चूसते हैं। चीचर के काटने से जलन, बेचैनी, खुजली, खून की कमी होती है। चीचर प्रायः गर्मी एवं वर्षा ऋतु में अधिक होते हैं, क्योंकि उस समय चीचर के प्रजनन के लिए उचित तापमान एवं नमी वातावरण में उपलब्ध होती है। चीचर पशुओं में प्रायः घुमंतू पशुओं एवं चारागाह से आते हैं और पशुशाला की दीवारों, फर्शों आदि की दरारों व छिद्रों में छिपे रहते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है पशु के शरीर पर चिपक कर खून चूसते हैं और पशु को धीरे धीरे हानि पहुंचाते हैं। चीचर कई प्रकार के कीटाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोआ को एक पशु से दूसरे पशु तक ले जाते हैं, जैसे थाइलेरिया, बेबेसिया, एनाप्लाज्मा जैसी प्रमुख बीमारियां फैलाती है, जिसके अभाव में पशु की मृत्यु हो जाती है। पिस्सू, और इसे अंग्रेजी में फिलीज कहते हैं, यह बहुत छोटे प्रकार के पतंगे हैं जो जानवरों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें बेचैन कर देते हैं। रेत मक्खी, इसे अंग्रेजी में सेंड फ्लाई और बालू मक्खी भी कहते हैं, जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती है जो जानवरों के शरीर पर चिपक कर उसका रक्त चूसती है और बीमारी फैलाते हैं। जू चीचर की तरह जुएं भी सभी प्रकार एवं सभी आयु के पशुओं को प्रभावित करती हैं, परंतु यह गायों में कम तथा भैंसों में अधिक मात्रा में होती है। इसके अतिरिक्त

वाह, देखते हैं कि आज अभी हम सब परिवार के सामंजस्य के चर्चा के लिए और ये गीत के माध्यम से ना खाली अनाज के मिठास के बात हम करिए, बाकी जतसार में हम देख ली कि परिवार के भी याद करल के लिए इनका से आगे गीत सुनवे। लेकिन अभी हम सब एगो वार्ता के तरफ हम चले ही और पशु में होए वाला जो बाहरी

चूहे, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी में भी पाई जाती है, जो सर्दी ऋतु में बहुत अधिक संख्या में होती है। इसका मुख्य कारण सर्दी में पशुओं के शरीर पर घने लंबे बाल का होना, पशुओं का अधिक नज़दीक से एक दूसरे के संपर्क में रहना माना जाता है। जुओं का पशुओं पर प्रमुख असर बेचैनी के रूप में होता है। पशु लगातार खुजला खुजला कर अपने आप को जख्मी कर लेता है। बछड़े व बाछियों के द्वारा अपनी त्वचा अधिक चाटने से, खुजलाने से बाल टूटकर उनके पेट में चले जाते हैं और पेट में अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं। बाह्य परजीवी से बचाव एवं रोकथाम। बाह्य परजीवी से सुरक्षा के लिए जानवरों में रहने के स्थान को स्वच्छ और सूखा रखना चाहिए। वहाँ पर DDT का छिड़काव उनके आने का रास्ता बंद करना चाहिए। पशुओं के आवास के फर्श और दीवारों में सभी दरारों को सीमेंट से सील कर देना चाहिए। प्रत्येक दिन आवास को साफ रखना चाहिए एवं सूखा रखना चाहिए। पशुओं को नियमित रूप से नहलाना चाहिए। भेड़ के बाल नियमित रूप से काटना चाहिए। सूखे नीम के पत्तों की राख बनाकर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें तथा परजीवियों के बचाव के लिए इसे हर 2 सप्ताह में पशुओं पर लगाएं। बाह्य परजीवियों के नियंत्रण करने के लिए विभिन्न रसायनों, उचित कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मिथॉक्सी क्लोर, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जैसे मैलाथियन, पेरेथ्रिन जैसे साइपरमेथ्रिन, बुटॉक्स आदि का घोल बनाकर पशु के शरीर पर लगाना चाहिए। पीड़ित जानवरों के बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए 5 ml साइपरमेथ्रिन का घोल 10 लीटर पानी में घोलकर जानवरों के शरीर को धोना चाहिए। आइवरमेक्टिन एक प्रकार का इंजेक्शन है जो बाह्य और अंतः परजीवी दोनों को समाप्त कर देती है। इसकी त्वचा के नीचे 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। पशु शरीर, पशु आवास एवं बैठने के स्थान पर 5% गैमेक्सिन का घोल या DDT का छिड़काव करना ज़्यादा लाभदायक होता है। दवा लगाने की विधि। बाह्य परजीवियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पशुपालकों को पशु चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का उपयोग करना चाहिए। इनमें से मुख्यतः विधि है छिड़काव विधि। यदि पशुओं की संख्या कम है तो दवा को हाथ या पंप से छिड़काव करना चाहिए तथा पशुशाला में भी दवा का छिड़काव करना चाहिए। पोछा विधि। इस विधि में दवा को कपड़े में लगाकर पोछे के रूप में मुंह, सिर तथा नाक से बचाते हुए संपूर्ण शरीर पर लगा देते हैं तथा 1 घंटे के पश्चात पशु को नहला देते हैं। डिपिंग यह केवल भेड़ और बकरियों जैसे छोटे जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है। अगली विधि डुबकी विधि है। जब पशुओं की संख्या बहुत अधिक हो तो इस विधि को अपनाया जाता है। इसके लिए एक पानी का टैंक बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई 6 फीट और लंबाई 15 फीट होनी चाहिए। दवा का घोल बनाकर इस टैंक में भर दिया जाता है और पशुओं को एक एक करके इसमें से डुबाकर बाहर निकाला जाता है। इस विधि में पशुपालकों को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे डुबाने से पहले पशु को बड़े बाल काट देना चाहिए, गाभिन पशु को नहीं डुबाना चाहिए, पशु के शरीर में अगर घाव हो तो नहीं डुबाना चाहिए, पशु का सिर, नाक एवं मुंह नहीं डूबना चाहिए। दवा लगाते समय या छिड़काव करते समय दवा आँख, नाक, कान और मुंह पर नहीं पड़नी चाहिए। पशु के मुख पर जाली लगा देना चाहिए जिससे पशु उसे चाट न सके। दवाओं का घोल या छिड़काव चारा, दाना, घास, किसी भी खाद्य पदार्थ पर नहीं पड़ना चाहिए। पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने स्वयं का बचाव भी करे। जिस दिन पशुशाला में दवा का छिड़काव किया जाए तब से 1 से 2 दिन तक पशु को उस घर में नहीं बांधना चाहिए। अगर आपके
पक्के पशुशाला हों तो फर्श पर पुआल और खर पतवार डालकर आग

0: लगा दे जिससे फर्श पर जितने भी परजीवी के बच्चे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अंत में मैं पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहूँगा, यदि पशुपालक भाई इन उपायों को अपनाएंगे तो वह निश्चित रूप से पशुओं में चीचड़, चमोकन और अन्य बाह्य परजीवी से मुक्त और पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे।
1: पशुओं के बाह्य परजीवी एवं उससे बचाव वार्ता के विषय है और वार्ताकार हल्थिन डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। इनका इतना अच्छा वार्ता लगी, धन्यवाद करिए। और फिर श्रोता लोग और किसान भाई लोग अपने सबके सुनाव ही देखते हैं कि बहुत तरह के लोकगीत है जे कि खेती गृहस्थी में गा गा करके खेती के भी काम हो जाए, गीतनाद भी हो जाए, मन भी लग जाए। रोपे घरे रोपनी, काटे घरे कटनी और जाँता पीसे घरी जतसार, ऐसा तरह तरह के जो गीत है खेती किसानी से जुड़ल, वो यही लगी है कि भाई काम के भी बोझ न लगे और खेती भी हमर अच्छा से हो जाए। तो हम सब सुनवावे अपने के डॉक्टर लक्ष्मी पासवान के स्वर में ई लोकगीत।

वाह वाह, बहुत निमंगीत है। पानी पी के, सत्तू खा करके और हर जोते में के मजा ही कुछ और है। इतना निमन निमन गीत डॉक्टर लक्ष्मी पासवान सुनेलथिन, एक खारा बहुत धन्यवाद। और अब श्रोता लोगिन अपने से विदा लेवे के समय आ गई, लेकिन फिर मिलवे। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखथिन और अब हमार प्रणाम स्वीकार करथिन। अंजला कुमारी के नमस्कार श्रोता लोगिन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
3: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
2: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
3: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
2: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: the latest World Cup news.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 सालों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को पिछले 12 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि कल 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह श्री मोदी में देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रदेश में अब नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और अनुमोदन प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पालों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।
2: डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहां भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए, कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करें। रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है, और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे।
1: राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन

0: को व्यवस्थित बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्री चौधरी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर रही है। इस नियमावली को अगले 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा।
1: कोचिंग संस्थाओं को कानून के दायरे में लाने के हम एक बिहार राज्य कोचिंग नियमावली भी बना रहे हैं जो अगले 3 महीने के अंदर उसे लागू करेंगे और सबको उसके दायरे के अंदर लाएंगे। उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाएंगे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना।
0: श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। श्री प्रधान ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई निर्देश जारी किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के पटना, दरभंगा, मोतिहारी समेत 34 जिलों के 35 शहरों में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और डाक विभाग के समन्वय से उन्हें विशेष विमानों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। पुलिस को सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाने या फर्जी प्रश्न पत्र प्रसारित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि का एक कार्यक्रम था, जिसे कहा जा सकता है कि एक लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है।
0: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आज पटना से थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पटना से वेल्लोर रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब तक 43 बच्चों का मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य का दक्षिणी हिस्सा जहां भीषण गर्मी की

0: में है, वहीं उत्तरी और पूर्वी हिस्से में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का टेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गया जी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उलान बटार में दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। गंदन मठ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ हुए इन समझौतों से बौद्ध विरासत और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: नालंदा विश्वविद्यालय का पहला ऐतिहासिक समझौता उलान बटार के प्रसिद्ध गंदन मठ के साथ हुआ है। ये साझेदारी दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आधारित है, जिसके तहत दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण, संयुक्त अनुसंधान और प्राचीन नालंदा की ज्ञान परंपरा को सहेजने पर काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरा समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ सम्पन्न हुआ। इस समझौते के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और छात्र संकाय आदान प्रदान कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। समाचार कक्ष से निखिल आनंद गिरी।
0: एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है।
3: बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत की जूनियर सीनियर टीम्स में खेले। अब बिहार किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में खेल के मामले में पीछे नहीं रहे।
0: पत्रकारों से बातचीत में सावन कुमार ने कहा कि विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है।
4: एज अ गोलकीपर अभी अंडर 18 इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ था और एशिया कप में हमारा गोल्ड मेडल, काफी अच्छा फील हो रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में काफी डेवलप किया गया, तो उस चीज को लेकर मैं काफी थैंकफुल करना चाहता हूँ।
0: पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक के पास पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक स्विट्जरलैंड की महिला और एक म्यांमार का युवक शामिल है। दोनों पर बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सभी प्रकार के निशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने को लेकर विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौड़ बालूखाट स्थित चालान सेंटर से अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने दो कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के तीसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भापटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर

0: कर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में आगामी खरीफ मौसम की तैयारी तेज हो गई है। इन दिनों किसान धान के बिचड़ा डालने और बीज खाद की व्यवस्था में जुट गए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों की मदद के लिए पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नहरों और वितरणियों में अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुँचाने और जल जमाव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से किसान रजिस्ट्री कराने की अपील की है। इससे पीएम किसान, फसल बीमा, कृषि ऋण, उर्वरक वितरण एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में सुविधा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। आपात स्थिति में 101, 112 और जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। उद्योग के क्षेत्र में रोहतास जिले ने पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, महिला उद्यमी योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन में बेहतर क्रियान्वयन के कारण राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन को पटना में सम्मानित किया गया है। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 15 जून तक 100% सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड के लिए लक्ष्य निर्धारित कर निगरानी करने को कहा है। महिला और बाल विकास निगम ने आलमपुर पंचायत में सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सरकारी योजनाओं, बाल विवाह रोकथाम तथा हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 की जानकारी दी गई। सहयोग शिविर अभियान के तहत प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। गत दिनों शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी आवेदन को 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत चेनारी, नौहट्टा, रोहतास और तिलौथु प्रखंड के 19 गांवों में स्वास्थ्य शिविर और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कम ओपीडी वाले चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए चेनारी प्रखंड के जवान दिलीप कुमार पासवान के परिजनों को राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की है। जिला प्रशासन ने इसे शहीद परिवार के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रतीक बताया। सासाराम में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त

0: तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव में रील प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुशायरा, विचार गोष्ठी और सूफी संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जिले के सभी 281 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माँ, सशक्त भारत थीम के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच, फोलिक एसिड वितरण तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान पर विशेष जोर दिया गया, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास वन प्रमंडल, मनरेगा और जिला प्रशासन ने जिले में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक उन्मूलन का संदेश दिया गया। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। मेयर काजल कुमारी के अनुसार सड़क, नाली, पेयजल और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी 1598 योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें से सैकड़ों योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों ने सासाराम जंक्शन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिले के डेहरी में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का प्रशिक्षण दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व बकरीद जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल प्रशासन ने सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों को तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया गया, साथ ही तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सासाराम के अंचलाधिकारी, उनके सहयोगी तथा सदर अस्पताल के कर्मी को अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में गिरफ्तार अधिकारी और कर्मचारियों को पटना लेकर चली गयी।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए भजन चक्रपाणि मिश्रा की आवाज में।

0: सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे भजन चक्रपाणी मिश्रा की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम का थीम है आर्थिक विकास।
1: बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
2: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलकर तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत

0: सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ भी कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी

0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इस पे कट्स लगे हुए थे इस पे, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही

0: मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 principles के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को, अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर, तो सिग्निफिक

0: सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा।
3: राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का

0: कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी।

0: को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमें आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मेलिटी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है संसद के अंदर में।

0: बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: ये आ
1: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम का थीम था आर्थिक विकास। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं गजल मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे गजल मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी

0: सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 180,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन

0: योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says, foreign policy under Modi-led government during past 12 years

0: कम करने, जल्द अज जल्द अमनो इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुजाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल जाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम मोदी इतवार के रोज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैनुल अक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निज़ाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निज़ाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निज़ाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमू कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के क्याम को मंजूरी दे दी है। ये निज़ाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तावुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر

0: रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूद पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तिहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तिहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, जेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाद हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफ अफ्रीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक। नाटक का शीर्षक है जिंदगी में धोखे। प्रस्तुत है नाटक जिंदगी में धोखे। इसके लेखक हैं अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा तथा निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अलका प्रियदर्शनी। तो लीजिए सुनिए नाटक जिंदगी में धोखे।

0: Sarai darao. Adesso non è ragnon. Oh, mire piare dulare babu. Ragnon. रंजन मेरा पोता है, पढ़ने में तेज है और मोबाइल का तकनीकी ज्ञाता है। आप सोच रहे होंगे मैं अकेला किससे बात कर रहा हूं। अरे भाई, आपके पास कोई भी ना हो तो परवाह नहीं, आपका स्मार्टफोन यानी मोबाइल आपके पास हो तो बस सब ठीक ठाक है। अभी मैं अपने मोबाइल को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। जब भी ऐसी परेशानी आती है मेरा पोता रंजन उसका समाधान निकाल ही देता है। चौथे क्लास का विद्यार्थी है पर है बात तो नकमी जाश। काम कराने के लिए समोसे के वास्ते मुझे अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। रंजन
1: क्या है? बोलिए दादाजी, एक बार में ही सुन लिया था। आप लगातार रंजन रंजन पुकारते रहे तो मुझे लगा मैं काम का लड़का हूँ। बोलिए क्या काम है?
0: अरे बेटा देखो ना, तुमने ये बटन दबाने को कहा था ना, ऐसा कर आप अपने मोबाइल पर आए नए पुराने मैसेज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर देखो ना बेटा, ये तो फिक्स हो गया, डर से मस नहीं हो रहा है।
1: लाइए दादाजी। अरे रे रे, आपने तो गलत बटन दबा दिया, तो ऐसा होगा ही ना।

0: रंजन, अरे घंटी बजी, लगता है किसी का कॉल है।
1: नहीं दादाजी, ये साउंड मैसेज आने का है, देखता हूँ किसका मैसेज है। अरे मैसेज तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लीजिए पढ़ते जाइए और आगे सर काटते जाइए।
0: ला ला ला ला, मानव तस्करी और इसका विकराल रूप, अपने देश ही नहीं विश्व भर में मानव तस्करी एक बहुत बड़ा संकट बनकर खड़ा हो गया है। विशेषकर बालिकाओं की ट्रैफिकिंग के विभिन्न पक्ष उजागर हो रहे हैं। आप इस मैसेज को स्वयं देखें, पढ़ें और शेयर करें। बालिकाओं, लड़कियों को देह व्यवसाय के दलालों के हाथों से बचाना है। हम सबका ये दायित्व बनता है। एक शुभ चिंतक। हे प्रभु, ये सब देख सुनकर कलेजा कांप जाता है। कहां तक गिरेगा आदमी? रुपए और जल्दी धनवान बनने के लिए आदमी आदमी को बेच खाएगा। ओ बहु, बहु सुनती हो? एक गिलास पानी देना।
2: आई बाबूजी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा लग रहा है।
0: नहीं नहीं, बस यूं ही, वैसे कोई खास बात है?
2: नहीं, कोई ना कोई बात तो है बाबूजी। क्या कोई सैड मैसेज आया है? त्रिलोचन चाचा का हार्ट तो स्टेबल है ना बाबूजी?
0: हाँ हाँ, वो एकदम ठीक है। तुम मैसेज की बात कर रही थी ना?

0: ले, मैसेज पढ़ ले और इसे और लोगों से शेयर भी कर। बड़े ही धीरज के साथ पढ़ने और समझने की बात है।
1: ऐसी क्या बात आ गई बाबूजी? बहुत तरह की अफवाह भी फैलाने वाला मैसेज आता रहता है। लाइए, देखती और पढ़ती हूँ।
0: ले बहू, हमारे मोबाइल में है।
1: लाइए बाबूजी, आपके लिए नाश्ता का प्लेट तैयार है, आ जाइए डाइनिंग टेबल पर, वो भी तैयार हो गए हैं।
0: ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ।
1: क्या मैसेज है? मानव तस्करी का विकराल रूप, बालिकाओं और लड़कियों का व्यापार, बच्चों को काम के नाम पर दूसरे शहरों प्रदेशों में ले जाया जाता है और उनका भरपूर श्रम शोषण किया जाता है। वहीं शादी और नौकरी के नाम पर बाहर के दलाल, लोकल दलालों के सहयोग से लड़कियों और बालिकाओं की ट्रैफिकिंग कर देह व्यापार में झोंक कर उनके दैहिक शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। हमें और आप सबको सतर्क रहना होगा। इस मैसेज को शेयर करें और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसने वाले बालकों, बालिकाओं और लड़कियों को बचाएं। अजी सुनते हैं?
2: क्या है बोलो, मैं तैयार हूँ।
3: बाबूजी आ गए नाश्ता के लिए?
1: हाँ बाबूजी आ रहे हैं। देखिए ना, बाबूजी के मोबाइल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आया है।
3: अरे ठीक है, देख लेंगे, पहले नाश्ता लगाओ।
0: कहो राकेश, देश दुनिया का हाल ठीक है ना?
3: बस चल रहा है बाबूजी, एक पल अच्छा तो दूसरे पल खटास का समाचार आ जाता है। अरे बाबूजी नाश्ता शुरू कीजिए। अरे भाई वो रंजन कहाँ गया?
0: रंजन आ जावा। अच्छा है, छुट्टी के दिन हम सब साथ साथ टेबल पर एक साथ बात करते करते कुछ पल अच्छी तरह गुजार देते हैं।
3: देखिए बाबूजी, मोबाइल और टीवी ने आपस में बात करने के सिलसिले को थोड़ी चोट पहुंचाई है। लोग गुमसुम रहने लगे हैं। आपस में बात करना, सुख दुख शेयर करना भूलता जा रहा है आदमी।
0: इसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है बेटा, घर में शांति लगती है। ये शांति नहीं, सन्नाटा है बेटा, सन्नाटा, मरघट का सन्नाटा, रेगिस्तानी साय साय सा सन्नाटा।
1: हाँ बाबूजी, दिल में उथल पुथल, बेचैनी, अंदर ही अंदर घुटने का सन्नाटा। लगता है जोर से चीख पड़े पर यह मौन का सन्नाटा नहीं टूटता। आस पड़ोस में क्या हो रहा है सो छोड़िए, एक दूसरे के कमरे का हाल भी पता नहीं चलता।

0: देखो तो, लगता है बगल वाले फ्लैट का दरवाजा कोई पीट रहा है।
1: मैं देखता हूँ, दरवाजा इतने जोर से पीटना ठीक आवाज नहीं देता।
2: अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप बैठिए, मैं देख लेता हूँ। अरे कोई तो यहाँ नहीं है, फिर ये दरवाजा क्यों पीट रहा है कोई?
1: राकेश, कोई है क्या?
2: नहीं बाबूजी, यहाँ तो कोई नहीं है, पर हाँ एक पैकेट पड़ा हुआ है। लगता है कोई दरवाजा पीट कर पैकेट रख कर चला गया।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। दूसरे का पैकेट छूना ठीक नहीं। आ रहा हूँ। अरे इस फ्लैट के गेट में तो ताला लगा है, लगता है ये लोग कहीं बाहर गए हुए हैं।
3: कुछ पता चला बाबूजी?
1: फ्लैट में तो ताला लगा है।
3: हाँ हाँ हाँ, ये लोग बाहर गए हैं, बोल रहे थे अर्जेंटली आने का मोबाइल पर मैसेज आया था, शायद इनकी बेटी ने मैसेज भेजा था। वो तो बाहर आती जाती रहती है ना।

0: देख डॉली, तो खुद पढ़ी लिखी लड़की है, अपना भला बुरा समझती है, पर ये प्यार मोहब्बत के लफड़े में पड़ने की तुम्हारी उम्र नहीं है बेटी। और तुमको क्या पता है लड़का कैसा है, क्या करता है? जिंदगी कोई 4 दिन की चांदनी नहीं बेटी, कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। पापा तो बिल्कुल गुम हो गए हैं।
1: पापा, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, वो मेरा अच्छा दोस्त है पापा, इसके अलावा मेरा और कोई संबंध नहीं है।
2: डॉली बेटा, कितने नाजुक अदा से मैंने तुम्हें पाला है, तू ही मेरी बेटी और तू ही मेरा बेटा है। मेरी तो बस इच्छा यही है कि तू अच्छी तरह पढ़ लिख कर अच्छे से जॉब में जाए, समाज में नाम पैदा करे। ये पढ़ाई के बीच नहीं नहीं, मुझे जरा भी ठीक नहीं लग रहा है ये। अच्छा ये बता, तू उसको कितने दिनों से जानती है?
1: पापा, ज्यादा दिनों से तो नहीं, पर जितने दिनों से जाना है उसे, वो ही मेरा यानी मेरे लिए लगता है सब कुछ है। जानते हैं पापा, उस दिन जब सिनेमा हॉल के सामने से मेरा बैग,
3: अरे देखिए, वो लड़का मेरा बैग छीनकर भाग रहा है। अरे कोई पकड़ो मेरा बैग।
4: क्या हुआ?
3: पकड़ी, वो मेरा बैग लेकर भागा जा रहा है।
4: बैग? अरे पकड़ो, वो बैग लेकर भाग रहा है। अरे भाई साहब, भाग कर कहाँ जाएगा प्यारे, पकड़ लीजिए भाई साहब, पकड़िए उसे भाई साहब।
5: अरे अरे, मारना नहीं, ये लो उसका बैग।
4: उसका बैग? अबे अपने बाप का बैग समझ कर ले उड़ा था।
5: अरे अपने बाप का बैग लेकर क्यों भागूंगा, उसमें माल कहाँ होता है।
4: बे ओ, तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है, पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा।
3: मिल गया मेरा बैग। अबे लफंगे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
5: हाथ मत चलाना मैडम, ठीक नहीं होगा। छोड़िए मेरा हाथ।
4: अरे देखिए, भागा चोर भागा,
3: पकड़ो।
4: जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए, ये लीजिए अपना बैग। लेकिन आप इतनी लापरवाह क्यों थी कि कोई आपका बैग झपट सका?
1: मैं जरा अपनी सहेली का वेट कर रही थी, तभी उसने स्नैच कर लिया।
4: ओ, क्या था इस बैग में? आप बहुत घबराई लग रही थी।
1: वो 60,000 रुपए थे, मेरी फीस के इंस्टॉलमेंट के।
4: 60,000? अरे बाप रे, इतने सारे रुपए? आप बैंक से निकली थी ना? हाँ, शायद उसी टाइम मैं भी बैंक से निकला था।
1: आपका बड़ा उपकार है मुझ पर, थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर।
4: नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं है मिस।
1: माइसेल्फ डॉली।
4: मैं जॉनी। अच्छा मिस डॉली, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। मैं अक्सर शिवाजी पार्क में शाम को आता हूँ।
1: अच्छा, वाह, मैं भी उधर शाम को आए दिन आते रहती हूँ।
4: वाह, अच्छा संयोग है, फिर मिलेंगे शाम में
1: शिवाजी पार्क में।
4: शिवाजी पार्क में।

0: डॉली जी आप कमाल की हैं, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, उफ, बहुत आकर्षक लगता है। लियोनार्डो डिविंची की पेंटिंग मोनालिसा की मुस्कुराहट की प्रतिमूर्ति हैं आप। ओह
1: अब बहुत हो गया, शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये ट्रूथ है डॉली, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डॉली डॉली और पास आओ ना, थोड़ा और पास आओ।
1: और कितने पास?
0: हाँ
1: मैंने तुम्हें अपने दिल में बैठा लिया है, जो मेरे लिए इतने फिक्र करता है

0: सब कुछ है, मेरा सब कुछ उसका। बस बस।
1: नहीं डॉली, कम ऑन डॉली, प्लीज।
0: बस बस।
1: डॉली, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। डॉली, मैं तो तेरे लिए आसमान के तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ।
0: वाह जनाब, आप तो विश्व प्रसिद्ध प्रेमी मजनू से भी 10 कदम आगे निकलना चाहते हैं, पर जमाना ठीक नहीं है जनाब। हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, यही सबक बड़े बुजुर्ग देते हैं।
1: सही है बाबा, सही है। सोच विचार कर, जांच तौल कर कर ही कोई काम करना चाहिए। पर ये तो कोई वस्तु की खरीदारी नहीं है डियर, ये तो प्रेम का मामला है। ये कोई पापी पेट की भूख मिटाने का प्रश्न नहीं है, ये तो बस दीवानगी है मेरी डॉली, जॉनी और डॉली के प्रेम की दीवानगी। एक पल को मिले और हो गए हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के। डॉली, जीवन भर साथ निभाने का मैं वादा करता हूँ। जीऊंगा तुम्हारे लिए या मरूंगा तुम्हारे पास। हाँ डॉली।
0: अच्छा हाँ। अच्छा चलिए, मरने की बात मत कीजिए। मम्मी पापा को मैंने बुलाया है, उनसे मिलकर बात कर लेते हैं।
1: ओफो, अब इसमें आपके मम्मी पापा की क्या जरूरत है भाई? देखिए, मेरे तो मम्मी पापा है नहीं, तो मेरे लिए कौन बात करेगा उनसे?
0: ओहो, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
1: अच्छा।

0: तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। वो इतना होशियार है कि तुम्हारी पापा मम्मी को इग्नोर करने की सलाह दे रहा था।
1: अरे नहीं पापा, इग्नोर करने के लिए नहीं, वो बस झिझक रहा था। उसके मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए।
2: यह इमोशनल बनाकर बेवकूफ बनाने वाली बात लगती है मुझे।
1: क्या मम्मी, आप हर पहलू में शक की गुंजाइश कैसे ढूंढ सकती हैं? वो लड़का ऐसा नहीं है माँ।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारा भरोसा ही सच हो, पर क्या चाहती है तू? मुझे स्पष्ट पता, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, एकदम क्लियर कट। बोल बोल, क्या चाहती है तू?
1: मैं उससे उसके साथ जीवन भर यानी मैं आज ही आपके सामने मम्मी के रूबरू उस लड़के के हाथ से मंगलसूत्र पहनकर उसे पति स्वीकारना चाहती हूँ।
0: नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
1: आपको कुछ नहीं करना है पापा, ओनली आशीर्वाद।
2: ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो, पर मैं कहती हूँ एक साल तुम्हारी पढ़ाई और शेष है, पूरा कर ले, उसके बाद तेरी जो इच्छा हो करना, समझी?
0: चलो चलो, अपना बैग उठाओ सुनीता, चलो अभी ट्रेन का टाइम है। डॉली तुम भी चलो घर, फिर एक सप्ताह बाद आ जाना हॉस्टल में।
1: पापा, मैंने जॉनी को आपसे मिलने को बुलाया है, 10 मिनट में आता ही होगा। और पापा, अभी मैं कॉलेज नागा नहीं कर सकती।
0: ठीक है, कितनी देर और रुकना होगा उसके लिए? तुम्हारा 10 मिनट कब खत्म होगा?
1: पहले तो आप जाने के लिए इतनी हड़बड़ी नहीं करते थे, आज क्या हो गया है?
2: डॉली, पहले हम दोनों अपनी इकलौती दुल्हारी बेटी से मिलने आते थे, अपनी बेटी से, पर आज जो अपनों को पराया और गैरों को अपना बना चुकी है, उस लड़की के पास आए।
1: माँ माँ, तुम मुझे अपने से अलग मत करो। ठीक है, वो नहीं आया, अब मैं और नहीं रोकूंगी, ट्रेन का टाइम है। पापा, आपको बहुत दुख पहुंचाया है, हो सके तो अपनी बेटी को क्षमा करेंगे?
0: ठीक है, अब तो निकलने का समय हो गया है, चलता हूँ बेटा।

0: उठिए उठिए जी, बैग निकालिए।
1: लाओ माँ, मैं बैग ले लेती हूँ। चलिए चलिए स्टेशन तक मैं भी चलती हूँ।
2: नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम बस ठीक से रहना, कोई गलत कदम मत उठाना। जीवन में बहुत धोखे हैं डॉली।
0: ठीक है बेटा, हम चलते हैं, हमें भूल ना जाना।
1: चरण स्पर्श, मम्मी बाय बाय।
0: खुश रहो।
3: हाय डॉली। अरे यार, दो दिन तुम्हें पार्क में तलाशा, तुम दिखी ही नहीं। कोई परेशानी है क्या, या कोई उलझन है?
1: नहीं यार, अब तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। मैंने मम्मी पापा को बुलाया था अपने डिसीजन की जानकारी और उनकी सहमति के लिए, पर मम्मी पापा दोनों ही जॉनी के मामले में खुश नहीं थे। ऊपर से जॉनी समय पर पापा से मिलने नहीं आया।
3: मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आजकल मोबाइल वाला प्यार मोहब्बत बड़ा ही डेंजरस रूप अपना रहा है। कई बहनों की जिंदगी बर्बाद हुई है इस चक्कर में। डॉली सुन, तुमने कोई पर्सनल जानकारी तो उस जॉनी से शेयर नहीं की है ना?
1: मुझे याद नहीं है क्या क्या शेयर किया, पर मुझे जॉनी बहुत ही बोल्ड और अपना लगता है। रीता रीता देख देख, वही लड़का है जिसने मेरा बैग उड़ाया था, जिसे जॉनी ने दौड़कर भीड़ की परवाह किए बिना मेरा बैग उससे छीन कर दिया था।
3: चल तो उस लफंगे से पूछते हैं, आज फिर किसी का चेन या बैग स्नैच करने का इरादा है क्या? ए मिस्टर बैग लिफ्टर, फिर बैग लेकर भागने आए हो?
4: अरे मैडम, क्या बात करती हैं? मैं बैग स्नैचर नहीं,
0: लव स्नैचर हूँ। जॉनी नहीं आया?
1: तुम जॉनी को कैसे जानते हो?
4: जॉनी को? अरे इसी तरह कितनी तितलियों से उसकी मुलाकात करा चुका हूँ, यानी रेस्क्यू लवर, मदद फिर प्यार फिर जॉनी उड़ गया किसी के साथ। अरे यह तो उसका धंधा है, धंधा।
1: शट अप, जो तुमने जॉनी के बारे में अनाप शनाप बातें की, चोर कहीं का। चोर की बातों का क्या भरोसा?
4: अच्छा तो ये लीजिए मैडम, यह पर्चा पकड़िए और निकल जाइए पार्क के चक्कर से। मैं अब चला।
1: पर्चा? होशियार रहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में मत पड़िए, अपनी बेटियों को बचाइए। झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर देव व्यापार के दलदल में धकेलने वाला गिरोह सक्रिय है। होशियार, एक समाज सेवक।

0: कौन है इतना सवेरे सवेरे? कौन आधम का? अजी सुनते हैं, देखिए तो कौन आया है।
1: हाँ हाँ ठहरो, मैं देखता हूं। अरे डॉली बेटा, तुम आओ आओ बेटी आओ, सुबह सुबह किस क्रम से आ गई?
2: पापा गंगा दामोदर ट्रेन से।
1: अरे
2: पापा
0: अरे अरे चाचा जी आइए, देखिए आपकी पोती आई है।
1: मैं जानता था मैं भोलानाथ की बात सही होगी, डोली भटक सकती है, गुम नहीं हो सकती।
2: दादाजी आपकी नहीं, आपके डॉली शाम के भूली
0: नहीं,
2: सुबह को वापस आ गई। दादाजी माँ माँ माँ तुम सही थे माँ।
0: कोई बात नहीं
2: जिंदगी में।

0: जिंदगी में बहुत धोखे माँ।
1: हाँ बेटी, हाँ।

0: जिंदगी में धोखे। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। लेखक अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री गणेश प्रसाद सिन्हा, सिद्धनाथ सहाय, पूनम श्री, अनीता कुमारी वर्मा, श्रीपर्णा तिवारी, विवेक कुमार और बाल कलाकार अलक श्री। प्रस्तुति सहयोग आशीष कुमार रंजन। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता थी अलका प्रियदर्शनी। ये नाटक आकाशवाणी के पटना केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक जिंदगी में धोखे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। मिथिला नगरिया में चर्चा का एक ही विषय है, कौन है ये दोनों, कहाँ से आए हैं, है कैसे मनमोहक है, ये चाहता है देखते ही रहें।

गौरी पूजन को आई जनक नंदनी ने भी सुना। दो सुघर सलोने कुमार बगिया में घूम रहे हैं। देख आने वाली सखी चकित है, भ्रमित है, चंचल हो उठी है। कहती है, कैसे बताऊं, वाणी बोल सकती है देख नहीं सकती, आंखें देख सकती हैं बोल नहीं सकती। श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सीता भी देखने को व्याकुल हो गई। तासु बचन अतिशय ही सुहाना।

जरस लागी लोचन अकुलानी। और इधर जब श्री राम के नेत्र उठते हैं तो सिय मुख ससी भय नैन चकोरा। प्रीति पुरातन है, आकर्षण परस्पर है, शिव के धनुष को टूटना ही था। सुंदर सजी बारात लेकर राजा दशरथ पधारते हैं। सिया प्यारी का दूल्हा पालकी में सुशोभित है, मणि माणिक जड़ा मोर, चांदनी बिखेरते कुंडल, गज मोती के किनारों वाला पटुका।

जनकपुर में घर घर आनंद मंगल है। विधाता ने कैसी सुंदर जोड़ी बनाई है, जैसी चारों सुकुमारियां वैसे ही चारों सुकुमार। Okay.

लोक भजन और विवाह गीत के बाद पूर्वी पिया को पंथ निहारत सगरी रैन बिहानी होए, रोते रोते नैन टेसु के फूल बन गए। ये उम्र और सुनी सेज, ननद जी की बातों ने कलेजा चलनी कर दिया। आखिर क्या हुआ उन्हें, किस मोहिनी ने भरमा लिया।

विरह विदग्ध नायिका एक बार अपने प्रियतम को देख लेना चाहती है। उस पत्थर दिल के आते आते शायद प्राण ही निकल जाए। निर्जीव देह को कागा चुन चुन खाएगा। नहीं नहीं ए कागा, तू सब खा लेना, लेकिन मेरी आंखें छोड़ देना। ये आंखें दरस दीवानी हैं।

अब एक झूमर, ननद गई पानी भरने, अभी तक वापस नहीं आई। लगता है गहने कपड़े की दुकानों पर अटक गई।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं साहेब बीवी और गुलाम फिल्म में गीता दत्त की आवाज़, हेमंत कुमार का संगीत और शकील बदायूनी के गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, गीता दत्त और साथियों की आवाज में। फिल्म है बाजी, संगीत SD बर्मन का है और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए। गीता दत्त की आवाज में फिल्म है साहेब बेबी और गुलाम। संगीत हेमंत कुमार का है और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश तीसरी कसम फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीतकार हैं शैलेंद्र।

श्री 420 फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़, शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र के गीत।

0: हाँ मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया मता मैया।
1: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy